FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58:11 हो रहे हैं। हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय

0: संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्मरण और समर्पण से भरा आराध्य को निवेदित हमारा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

संसार का धन तो क्षणभंगुर है, पर प्रभु नाम का धन अमूल्य और अक्षय होता है। जिसे प्रभु नाम का सहारा मिल जाए, उसके जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है।

संसार का धन वैभव क्षणिक है, किंतु राधा कृष्ण की भक्ति का धन अनमोल और चिर स्थायी होता है। जिस हृदय में राधा कृष्ण का वास हो जाता है, वही जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है।

जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और जीवन को उद्देश्य प्रदान किया, उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। आइए, अपनी भारत माता को नमन करते हुए प्रस्तुत है मातृवंदना से ओतप्रोत यह देशभक्ति गीत।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। अभी आपने जिन गायक स्वरों में जो रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर थे शारदा वेलांकर,

0: सुरेश वाडेकर, नरेश मल्होत्रा और डीवी पलुस्कर के थे। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है मन के विकार। आलेख डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा का है, वाचन है अंजू पांगली का।
1: जिन जिन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जब जब हमारा मन चंचल हो, तब तब हमें उन्हें त्याग कर देना चाहिए। जिस पुरुष में इच्छित वस्तु के त्याग की भावना, एकांत प्रियता और आत्मा की अधीनता दुष्कर है, वह पुरुष रूप कीड़ा धिक्कार का ही पात्र समझा जाए। अपनी इच्छित वस्तु का अपने प्रयत्न से त्याग करना ही मन की शांति का श्रेष्ठ उपाय है। संकल्प शून्यता रूपी अस्त्र जब इस चित्त को काट डालता है, तब सर्वरूप सर्व अंतर्यामी परम ब्रह्म प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रपंच की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष मन को नियंत्रित कर चिन्ह मात्र में स्थित होते हैं। वैराग्य के आश्रय और अभ्यास के सहारे चित्त को अचेतावस्था में स्थित कर हृदयाकाश में ध्यान लगाकर चेतन में निरत चित्त रूपी चक्र की तीक्ष्ण धार से मन का दमन करने वाले प्राणियों की शंका नष्ट हो जाती है, जिससे कामादि शत्रुओं का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाता है। तेरा मेरा की भावना ही मन है, और जब इसका त्याग कर दिया जाता है, तब मन का प्रभाव स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में छिन्न भिन्न हुए बादल वायु की ठोकरें खाकर आकाश में ही लय हो जाते हैं, वैसे ही सद विचारों के द्वारा मन भी लीन हो जाता है। मन से रहित पुरुष को कोई हानि नहीं हो सकती। संकल्पहीनता ही संपूर्ण सिद्धियों का साधन है। चूंकि संकल्प विकल्प ही मन की वस्तुएं हैं, अतः संकल्पहीनता में ही मग्न होकर रहने में ही हित है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म उष्णता है, ठीक उसी प्रकार मन का धर्म चंचलता है। इसलिए सर्वत्र चंचल मन ही दृष्टिगोचर होता है। यही चंचल स्वभाव वाली स्पंदन शक्ति चित्त का धर्म है, और ये शक्ति ही विश्व प्रपंच का रूप है। चंचलता रहित मन ही तप है, वह अमृत स्वरूप है, शास्त्र उसे मोक्ष कहते हैं। मन की चंचलता ही अविद्या है, वासना उसका लक्षण है, और ये वासना ही शत्रु के समान है। विचारवान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे इस वासना को ही नष्ट करने का उपाय करें। उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम वे भोग रूप वासना को तिलांजलि दें, फिर भेद रूप वासना को छोड़ें, तत्पश्चात भाव अभाव दोनों को ही त्याग दें। मन का नाश ही अविद्या का नाश होना बतलाया गया है। मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आए, उसमें चित्त को नहीं रमाना चाहिए। आस्था का त्याग करना ही मुक्ति है, और आस्था के आश्रित रहना ही साक्षात दुख है। जो प्रज्ञावान है, उन्हें अविद्या का स्पर्श भी नहीं होता, उनसे तो अविद्या दूर ही रहती है। ये प्रज्ञाहीन पुरुषों में ही विद्यमान रहती है। ये संसार रूपी भ्रमजाल दुख रूपी कंटकों से ओतप्रोत है, और इसे नष्ट करने वाली आत्म साक्षात्कार की इच्छा तब तक बलवती नहीं होती, तब तक अविद्या इन देहों को निरंतर भ्रमाती रहती है। लेकिन सर्वात्म बोध के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं छिप जाती है। परंतु इच्छा नष्ट तभी होती है जब संकल्पों का नाश हो जाए, अन्यथा इच्छा नाश संभव नहीं है। चित्त जब विषयों का संग छोड़ देता है और सब ओर गमन करने वाला हो जाता है, तब उसकी ये अवस्था अनिर्वचनीय होती है। अवश्य ही वह ब्रह्म है, वही अवयव है, नित्य एवं चिदरूप है। इसके भिन्न जो मन नाम की कल्पना की जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो केवल ब्रह्म मात्र है। इसलिए मैं मेरे का

0: रूप ममत्व वासना का ही रूप है और इसे माया का ही खेल समझना चाहिए। इसलिए सांसारिक मोह ममता रूप विकारों का त्याग कर देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय था मन के विकार। आलेख था डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा का और वाचन था अंजू पांगती का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और मिताली बी सिंह का है। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिवजी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और मिताली बी सिंह के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय होगा बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्य। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। प्रातः 7:00 श्रोता सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज वार्ता, ब्रज जिनको रेडी है, ध्रुपद सम्राट चंदन जी चौबे, वार्ताकार होंगे रामचंद्र मूंगा। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे ब्रज लोकगीत। चित्रपट संगीत गीतांजलि का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे प्रातः 8:30 पर। कथाक्रम में आप सुनेंगे कहानी, विषय होगा नई उम्मीद की रोशनी, कहानीकार होंगे शिवदत्त चतुर्वेदी, समय रहेगा प्रातः 9:00। कार्यक्रम जिले की हलचल आप सुनेंगे प्रातः 9:15 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम आबो हवा का समय रहेगा प्रातः 9:25 पर। आज का विषय होगा शौचालय और पर्यावरण, आलेख एवं वाचन होगा नेहा प्रधान का। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे बातचीत, जिसका विषय होगा भावना एवं कामना का गीत वंदे मातरम। वार्ताकार होंगे सुरेंद्र शर्मा सार्थक और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे प्रातः 10:30 पर और दिन में 11:30 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी का समय रहेगा दिन में 11:00। सिम्स हेलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स मथुरा। आज का विषय होगा अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विनोद कुमार अग्रवाल के गाए कुछ ब्रज लोकगीत, समय रहेगा 12:30 पर। वनिता लोक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विषय पर, इसके अलावा चर्चा

होगी शारीरिक बीमारियां और योगात्मक उपचार विषय पर। इसी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी पहनावा क्रम के अंतर्गत वार्ता हमारा व्यक्तित्व और पहनावा। वार्ताकार होंगी संगीता मिश्रा। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। समय रहेगा अपराह्न 1:15 पर।

0: 1:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अपराह्न 1:45 पर। और सैनिक भाइयों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्य। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के बकरी फार्म हमारे देश में प्रचलित हैं। अर्ध सघन आधारित फार्म, इस पद्धति में बकरियों को 4 से 5 घंटे चराई के साथ ही प्रतिपूरक आहार दिया जाता है। दूसरी तरह का फार्म है सघन पद्धति आधारित फार्म। इस फार्म पर बकरियों को चरने के लिए नहीं भेजा जाता, फार्म पर ही उनके चारे दाने एवं स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यावसायिक रूप से अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए फार्म का होना अति आवश्यक है। फार्म पर बकरियों का उचित ढंग से प्रबंधन करने में आसानी होती है। फार्म पर वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी फार्म पर मुख्य रूप से बकरियों से दूध निकालना, दाना चारा खिलाना, फार्म की सफाई, रोगी बकरियों की चिकित्सा, समय समय पर टीकाकरण एवं प्रजनन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। फार्म पर बकरियों का रिकॉर्ड बनाना तथा दाने चारे एवं दवाइयों का विवरण भी अंकित किया जाता है। 100 बकरियों के लिए 70 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा आवास बनाना होगा। इसके साथ ही आवास के बाहर भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है, जिससे कि बकरियां वहां आराम से घूम फिर सकें। बकरी फार्म पर श्रमिकों के अलावा एक सुपरवाइजर होना चाहिए, जिसे बकरी पालन का व्यवहारिक ज्ञान हो। साथ ही बकरियों के प्रबंधन में वो कुशल भी होना चाहिए। नई बकरी फार्म को खोलने से पूर्व आप CIRG मखदूम फरह के व्यावसायिक बकरी पालन पर होने वाले प्रशिक्षण से प्रबंधन कौशल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बकरी फार्म पर चारा दाना खिलाने हेतु फीडर, पानी की चरही, चारा काटने की मशीन, स्प्रेयर, दूध निकालने के बर्तन, खुरपी, हसिया, चारा काटने हेतु डंगी तथा बकरियों का नाखून काटने हेतु नेल कटर, घास काटने की मशीन एवं नियमित पानी की व्यवस्था हेतु बिजली का समर्सिबल पंप या मोटर होना अति आवश्यक है। 100 से अधिक संख्या में होने पर बकरियों को नर मादा के अलग समूह में रखते हैं। 3 माह से ऊपर के बच्चों या मेमने को अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। बकरी के छोटे बच्चों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बकरी के छोटे बच्चों को मौसम तथा बीमारियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। बकरी के नवजात बच्चों को पैदा होने के बाद आधे घंटे के भीतर खीस पिलाना चाहिए, जिससे बकरी के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बकरी के बच्चों में निमोनिया, एंटोटॉक्सीमिया तथा कॉक्सीडियोसिस रोग प्रमुखता से होते हैं। निमोनिया के बचाव के लिए ठंड के दिनों में बकरी के बच्चों को बंद बाड़े में रखना चाहिए तथा फर्श पर सूखी घास की बिछावन देना चाहिए। एंटोटॉक्सीमिया से बचाव के लिए 3-4 माह की आयु में बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। साथ ही कॉक्सीडियोसिस रोग से ग्रसित बच्चों में दस्त की समस्या हो जाती है, इसके बचाव के लिए बाड़े की सफाई ठीक ढंग से रखनी चाहिए। अगर फर्श कच्चा हो तो उस पर चूने का छिड़काव सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि बकरियां चरने के लिए जाती हैं तो इन्हें प्रतिपूरक आहार के रूप में दाना चारा दिया जाता है। एक वयस्क बकरी को आधे से 1 किलोग्राम हरा चारा, 300 से 400 ग्राम भूसा तथा 150 से 200 ग्राम दाना देना आवश्यक है। बकरियों को हरे चारे के स्थान पर चारा वृक्षों से प्राप्त पत्तियां भी खिलाई जा सकती। बकरी फार्म को सुचारू रूप से चलाया जाए, बकरी की अच्छी नस्ल रखी जाए और उसके खान पान एवं बकरियों के रोगों की रोकथाम का उचित प्रबंध किया जाए,

0: बकरियों की मृत्यु दर कम होगी, साथ ही बकरियों में अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्य। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44.5 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
3: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
2: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24 वर्षस्य अथ

0: च पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कारविजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फूले भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं नूर जहां की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जवान है मोहब्बत।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने, और इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है जाने अनजाने, आवाज़ है मन्ना डे की।

अभी आपने सुना अनमोल गाड़ी फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी नूरजहाँ की। इस गीत को लिखा था तन्वी नागवी ने और इस गीत को धुन से संवारा था नौशाद ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। नीरज का लिखा गीत है और मदन मोहन का है संगीत। आवाज़ मन्ना डे की है। फिल्म का नाम है दिल की राहें।

0: इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना

0: उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया एमओयू। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में

0: शेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
1: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू SUV ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनवे वाले सभी श्रोतान को दुर्गेश भास्कर की जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रोताओं, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है और तपती धूपों खूब पड़ रही है। बातें बचवे के ताई हमें कछु ना कछु तो करना ही पड़ेगो, क्योंकि आजकल सूरज दादा खूब तेज तपे भये हैं। दोपहर के वक़्त तो ऐसा लगे जैसे आग बरस रही हो। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है गए हुए। तो गर्मी के दिनन में हमारे शरीर से खूब पसीनों निकल जावे, जैसे पानी की कमी भी है सके, जाई कारण हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, प्यास लगे तब भी और ना लगे तब भी। क्योंकि समय पे पानी पीवे ते हमारे शरीर में पानी की कमी

नहीं होगी तो पानी की कमी को कैसे पूरी करें? तो समय समय पे पानी तो पीनो ही है। जाके संग में कछु ना मिले तो छाछ ले लो, लस्सी ले लो, नारियल को पानी ले लो और नींबू पानी ले लो। और आजकल तो बाजार में आपको खूब सारी अमिया देखने को मिल रही होंगी, अमिया लो, उबालो और वाको पना बना लो। और कछु ना मिले तो बेल को शरबत पी लो। तरबूजे खरबूजे आ रहे हैं जिनते भी पानी की कमी दूर है जावे। और श्रोता, सुबह 11 बजे से लेके संजा के 5 बजे तक तो खूब तेज धूप रहे ही है, जा समय तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है ही ना है, जब तक बहुत जरूरी काम ना हुए। और अगर घर से बाहर निकलना पड़े भी तो सिर पे गमछा डालो, कोपी टोपी पहनो जरूर है, और है सके तो घर से छातो लेके निकलो। कपड़न को ध्यान जा तरीका से रखो कि हल्के रंग के कपड़ा पहनो, सूती कपड़ा पहनो, जैसे शरीर को आराम मिले और पसीना सूख जावे। और ठंडी ठंडी जो गर्मी में जो ठंडी हमें पसीना आ जावे, अगर ब्यार चलेगी तो ब्यारू अगर लगेगी, हवाऊ लगेगी, तो बहुत ही हमें ठंडक महसूस होगी। और गर्मी में खान पान को तो हमें ध्यान जरूर रखना ही है। तो तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा जैसे फल शरीर को ठंडो रखेंगे। बासी खाने को खावे ते बचो, बचो का खाओ ही मत। बासी खाने को तो बिल्कुल जब बनाओ खाओ और बचे तो फेंक दो या फिर जानवरों को खवा दो, लेकिन बाय दोबारा खावे की कोशिश मत करो। जो तो बीमारी इनको लक्षण है जाए अगर बासी खाना खामे तो। छोटे बच्चन को और बुजुर्गन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चन को तपती धूप में खेलवे को मत भेजो, अगर खेलवो जानो ही है खेलवे को तो संजा को 6 बजे के बाद भेज दो। और बुजुर्गन को तो समय समय पे पानी पीवे की सलाह सब दे में ही है, और पानी पिलाते रहो अपने बुजुर्गन को। कभी कभी अगर गर्मी में लू भी लग जाए तो आदमी को चक्कर आ जावे, जाकू लू लगे, बहुत कमजोरी भी लगे, उल्टी है जावे, बेहोश है जावे, तो बाकू ऐसी तुरंत ही ठंडी जगह पे ले जाओ और डॉक्टर की सलाह दिलवा दो। हम सबकी जिम्मेदारी है तो अधिक से अधिक पेड़ लगावे की कोशिश करो, क्योंकि पेड़ पौधा धरती को श्रृंगार है और इनते छांव मिले, वातावरण को भी शीतल रहे और तापमान भी सही बनो रहे। तो श्रोताओ, थोड़ी सी सावधानी अपना के हम इन तपती हुई धूप में और गर्मी में अब खुद को, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो खूब सारा पानी पियो, पौष्टिक भोजन खाओ, और ज़रूरत के बिना घर से बाहर निकलवे की तो ज़रूरत है ही ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो निकल लो। तो बस इतनी ही बात करूँगी और अब मैं आपको सुनवाऊँगी एक आंसू रावत को गायो भयो, तपती गर्मी पे ही जे प्यारो सो मीठो सो ब्रजलोकगीत। आओ मेरे संग आपो जा प्यारे से ब्रजलोकगीत को लो आनंद।

श्रोताओं, अभैया आपने आनंद लियो आशु रावत को गाए भई जा ब्रज लोकगीत को, और अब आपको सुनवा दें एक और मीठो सो ब्रज लोकगीत। देखें और सुने के मुन्नी देवी कुशवा का कह रही हैं जा गर्मी में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुन्नी देवी कुशवाहा के गायो भयो जे ब्रज लोक गीत, और आओ आपको सुनवा दें ब्रजवार्ता। ब्रज जिनको ऋणी है ध्रुपद सम्राट चंदन जी चौबे, वार्ताकार हैं रामचंद्र मूंगा।
1: ध्रुपद सम्राट श्री चंदन जी सात्विकी गायन में अद्वितीय है। उनकी गान शैली भावमय मनमोहनी, उनको सुंदर स्वरूप जो गायक को प्रथम गुण, दूसरे मधुर कंठ, सुंदर साहित्य, उपासनामय भाव द्वारा प्रदर्शित कियो भयो गायन, मुखाकृति सुंदर बनी रहे, ये सब गुण तो बिरले ही गायक में देखवे में आमे, नहीं तो कोई न कोई दोष बनो ही रहे। श्रुति में कहो है, स्वर्ज्ञानात परम गुह्यम, स्वर्ज्ञानात परम धनम, स्वर्ज्ञानात परम ज्ञानम, नता दृष्टम नता श्रुतम। स्वर्ज्ञान गुप्त धन है, स्वर्ज्ञान परम ज्ञान है, याते बढ़के कोई ज्ञान न सुनवे में आयो न देखवे में आयो। जिन महापुरुषन को परिश्रम और भगवत कृपा गुरु कृपा प्राप्त भई, वो सहज ही मोक्ष के भागी बन गए। चंदन जी ने बड़े परिश्रम गुरु सेवा से स्वर ज्ञान प्राप्त कर भगवत कीर्तन में ही सबरों समय व्यतीत कियो। बिना सेवा किए अन्न ग्रहण नहीं करते। श्री गोस्वामी गोपाल लाल जी महाराज आऊ जी मंदिर वाले, उनकी कृपा पे कीर्तन शैली प्राप्त करी जो पुष्य मार्ग में प्रचलित। उनके यहाँ भारत के नामी नामी कलाकार आते। चंदन जी को उनके सुनवे को बड़ो सौभाग्य प्राप्त भयो। एक बेर गोस्वामी टीकैत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज नाथ द्वारा की ओर से चंदन जी को निमंत्रण आयो। वहाँ गए, श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन कियो। महाराज परम प्रसन्न भए और उनको आशीर्वाद दियो। रात्रि को संगीत सभा का आयोजन हो। चंदन जी ने बड़े सुंदर ढंग से ध्रुपद गायन कियो और धमार भी सुनाई, स्वर छाल गयो। महाराज ने प्रसन्न है के स्वर्ण मुद्रांसु सम्मान कियो और आशीर्वाद दियो, तुम्हारी कीर्तन

दी बड़ी मनमोहनी है, जाते तुम्हारी संगीत सभान में विजय होई। चंदन जी ने विनय करी, मोकू भगवान की निधि प्राप्त हो तो मेरो जीवन कृतार्थ है जाए। महाराज ने गोवर्धन नाथ जी की निधि दई, सेवा को क्रम बतायो। चंदन जी ने उनकी सेवा में सदा

प्रणाम करके आसन दियो। कुशल खेम के पश्चात चंदन जी ने गान प्रारंभ कियो। लालन जी इस रात बड़ो मीठो बजाए रही, पखावज बड़ी सरस बज रही। चंदन जी की वसंत धमार के स्वर छाए रहे, मैं एक तक उनको देख रहे हो। बसंत राग को रूप बड़े सुंदर ढंग सु प्रगट है रहे हो। कई रूप सु मध्यम को प्रयोग कियो, शास्त्रीय रीत पर प्रयोग होते ही मेरे मुख से वाह निकल गई। चंदन जी ने बाबा से पूछी, ये कौन है? बाबा बोले, संगीत को पागल है, तुम्हारे शास्त्रीय ढंग सु मध्यम को प्रयोग सुन के वाह वाह कर बैठो। चंदन जी वादना तन्मय है के गाए, स्वर छाए गयो। उनकी भावयुक्त गायन शैली बड़ी मनमोहनी थी। एक दिना मेरे माथे में बड़ी पीड़ा है रही, गर्मी के दिना है। मैं दाऊ जी के मंदिर की ओर चल दियो, शैन के दर्शन खुले है, चंदन जी कीर्तन कर रहे, फूल बंगला में मदन मोहन जी विराजमान है, सुगंधित फुहारे चल रहे हैं, चारों ओर राय बेल गुलाब की सुगंध सू मंदिर व्याप्त हो। मैं भीत के सहारे खड़ो, दर्शन में तल्लीन हो। चंदन जी ने मुझको देख लियो और राग माला प्रारंभ कर दी। दर्शनी मूर्तिवर्त है मुखिया जी आरती कर वो भूल गए, उनके संग गाय भी लगे। झांपटिया ने संकेत कियो, तब आरती भई, दर्शन बंद भई। मैंने चंदन जी से कही, आज तो आपकी रागमाला ने मेरे माथे को दर्द हरण कर लियो। कैसे सुंदर मधुर ढंग सु रागन को रूप दिखायो, आपकी गायन शैली बड़ी सुंदर मन हरण करवे वाली। चंदन जी कहवे लगे, भगवान के दरबार में दुख को कहा काम, तुमको देख रागमाला गायबे लोगो। मदन मोहन लाल जी जब जैसो सुनो चाहे, मुते गवाहले हैं, मेरो या में कहा है, सब उनकी ही कृपा को तो है। मैं मंदिर आके रागमाला को विचार कर भी लगो, रागमाला नई तैयार करके दूसरे दिना उनको सुनाई। बड़े प्रसन्न है के बोले, कविता वो करो हो, कविता गुरु तुम्हारे कौन है? मैंने ब्रजवल्लभ सखा जी को नाम दियो। बड़े प्रसन्न भय कहवे लगे, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो दोनों गुरु भगवत भक्त प्राप्त भय। चंदन जी गुणग्राही है जो गायक को परम धर्म है। चंदन जी में गायक के जो गुण हैं वो सभी है, सुंदर शरीर, सरस कंठ, भक्तिमय साहित्य, हाव भाव द्वारा शब्दन को प्रदर्शन, जो सभा में बैठे बैठे प्रेमीन को अपनी ओर खींच ले। तो गोपाल जी के मंदिर में बसंत पंचमी सु धूर तक धमार की समाज बैठे है, चंदन जी शिष्य मंडली के संग नित्य धमार गान करते, ऐसो प्रतीत हो तो मानो सखा सखीन के संग शाम सुंदर सांच माच होरी खेल रहे। गोवर्धन में दान एकादशी को दान लीला को गान हो तो मथुरा ते प्रेमी जन आते, और पास के गान मर्मज्ञ हु वहाँ उपस्थित होते। रात्रि को समय स्वर की प्रसिद्ध ध्वनि पर्वत सु आती, ऐसो समा बंध जातो जो कहवे में नहीं आवे। पचासन स्वर की ध्वनि छाए जाती, रात्रि कैसे बीत जाती काऊ को कछु पतो नहीं चलतो। चंदन जी राजा महाराजा नवाबों के निमंत्रण पे गए, गोस्वामी के उत्सव में तो उनको बुलावो आतो ही हो। सब जगह बड़ो सम्मान पायो, लखनऊ गए, सब जगह संगीत सभा में भारत के नामी गुणीजन शोभे थे, परंतु काऊ को राग जम नहीं पायो। चंदन जी ने ध्रुपद प्रारंभ कियो, वादना ऐसे गाए सबरी सभा वाह वाह करवे लगी। श्री भातखंडे जी ने कही, चंदन जी की गायन शैली बड़ी मनमोहनी है, ध्रुपद गान को स्वरूप ऐसो सुनबे में नहीं आयो। गवर्नर ने एक स्वर्ण पदक और प्रशंसा पत्र भेंट कियो और ध्रुपद सम्राट की पदवी से विभूषित कियो। एक दिना मथुरा में संगीत
कॉन्फ्लिक्ट

0: भी भारत के नामी नामी गुणी पधारे। पटवर्धन जी के बाद चंदन जी ने गुजरी तोड़ी को ऐसो गान कियो, सबरो मंदो भाई हॉल स्वर सु छाए गयो, सब गुणीजन वाह वाह कर भी लगे। वादिना को सो गान फिर सुनवे में नहीं आया। एक दिना बाबू श्यामलाल कलकत्ता वाले, गणपतराव भैया ग्वालियर वाले, गोस्वामी घनश्यामलाल जी महाराज हारमोनियम बजावे में अद्वितीय, चतुरा जी तबला वादक, चंदन जी गायन में ऐसे तल्लीन है अपनी सुधबुध हु नहीं रही, यमुना पुलिन में स्वर छाए रहे हो तीन हारमोनियम अपनी नई नई क्रियाओं प्रदर्शन कर रहे हैं, रात्रि कैसे व्यतीत है गई मालूम नहीं पड़ी। होरी की दिना श्याम समाज की होरी को डोला निकस्तो जगह जगह प्रदर्शन हो तो रात्रि को एक बजे चंदन जी के यहाँ पहुँचते, तब तक चंदन जी भोजन नहीं करते, मेरे विशेष आग्रह पे छत पे बैठ के भोजन करते, होरी सुनते और प्रशंसा करते, कितनो प्रेम मानते जाखों में बखान नहीं कर सकते। श्री ग्वालिया बाबा के लीला धाम पधारवे में सप्ताह मनायो गयो, नित्य नयो आयोजन हो, संगीत समाज वारे दिन चंदन जी ने जैसे ही मल्हार प्रारंभ करी, बादल छाए गए, हल्की हल्की फुइयां पड़ने लगी, वयोवृद्ध महात्मा रामकृष्ण दास जी कहने लगे, चंदन जी तुम पे ग्वालिया बाबा की विशेष कृपा है, तभी तो मल्हार गाते ही बादल छाए गए। चंदन जी में राग सू रोग शांति, राग को प्रभाव ऋतुन पे हु जमाए की शक्ति ही, भक्त गायकन में भगवत कृपाते ऐसी शक्ति प्राप्त हो है। चंदन जी के पुत्र द्वारा उनकी शताब्दी मनाए को प्रयास सराहनीय, चंदन जी गुड़ीन को आदर करते सम्मान करते ये उनकी विशेषता ही। उनके परलोक गमन थे मथुरा की गान प्रेमी जनता को बड़ो दुख भयो, यमुना छठ पे यमुना पुलिन को स्वर में स्वरंगित करवे वारे गायक को बिछुरवो अत्यंत दुखदायी है गयो, भगवान उनके अभाव की पूर्ति करे यही मेरी कामना है।
1: श्रोताओं अवैया आप सुन रहे थे ब्रजवार्ता, ब्रज जिनको ऋणी है ध्रुपद सम्राट चंदन जी चौबे, वार्ताकार हते रामचंद्र मूंगा। श्रोताओ जाई ब्रजवार्ता के संग अब दुर्गेश भास्कर को कार्यक्रम को संपन्न करवे की दो अनुमति, तो सवई श्रोतान को हमारी ओर ते जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर

0: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक

0: केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 11 जून आज में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास से संबंधी समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल, मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या से ग्रसित हैं, इनके समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 11 जून 2026 यानी आज, और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है एक रिश्ता। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हंगामा से। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हम आपके हैं कौन से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना देव कोहली की है, और इस गीत को संगीत से संवारा है राम लक्ष्मण ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण अलका याग्निक की युगल आवाजों में। शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है संजीव दर्शन ने। फिल्म का नाम है मन।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कथाक्रम में कहानी। आज का विषय है नई उम्मीद की रोशनी। कहानीकार हैं शिवदत्त चतुर्वेदी।
1: मीनाक्षी मल्होत्रा और मनोज राजदान जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दो देह एक प्राण की उक्ति भी उनके लिए पूरी तरह सही है। ऑक्सफोर्ड स्कूल जबलपुर में 11वीं कक्षा में पढ़ते समय ये एक दूसरे के संपर्क में आए। एक ही बेंच पर बैठना, टिफिन शेयर करना, अपनी पसंद नापसंद पर बातें करना तथा फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक दूसरे के कंसेप्ट क्लियर करना उनके लिए रोजाना का काम था। यही सब करते करते दोनों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किया। यही वो समय था जबकि उनको अनुभव हुआ कि एक दूसरे के बिना रह पाना उनके लिए कठिन है। छुट्टी के दिनों में हर दिन कम से कम एक मुलाकात और फिर मोबाइल पर बात करना उन्हें जरूरी लगने लगा था। दोनों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मनोज राजदान ने MBBS की और मीनाक्षी ने GNM की बैचलर डिग्री। तब वे समझ चुके थे कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक के बिना दूसरे का जीवन बिल्कुल अधूरा है। दोनों के घर वाले मानते थे कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। एक दिन दोपहर को घर लौटते ही मीनाक्षी ने अपनी माँ को बताया कि वह मनोज से बहुत प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसी दिन शाम को टेनिस खेलते समय मनोज ने भी अपने पिताजी को बताया कि वह और मीनाक्षी एक दूसरे को असीमित चाहते हैं और वह मीनाक्षी से शादी करना चाहता है। दोनों के माता पिता को यह बात उचित नहीं लगी क्योंकि मनोज के पिता डॉक्टर उमेश राजदान जबलपुर के सबसे बड़े फिजिशियन थे और मीनाक्षी के पिता एक स्कूल मास्टर। संसार में सबसे मजबूत दीवार है चांदी की दीवार, जिसके एक तरफ स्वर्ण महल होते हैं और दूसरी तरफ विपन्नता की गहरी खाई। यही चांदी की दीवार मनोज और मीनाक्षी को एक होने से रोक रही थी, लेकिन मीनाक्षी मनोज से असीम प्रेम करती थी और मनोज उसे दिल जान से चाहता था। दोनों ने साथ साथ जीने मरने के सपने देखे थे। सवेरे सूरज निकलने पर आकाश की लालिमा के बीच वे दोनों एक दूसरे को एकाकार देखना चाहते थे और शाम को शाही छा जाने पर चंद्रमा की शीतल छाया में भी उनका सपना यही था। जब परिवार के विरोध के कारण उन्हें लौकिक रीतियों के साथ परिणय के सुखद स्नेहिल बंधन में बंधना असंभव लगा, एक दिन प्रातः 10 बजे दोनों ही अपने अपने घर से निकले और कोर्ट मैरिज कर ली। दो गवाहों का काम रजत और भव्या ने किया। रजत और भव्या भी उनके सहपाठी थे तथा प्रेम के पंथ पर आगे बढ़कर एक दूसरे को समर्पित हो चुके थे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने जबलपुर छोड़कर इंदौर में अपना आशियाना बना लिया था। रजत डॉक्टर मनोज का सच्चा दोस्त है और भव्या मीनाक्षी के दुख सुख की सहचरी। अतः डॉक्टर मनोज राजदान और मीनाक्षी ने भी अपनी आंखों में स्वर्णिम भविष्य के सपने देखते हुए जबलपुर छोड़कर इंदौर में बसने का निर्णय लिया। रिश्ते नाते पीछे छूट गए, किंतु दोनों प्रेम पथिक अपनी प्यार की दुनिया में मग्न हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे समय उनके अनुकूल हो, लेकिन समय की गति को भला कौन रोक सका है। समय के पहिए की चाल में कभी उत्सर्ग होता है तो कभी अपकर्ष। सुख और दुख समय की गाड़ी के स्टेशन हैं, अर्थात दुख जाए तो सुख आता है और सुख जाए तो दुख। सुख दुख की छाया से बचकर जीवन की कल्पना पूरी तरह असंभव है। एक रात चारों ओर गहन अंधकार था, आकाश बादलों से घिरा था, बिजली की चमक के साथ भयानक गर्जना भय व्याप्त कर रही थी और बरसात अपने पूरे वेग पर थी। घड़ी में 10 बजते ही डॉक्टर मनोज राजदान अपनी क्लिनिक से लौटे। दोनों ने साथ साथ खाना खाया और फिर सो गए। रात के 2 बजे डॉक्टर मनोज को घबराहट अनुभव हुई।

और माथे पर तेज पसीना छल छला उठा। उन्होंने मीनाक्षी को बिना जगाए दवा ले ली, किंतु उससे कण मात्र भी लाभ नहीं हुआ। 3:30 तक वह छटपटाते रहे। पीड़ा को सहन करने की क्षमता जब पूरी तरह समाप्त हो गई तो उन्होंने मीनाक्षी को जगाया। मीनाक्षी उनकी यह दशा देखकर घबरा गई, किंतु जल्दी ही संयत होते हुए उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्हें ICCU में एडमिट कर दिया गया। मीनाक्षी ने कॉल करके रजत और भव्या को भी बुला लिया। कहा जाता है कि भाग्य के सामने पुरुषार्थ घुटने टेक देता है। मीनाक्षी के साथ भी यही हुआ। सुबह के 5 बजते ही मनोज ने दम तोड़ दिया। ड्यूटी डॉक्टर ने जैसे ही यह सूचना दी, मीनाक्षी बेहोश होकर गिर पड़ी। भव्या और रजत ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया। तुरंत उपचार शुरू हुआ, ड्रिप लगाई गई। रजत और भव्या ने उसके पैर मले तो लगभग 1 घंटे के बाद वह होश में आई, परंतु इस वज्रपात के कारण वह पथरा गई। रजत और भव्या की बहुत कोशिशों के बाद वह सदमे से बाहर आई तो फूट फूट कर रोने लगी। रजत और भव्या ने उसे संभाला। डॉक्टर मनोज के पोस्टमार्टम के बाद मीनाक्षी ने ही उनका अंतिम संस्कार भी किया, परंतु वह स्वयं अपनी अश्रुधारा में डूब चुकी थी। कई बार तो वह पागलों की तरह हरकत करती, कभी मनोज की फोटो को देखकर हंसती तो कभी रोने लगती। रोते रोते ही कहती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मनोज, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूं। और फिर वह ठहाके मार कर हंसती। इसी क्रम में 12 दिन गुजर गए। ब्रह्मभोज के उपरांत रजत और भव्या भी मीनाक्षी को अच्छी तरह समझा बुझाकर अपने घर चले गए। शाम के 5:15 थे। ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में सफेद भूरे बादल छाए हुए थे। मीनाक्षी ने गैराज से गाड़ी निकाली और तेज गति में उसकी गाड़ी रतलाम रोड पर दौड़ने लगी। उसी शाम इंदौर के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर रतलाम से इंदौर लौट रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक दूसरी ओर गई तो उन्होंने देखा कि मीनाक्षी की गाड़ी सड़क के दूसरी ओर गहरी खाई में कूद गई। वे सर्विस लेन के पास से होकर वहां पहुंचे तो देखा कि मीनाक्षी की गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर हाईवे से लगभग 20 मीटर नीचे जाकर रुक गई थी और मीनाक्षी लहूलुहान थी। डॉक्टर भटनागर ने अपने ड्राइवर की सहायता से उसे बाहर निकाला और अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने उसका उपचार किया। 3 घंटे बाद जब वह होश में आई तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश असफल रही तो वह चिल्लाने लगी, हट जाओ, मैं मर जाना चाहती हूं, मैं मनोज के बिना नहीं रह सकती, मुझे मर जाने दो। डॉक्टर भटनागर ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह शांत हुई, जैसे कि उनके हाथ में कोई जादू हो। डॉक्टर भटनागर ने कहा, बेटा जो तुम सोच रही हो पूरी तरह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माना कि तुमने डॉक्टर मनोज से गहराई से प्यार किया है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मनोज के बिना तुम जी नहीं सकती। यद्यपि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, फिर भी तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो चला गया उसके लिए अपने आप को निराशा के सागर में डुबो देना पूरी तरह गलत है। निराशा और अवसाद के कारण स्वयं को समाप्त कर देने की कोशिश कभी भी उचित नहीं होती। तुम तो अपने जीवन साथी के बिछोह में आपा खो रही हो बेटा, और इस तरह की हरकत कर रही हो, किंतु मेरा तो वह चला गया जिसके बिना मेरा शरीर भी अधूरा है। देखना चाहती हो, देखो। इतना कहकर डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर ने अपने दोनों पैरों से अपनी पैंट की मोहरियों को ऊपर उठाया। मीनाक्षी देखते ही सन्न रह गई कि डॉक्टर भटनागर के दोनों पैर नकली हैं। डॉक्टर भटनागर उन्हीं पैरों पर चलते हैं। तब उसने उनके चेहरे की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे और वे उसकी ओर बड़े प्रेम से देखते हुए बोले, एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर पूरी तरह खत्म हो गए थे, तब मैंने स्वयं ही अपने पैरों का ऑपरेशन किया, स्वयं को चलने फिरने के लायक बनाया। जानती हो, आज मुझे पैरों के न रहने का कोई गम नहीं। यदि तुम चाहो तो अपने पति के नाम से कोई ऐसा प्रकल्प शुरू कर सकती हो जो उनकी आत्मा को शांति दे और तुम्हें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिले। साथ ही किसी के उदास होठों पर मुस्कुराहट आ जाए। मेरी दृष्टि में प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है। डॉक्टर भटनागर की बातें सुनकर मीनाक्षी की भुजी हुई आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर भटनागर ने एक बार फिर पूछा।

0: बोलो, मानोगी मेरी बात? उसने हां में सिर हिलाया और बेड से उतरते हुए डॉक्टर भटनागर के चरण छूते हुए उसने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, जीने का नया मकसद दिया है। मैं संकल्प लेती हूं कि आज के बाद मैं कभी भी मरने का प्रयास नहीं करूंगी। मैं मनोज की स्मृति में विकलांग बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगी जिसमें उन्हें मिल सकेगी नई उम्मीद की रोशनी। हाँ बेटा, यही होगी तुम्हारी ओर से मनोज को सच्ची श्रद्धांजलि। यह कहते हुए डॉक्टर भटनागर ने एक बार फिर उसके सिर पर हाथ रखा और वह मुस्कुरा उठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कथाक्रम में कहानी, विषय था नई उम्मीद की रोशनी। कहानीकार थे शिवदत्त चतुर्वेदी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में।

0: हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण

0: पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
1: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जिसको माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
0: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कैनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता परखी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण कार्य एवं उसकी मोटाई और मजबूती की भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत बृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
2: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं, जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, उनका प्रयोग कैसे करें और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं। हरी खाद बनाने के लिए सनई ढैसा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
0: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैसा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
3: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
4: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क

0: राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में नकलविहीन एवं पारदर्शी से परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले 2 दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। वहीं गेहूं के केंद्र मंडी समिति भगवतीगंज में गेहूं बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की है अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर संकरी का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा जल है तो कल है का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण में लोक आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर के विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय है शौचालय और पर्यावरण। आलेख एवं वाचन नेहा प्रधान का है।
3: हमारे देश की अधिकतम आबादी गांवों में ही निवास करती है। इसके बावजूद ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे गांव, कस्बे सबके हाथों में मोबाइल तो नजर आ जाते हैं, लेकिन जब बात घर में शौचालय निर्माण की आती है तो परिणाम मिलता है जीरो। ऐसा क्यों है कि हम नई तकनीकों को अपनाने में तो शर्म महसूस नहीं करते, फिर अपने और अपने पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के प्रति इतनी ज्यादा लापरवाह क्यों है? आप और हम सब जानते हैं कि घर में भी यदि

कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है और लंबे समय तक उसकी सफाई नहीं करें तो मच्छरों को पनपने का अवसर मिल जाता है। तो फिर हमें खुले स्थानों और खेतों में शौच जाने के नुकसान के बारे में जानकारी का अभाव क्यों है? इसी कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इन पर बैठी मक्खियां हमारे खाने को भी दूषित कर देती हैं और दुर्गंध से वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेतों में फसलें भी इनसे दूषित हो जाती हैं। इस कारण फल और सब्जियां पोषक तत्वों की जगह दूषित और विषैले तत्वों से भरपूर होती हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन देखिए, इतनी जानकारी देने के बाद भी कई लोगों द्वारा अभी भी खुले में ही शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने भी कमर कस रखी है। हम अपना ही नुकसान नहीं देख पा रहे हैं। खुले में शौच से हम हमारे पर्यावरण का ही नुकसान कर रहे हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी बल्कि मिट्टी के कारण नदी तालाब भी प्रदूषित हो रहे हैं। पानी में दूषित तत्व घुलकर उसे पीने योग्य नहीं रहने देते। इस पानी को पीने से हम बीमार हो जाते हैं। फिर चाहे हम उस पानी को कितना ही स्वच्छ करने का प्रयास करें, वह पूरी तरह कीटाणु रहित नहीं हो पाता। इसी प्रकार अगर मिट्टी दूषित हो जाती है तो यह दूषित तत्व लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। खुले में शौच से मक्खी और मच्छर जैसे बीमारी फैलाने वाले जीवों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, जो एक बीमारी को दूर दूर तक फैलाते हैं। यही नहीं, खुले में शौच महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इससे महिलाओं में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। शर्मिंदगी के कारण वह गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। इसके अलावा महिला उत्पीड़न के मामले भी बढ़ने लगे हैं। घर और स्कूल में शौचालय न होने से महिलाएं और लड़कियां कहीं भी शारीरिक और मानसिक तौर पर सुरक्षित नहीं हैं। खुले में शौच से वहां पर मौजूद न जाने कितने जीवाणु हमारे हाथों के माध्यम से खाने के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। दुर्गंध के कारण सारा वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। जब तक हमारा वातावरण स्वच्छ न हो, तब तक हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? इसीलिए हमें प्रण करना होगा कि हम अपने घर में बने शौचालय का ही उपयोग करेंगे। हमारी ग्रामीण बहनों ने तो नारा भी दिया है, शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आवो हवा। आज का विषय था शौचालय और पर्यावरण। आलेख एवं वाचन नेहा प्रधान का था।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है बातचीत भावना एवं कामना का गीत वंदे मातरम। वार्ताकार हैं सुरेंद्र शर्मा सार्थक और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसको गा करके न जाने कितने लोग आजादी की उस लड़ाई में अपनी आहुति दे गए। सोचा भी नहीं कि इसके गाने और इस आजादी की लड़ाई के बाद क्या अंजाम होगा, लेकिन स्वप्न एक ही था कि हमारे देश और हमारी मिट्टी को वो आजादी मिलनी चाहिए जिसके हम हकदार हैं
2: जी।
1: कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी, मतलब माता से भी बढ़कर हमारी जन्मभूमि का स्थान

0: होता है, तो उसी भावना, उसी संकल्पना और उसी स्वप्न के साथ लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और उस आजादी की लड़ाई में न जाने कितने लोग, कितने रजवाड़े, कितनी भाषा और संस्कृतियों के लोग इकट्ठा हुए सिर्फ भारतीयता के नाते, और उस भारतीयता को एक सूत्र में पिरोने का एक बड़ा काम इस वंदे मातरम गीत ने किया। इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरा देश इसमें शामिल है। आज हमारे साथ हैं भाई सुरेंद्र शर्मा सार्थक जी। आप कवि हैं और कहते हैं कि कवि की जो संकल्पना होती है बहुत दूर तक जाती है, तो आज चर्चा में कुछ इस गीत की भावना और इस गीत की कामना के साथ हम शुरुआत करेंगे। सर, ये जो गीत गाया गया, लोगों ने बड़े उत्साह से गाया, बड़े उसमें गाया, समूह में गाया, और उसका हमें परिणाम भी मिला। आज हम जिन सांसों, खुली हुई सांसों में जी रहे हैं, जिस सपने को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, तो आज़ादी हमें मिली। तो इस गीत की प्रासंगिकता पर मैं एक कवि के तौर से आपसे जानना चाहूँगा कि आज इसकी जो प्रासंगिकता है, आज हम इसको जब 150वीं वर्षगांठ के उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो लोगों की जो भावना है आज भी, क्योंकि रोमांच आज भी होता है जब हम इसको गाते हैं, तो निश्चित तौर पे अच्छा लगता है, और वो भाव भी पैदा होते हैं कि जब लोग गाते होंगे तो कैसा लगता होगा। तो एक कवि के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे इसके गीत?
1: जी जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सिंह जी कि आपने आकाशवाणी के माध्यम से मुझे यहां आमंत्रित करके मेरे विचारों को जानने और सुनने का मौका दिया है।
0: जी,
1: वंदे मातरम के बारे में जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। जैसे बहुत पुराने टाइम पर हम पढ़ा करते थे कि जब युद्ध होता था राजाओं के जमाने में, तो युद्ध के नगाड़े बजते थे, तो उस नगाड़े को सुनकर के लोगों में जोश आता था, और वो जुनून उनका उस हद तक पहुंच जाता था कि भाई अब देश ही सब कुछ है, हमारी जान कुछ नहीं है। तो उस समय जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे गीत हमारे चलन में है, जिनमें कुछ गीत तो युद्ध के वर्णन के थे। अब मान लो कोई ये कहे आज की तारीख में कि हमने इस तरह से उनको, दुश्मनों को काट देना चाहिए, मार दिया, तो वो आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वो युद्ध का जो वर्णन था वो उस समय खत्म हो गया।
0: जी जी जी।
1: अब लोगों में स्थायी रूप से जोश पैदा करने के लिए हमारे आजादी के नायकों को कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा नारा चाहिए था जो उनमें स्थायी रूप से जोश
0: भाव पैदा कर,
1: भाव पैदा कर सके।
0: जी।
1: तो ये इत्तफाक और वंदे मातरम गीत उस समय उनको सर्वाधिक पसंद आया। हो सकता है इससे बढ़िया कोई और होता तो वो पसंद आ जाता,
0: लेकिन इसकी स्वीकार्यता बनी।
1: हाँ, इसकी स्वीकार्यता बनी क्योंकि इसमें किसी युद्ध का वर्णन नहीं था, इसमें मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन था, और उसको प्रणाम करने का भाव था। वंदे मातरम मां की वंदना है, और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है भारत के अलावा जो अपने देश को मां कहता हो,
0: मां के रूप में स्वीकार करता हो।
1: जैसे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है पवन चौहान जी, उन्होंने दो पंक्तियां लिखी, तुम सिर्फ देश को देश कहो, हम भारत मां कहने वाले, और कोई देश दुनिया में है ही नहीं जो मां कहता हो। तुम सिर्फ देश को देश कहो, हम भारत मां कहने वाले, हम शंभु गरल पीने वाले, औरों के हित जीने वाले, हम हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हम केवल हिंदुस्तानी हैं, हम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं।
0: क्या बात है।
1: तो इसमें वर्णन है स्वरूप का। ठीक वैसे ही वंदे मातरम जो गीत था, इसलिए वो आज भी प्रासंगिक है कि उसमें किसी एक घटना विशेष का वर्णन नहीं था। जैसे ही घटना मरी, रचना मर जाती है।
0: जी, जी,
1: ये इसलिए अमर है कि इसमें मां के स्वरूप की वंदना की गई।
0: हाँ, उसमें लिखते हैं सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम,
1: उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरे देश की वंदना है, स्वरूप का वर्णन है, इसलिए ये आज भी प्रासंगिक है और इसकी स्वीकारता सभी युद्ध गीत, मैं इसको युद्ध गीत भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं

0: कि क्योंकि उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए इससे प्रेरणा मिली थी,
1: जी
0: तो कुछ
1: जी
0: लोग इसको युद्ध गीत की श्रेणी में रख
1: हाँ,
0: देते हैं।
1: मतलब एक संघर्ष का प्रतीक तो बना, और जीवन में प्रतीकों का प्रासंगिकता कहिए, महत्व कहिए, प्रतीक होते तो है, तो ये भी उस समय संघर्ष का प्रतीक बना, एकता का प्रतीक बना, जयघोष भी जैसे लोग कहते हैं, तो एक वो भावना भी हुई कि नहीं, जो हमारा हक है हम उसको लेकर के रहेंगे। तो ये हर वो प्रतीक इसमें लोगों को दिखाई दिया, और शायद इसीलिए सर्वस्वीकार्यता बनी, और इसलिए शायद राष्ट्रगीत भी बाद में जब भाई आजादी हमको मिली और संवैधानिक स्थितियों की रचना हुई, तो राष्ट्रगीत के तौर पर अगर इसकी स्वीकार्यता बनी, तो शायद इसीलिए कि भाई इससे अच्छा शायद कुछ हो नहीं सकता। आगे और पीछे की बात हम छोड़ दें, लेकिन वर्तमान में इससे ज्यादा शायद सुंदर कुछ हो नहीं सकता, तो राष्ट्रगीत की भी स्वीकार्यता
0: बिल्कुल
1: बनी।
0: बिल्कुल। दरअसल क्या है कि जैसे जो लोग बिना प्रयास के कुछ लिखते हैं,
1: जी जी
0: जैसे भारत से युद्ध हुआ चीन का, उस समय कुछ लेखकों को बुलाया गया
1: जी
0: कि आप कुछ युद्ध गीत लिखें, और मोहम्मद रफी ने उन गीतों को सीमा पर जाकर के गाया भी।
1: जी जी
0: तो वो प्रयास से लिखे गए, सायास लिखे गए, ये अनायास लिखा गया था।
1: जी जी जी ऐसा उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था,
0: उस लेखक ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस गीत को इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, और उसके जीते जी मिली भी नहीं। जैसे मुझे एक घटना याद आती है, एमिली डिकेंसन एक अमेरिकन पोइटेस हुई, और उन्होंने मौत पर लिखा। इसका कारण यह था कि वो जहां रहती थी उनका घर शमशान के किनारे था, उनके घर रसोई की खिड़की शमशान घाट पे खुलती थी, सीधी
1: सामने दिखाई देता था,
0: सामने हर समय कोई ना कोई चिता जलती दिखाई देती थी। तो उन्होंने मृत्यु को रोज देखा, बड़े करीब से देखा, तो वो मृत्यु पर लिखती और जो लिखती उसको वहीं पटक देती, और वो मर भी गई। उनकी मृत्यु के बाद वो जब घर बिका, उनकी भतीजी ने वो घर बेका, तो वो उनको पेपर मिले, उसने पढ़ के देखा, उसने कहा ये वर्ल्ड क्लास पोइट्री, तो उसने उसका प्रकाशन करवाया। और उसके बाद एमिली डिकेंसन को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, और आज उसको तमाम संसार में पढ़ा जाता है अमेरिकन लिटरेचर की। तो ठीक वैसे ही बंकिम चंद्र जी ने कभी ये नहीं सोचा
1: कि मैं
0: राष्ट्रगीत की रचना कर रहा हूं, और शायद वो ये सोच के लिखते तो ऐसा लिख भी नहीं पाते।
1: ये तो मतलब अंदर के भाव थे वो, तो जो देख रहे थे, कई और लोगों से चर्चा हुई कि ये जैसे कि सायास नहीं था, वो घूम रहे थे, देख रहे थे, और जो देखा और जो सोचा और जो भाव में आया,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिसको उन्होंने जिया उसको शब्द दे दिए।
0: हाँ।
1: तो शायद ये रचना हो गई उसमें। तो कुछ राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम को लेकर आपकी कोई रचना जो श्रोताओं को सुना चाहे इस समय प्रासंगिकता के तौर पर?
0: हाँ, मैं राष्ट्रगीत के लिए मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि ये कब लिखा गया, ये कब सबसे पहले गाया गया, ये इतिहास और ये तारीख तो आदमी को कहीं भी मिल जाएगी।
1: जी जी जी जी,
0: कहीं किसी भी किताब में खोज लो, गूगल पे खोज लो, मिल जाएगा। मैंने इसको एक अलग तरीके से एक थॉट के लिए लिखा।
1: चलिए स्वागत है आपका।
0: मैंने इसके बारे में ये सोचा कि मैं थोड़ा सा बताऊं, हम लोग जहां रहते हैं वहां लक्ष्मण मंदिर है, शायद दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते,
1: कम है,
0: बहुत कम,
1: ब्रह्मा जी के कम है, तो लक्ष्मण जी के तो मुझे लगता है और भी कम है,
0: लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्मण मंदिर है। तो मैंने उसकी जानकारी की, हमने कहा यार लक्ष्मण मंदिर क्यों बनाए गए? तो पता चला कि हमारे यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने कहा कि साहब शास्त्र की रक्षा शस्त्र कर सकता है, और लक्ष्मण जी को शस्त्र प्रिय थी रामचंद्र जी से ज्यादा, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मण को पूजा गया। तो ये जो वंदे मातरम है ये एक शस्त्र है, इस थॉट पर मैंने एक कविता लिखी।
1: जी स्वागत है
0: भाई। हम कितना ही कह लें कि हम गणतंत्र अपना लागू कर चुके, हमारी गीता बड़ी है, हमारी रामायण बड़ी है, हमारी कुरान बड़ी है, या हमारी बाइबल बड़ी है, मैं कहता हूं कि अगर वंदे मातरम नाम का शस्त्र नहीं होता तो ना हम बचते, ना हमारा धर्म बचता, फिर ना हमारे धर्म ग्रंथ भी नहीं बचते।
1: सही बात है।
0: तो ये इन सबसे बड़ा है, इस थॉट के साथ मैंने इसको एक कविता में लिखा है।
1: स्वागत।
0: वंदे मातरम शंख ध्वनि है, अलख जगाया करता है। वंदे मातरम शंख ध्वनि है, अलख जगाया करता है, रणभूमि में पड़ा पड़ा मुर्दा भी गाया करता है।
1: क्या, क्या बात है।
0: इसको गाकर कितने वीरों ने रण में कुर्बानी दी, इसको गाकर कितने वीरों ने रण में कुर्बानी दी, कुछ ने तो बच

0: पंदे डाला, कुछ ने भरी जवानी दी। जब अशफाक चढ़ा फांसी पर यही गीत गाते गाते, जब अशफाक चढ़ा फांसी पर यही गीत गाते गाते, अमर तिरंगा बोल उठा उसकी कसमें खाते खाते, धन्य धन्य अशफाक देश का गौरव तूने बढ़ा दिया, और भटकी हुई जवानी को भी वंदे मातरम पढ़ा दिया। धन्य धन्य अशफाक देश का गौरव तूने बढ़ा दिया, भटकी हुई जवानी को भी वंदे मातरम पढ़ा दिया। और एक घटना, आप मेरी नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग नहीं जानते, अब्दुल हमीद का नाम भी नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते होंगे।
1: जी जी,
0: पेंटन टैंक जो अभेद्य माने जाते
1: हैं, हाँ, उस समय,
0: उस समय पेंटन टैंक चढ़े थे जिस दिन भारत की सीमाओं पर, पेंटन टैंक चढ़े थे जिस दिन भारत की सीमाओं पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वीर प्रसूता माओं पर। ठीक टैंक के नीचे घुसकर जहां बारूदी गोला था, टैंक फोड़ अब्दुल हमीद ने वंदे मातरम बोला था।
1: क्या बात है,
0: टैंक फोड़ अब्दुल हमीद ने वंदे मातरम बोला था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबकी बात निराली थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबकी बात निराली थी। वंदे मातरम अंग्रेजों को लगती जैसे गाली थी।
1: जी जी जी, आपने जो शुरुआत की चर्चा में हम कर रहे थे कि ये जो है संघर्ष का गीत बना,
0: हाँ,
1: ये जो है जयघोष का गीत बना, तो वो यहीं से बात है।
0: हाँ, वो बिल्कुल यहीं से बात है। सार्वजनिक मंचों पर जब जब बेटे बांचा करते थे, ये सार्वजनिक मंचों पे सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया कांग्रेस के में,
1: जी जी,
0: उसके बाद इसको इतनी प्रसिद्धि मिली कि सार्वजनिक मंचों पर जब जब बेटे बांचा करते थे, इसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे। यह जीता था, ये जीता वंदे मातरम, तभी हमको क्या क्या अधिकार मिल पाए कि यह जीता था इसीलिए तो आजादी घर में आई, यह जीता था इसीलिए तो आजादी घर में आई, संविधान लागू करने की ताकत हमको मिल पाई, यह जीता था इसीलिए तो सारे धर्म सुरक्षित हैं, गीता, रामायण, कुरान भी इसी गीत से रक्षित हैं, गीता, रामायण, कुरान भी इसी गीत से रक्षित हैं, सच्ची आजादी का हमको स्वाद अगर जो चखना है, सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर वंदे मातरम रखना है, सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर वंदे मातरम रखना है।
1: जी जी, तो चर्चा भी जैसा आपने अपनी इसमें व्यक्त किया है कि अगर हमें देश को सुरक्षित रखना है, आजादी को सुरक्षित रखना है, उसमें समाज को आगे बढ़ते और फलफूलते देखना है, तो संवैधानिक स्थितियों को हमें बचा करके रखना होगा और उनको सर्वोपरि रखना होगा और लागू भी करना होगा सच्चे मन से, तभी शायद हम वो सोसाइटी, वो समाज और वो देश बना सकते हैं जिसकी कल्पना उन लोगों ने की थी जिन्होंने, आपने कहा कि बचपन में कुछ लोगों ने कुर्बान किया,
0: 13 वर्ष के बच्चे ने कुर्बानी दी
1: और वो उसका प्रतीक जो है वंदे मातरम है। तो आज जब हम इन सब चीजों में कहीं गिरावट देख रहे हैं सुरेन जी, आज जब हम ये देख रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा होता हुआ लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे अपने हकों की लड़ाई में कहीं बड़ा परिदृश्य खराब न हो जाए, बड़ी लड़ाई हमसे छूट न जाए, तो क्या आज एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से है? वो संघर्ष तो नहीं है कि हमें आजादी प्राप्त करनी है, लेकिन जो प्राप्त आजादी है जिन लोगों के खून से, जिन लोगों के बलिदान से, जिन लोगों के स्वप्न से ये हमको मिली, कहीं ये फिर से खतरे में ना पड़ जाए, तो आज के समाज और आज की सोसाइटी पर ये बड़ी जिम्मेदारी,
0: ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बुलंदी पर पहुंचना तो कमाल है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी बड़ा कमाल है। तो आजादी को प्राप्त करना निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन उस आजादी को सुरक्षित रखना उससे भी बड़ी लड़ाई है, और आज वही लड़ाई लड़ी जा रही है। और उस आजादी को सुरक्षित रखने, अच्छा, आजादी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको हमने पकड़ा और सुरक्षित रख दिया,
1: कहीं उठा के ऐसे तिजोरी में रख दिया।
0: आजादी के प्रतीक ही तो है,
1: हाँ, जैसे दास्ता के प्रतीक होते थे ऐसे आजादी
0: के प्रतीक हैं। भाई, हम

0: जैसे यूनियन जैक जहां लहराता था वहां अब तिरंगा लहरा है, वो आजादी का प्रतीक है। तो हम जब तक उस तिरंगे की रक्षा करते हैं, हम हमारी आजादी की रक्षा करते हैं। वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, जनगणमन जितने भी हैं, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे संघर्ष के प्रतीक हैं, आज उनकी न केवल रक्षा करें बल्कि उनके महत्व को और भी समझें। यही सबसे बड़ी लड़ाई है आज की तारीख में। आज कोई हमारा ऐसा प्रत्यक्ष दुश्मन नहीं है कि जैसे पहले दिखाई देते थे कि यार इन लोगों ने हम पे, हमारे सिंहासनों पर अधिकार किया हुआ है, इनको मारो हम आजाद हो जाएंगे। अब हमारी जो लड़ाई है वो भावनाओं की लड़ाई है। वो जो भावनाएं इन चीजों से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों से, वो भावनाएं न मर जाएं,
1: जी, उनको जिंदा रखना है।
0: उनको जिंदा रखना है। भाई जैसे गाता हूं इसलिए कि भावुकता न कहीं मर जाए तुम्हारी, गाता हूं इसलिए कि सूरज तमका हो ना जाए पुजारी। तो अगर लोगों की भावुकताएं मर गई, लोग अगर वंदे मातरम के महत्व को ही नहीं समझ पाए, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आजादी के प्रति भी उनकी समझ मर
1: तो
0: जाएगी।
1: जो चीज अब कहते हैं गुलामी की शुरुआत विचार से ही होती
0: विचार
1: है,
0: से होती है।
1: तो अगर उस समय मैकाले ये सोच सकते हैं कि यहाँ के व्यक्ति को अगर गुलाम करना है तो अपनी शिक्षा पद्धति लागू कर दो
0: बिल्कुल
1: और ये समाज तो अपने आप गुलाम हो जाएगा। ये विचार से और शिक्षा से ही तो शुरू हुई। तो आज अपने विचार में और शिक्षा में हमको ये चीज देखते रहना पड़ेगा कि भाई कम से कम चीजें उस रूप में न जाएं कि फिर से हम एक उस जंगल में चले जाएं किसी विचार और भाव के लिए कि बड़ा परिदृश्य जैसा मैं कह रहा था फिर से तिरोहित हो जाए, गायब हो जाए, खतरे में पड़ जाए।
0: नहीं, ये ऐसा लगा था बीच में कुछ समय के लिए कि ये क्या हो रहा है, और एक निराशा का सा भाव आने भी लगा था, क्योंकि एक फैशन हो गया था अपने राष्ट्रीय प्रतीकों पर टिप्पणी करना और उनकी हंसी उड़ाना।
1: जी
0: ये हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने एक फैशन बना लिया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं
1: लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो उसके पीछे वो ही काम कर रहा था, सोच वो ही काम कर रही थी।
0: हो सकता है।
1: वो मजाक उड़ाने वाले और उसको नीचा दिखाने वाले लोग तो कुछ ही थे,
0: हाँ, कुछ ही
1: लेकिन
0: थे,
1: परसेप्शन तो बड़ा बन रहा था।
0: बड़ा बन रहा
1: विचार मतलब
0: था।
1: चीजें जा तो इम्पेक्ट तो दूर तक जा रहा था, लोग उससे हट भी रहे थे। तो अब
0: हाँ,
1: जब उसको हटता हुआ या उसको नीचे देखते होते हैं दूसरा परिदृश्य उभर के आ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है।
0: हो रही है, हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है।
1: तो मतलब चीजें क्या ठीक दिशा में आपको जाती हुई दिख रही
0: नहीं,
1: है?
0: अब हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अब आम पब्लिक में एक थोड़ी सी भावना आ रही है अपने गौरव के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, कि नहीं, ये लिखा गया है या ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, निश्चित रूप से इन चीजों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे उन शहीदों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अब लोग बाग इनके मजाक को सार्वजनिक रूप से सहन नहीं कर रहे हैं,
1: हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं
0: विरोध कर रहे
1: कि नहीं
0: हैं।
1: ये नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अब इसमें चलिए, एक आप जैसे जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, वो तो इस बात को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्योंकि भारत जैसी परिस्थितियां, भले हम आजादी के अब 75 साल से आगे निकल गए, 2047 में हम विकसित भारत की संकल्पना भी, हमारा नेतृत्व उसको लेकर के चल रहा है, उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं, वो ऐसा फलित होगा ये हम स्वप्न भी देख रहे हैं, उसमें हमें अपना प्रयास भी करना है। तो एक आम आदमी जो अभी भी रोजी रोटी कमाने में लगा है या उसके पास वक्त नहीं है या उसकी सोच में वो दायरा नहीं है, वो स्वप्न नहीं है, लेकिन सोसाइटी तो सबसे ही बनती है, देश तो सबसे ही बनता है। तो एक आम आदमी से जो अपने धंधे में लगा है, काम में लगा है, इन राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय परिदृश्य और देश भावना के लिए आप क्या कुछ एक अपील के तौर पर कहना चाहेंगे या उसकी भी भूमिका लगे? जब हम 2047 में विकसित भारत को होते हुए देख रहे होंगे तो जो भी पीढ़ी रही होगी तो उसे भी लगे नहीं यार मेरा भी योगदान था या मेरे परिवार का या मेरे समाज का भी योगदान था, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूं। तो हर व्यक्ति की भूमिका तो कुछ बनती है, कुछ रोल तो होते हैं, कुछ आदर्श भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो क्या व्यक्ति के जैसे हम जब आजादी में जी रहे हैं तो अधिकारों की बात आज हम ज्यादा करने लगे हैं, कर्तव्य कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कर्तव्य बोध को अगर हम आगे रख लें तो हर व्यक्ति का योगदान हो सकता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो?
0: बेशक हो सकता है।

मैं कई बार कहता भी हूं और मैंने उसका परिणाम भी देखा है। जैसे आप कह रहे आम आदमी, मैं कई बार देखता हूं और मैं कई बार इस बात पर लोगों से लड़ाई भी कर बैठा हूं। जब ऊपर पानी की टंकी भर गई, मोटर चल रही है और पानी फैल रहा है, टोंटी नहीं है, तो मैंने गाड़ी रोक करके भी कहा, मैंने कहा भाई आप इसमें 20 रुपए की टोंटी क्यों नहीं लगवा सकते, बोला आपको क्या मतलब है, पानी हमारा फैल रहा है।

0: हमने कहा अब तलवार लेकर के कहीं देश का विकास करने की आजादी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हम जहां भी हैं अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस देश के योगदान में अपना हिस्सा दे सकते। मैं आपको बताऊं, मैं वहां गया, चित्तौड़गढ़ में गया घूमने, जहां वो जौहर कुंड है, तो वहां बैठे हुए थे। अच्छा, देखने के लिए वहां वैसे कुछ भी नहीं है, अब तो वो जौहर कुंड को भी पाट दिया गया है, लेकिन वहां 10-20 ऐसे लोग भी थे जो ऐसे कोई मतलब बिल्कुल आम आदमी जैसे। तो मैंने उनको वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ के बारे में, यहाँ क्या है देखने के लिए? तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा साहब है तो कुछ नहीं, लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमको एक भावना आती है कि वो पद्मिनी यहीं जौहर में कूदी थी तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं
1: उसको याद करके।
0: तो जैसे मैं जब भी निकलता हूं कभी अपने कवि सम्मेलनों की यात्रा में इधर बुंदेलखंड में, तो मैं सच बता रहा हूं कि वो जो पहाड़ पर्वत जो मिलते हैं, बेतवा नदी मुझे मिलती है आज भी, तो मैं सोच के रोमांचित हो जाता हूं कि ये कितने धन्य है ये पत्थर, ये इनमें कभी महारानी लक्ष्मीबाई के पैर पड़े होंगे। तो अब ऐसे ही ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि इस गीत को तुम क्या समझ रहे हो, इसको इतने बड़े बड़े लोगों ने गाया, भगत सिंह ने गाया था। अब वंदे मातरम को आम आदमी नहीं जानता, लेकिन भगत सिंह को जानता है,
1: उनसे जुड़ाव महसूस,
0: उनसे जुड़ाव महसूस करता है। उसको आज भी लगता है कि यार हमको आजादी तो इन्होंने ही दिलवाई थी। तो जब हम उनको कहते हैं कि यार इसको चंद्रशेखर आजाद गाते थे, भगत सिंह गाते थे, तो उनको लगता है यार ये तो कोई बड़ी चीज है। तो उसकी रक्षा करने के लिए अब आम आदमी तैयार भी होने लगा है।
1: तो ये जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे समाज के प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है, जिनको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके कार्यों से आज हमको आजादी मिली, जिसका हम भोग भोग रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। तो इनकी रक्षा जहां जैसे है, और वो सिर्फ विचार से तो करेंगे करेंगे, लेकिन कर्म में भी आनी चाहिए कि हर चीज देश की है, देश ने मुझे दिया है, चाहे मिट्टी दी हो, चाहे मुझे जीने का मौका दिया हो, समाज ने भी मुझे यहाँ तक आने में अपना एक अदृश्य रोल निभाया है। तो इन प्रतीकों को अगर मैं जिंदा रखता हूँ, उनके साथ भाव रूप में जुड़ पाता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी उसमें। तो चलते चलते मतलब हम जहाँ हैं, जिस रूप में, जो भी हमारे कार्य दायित्व है, उनको हम ठीक से निभा लें देश और समाज के लिए, तो हम अपना जो योगदान है उसको पूरा कर पाए।
0: हाँ बिल्कुल, विवेकानंद जी ने अपनी आत्मकथा में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आप देशभक्त हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है आप अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करें। क्यों? आप जब प्रदर्शित करेंगे तो 10 लोग और प्रेरणा लेंगे। ठीक वही आज जरूरत है, हमें हमारे इन प्रतीकों पर, राष्ट्रीय प्रतीकों पर अभिमान है, लेकिन हम उस अभिमान को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें तो हमें देख करके और 10 लोग भी अभिमान करेंगे। और बस चलते चलते मैं तो यही कहता हूं, शहीदों का जला दीपक कहीं ना मंद हो जाए, उजाला ज्ञान का फैले, यहां आनंद हो जाए, अगर भगवान मिल जाए, कहें वरदान तुम मांगो, प्रभु इस देश का वासी विवेकानंद हो जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब वो ज्ञान की, वो जोश की, वो एक चिंतन की लहर, चीजों को सही रूप में हम देख पाएं, जान पाएं, जुड़ पाएं, और उसको सही मायने में व्यक्त भी कर पाएं, जीवन में उतार भी पाएं, यही सबसे बड़ी आपकी अपील और श्रद्धांजलि हो सकती है सबके लिए। श्रोताओं, आप थे सुरेंद्र शर्मा सार्थक जी, आप यूं तो साहित्यकार हैं, कवि हैं, शिक्षक भी हैं, और आज हम चर्चा कर रहे थे वंदे मातरम गीत की उस भाव की और उस कामना की कि जिसको लोगों ने सोचा, जिया, गाया, और वो आज भी प्रासंगिक है। रूप बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, गाने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन वो प्रासंगिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सार्थक जी आए, आप अपनी विचार वाणी से हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत, शीर्षक था भावना एवं कामना का गीत वंदे मातरम। वार्ताकार थे सुरेंद्र शर्मा सार्थक, और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना।

श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 11 जून यानी आज 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधित समस्या से COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या से ग्रसित हैं, इनके समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 11 जून यानी आज और समय दिन में 12 बजे। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़।

प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 10 बजने को हैं। श्रोताओं, इस समय प्रसारित होने वाले कार्यक्रम NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अब दोपहर में 2:30 से होता है। शिक्षा एवं जीवन के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोग इस कार्यक्रम को अब परिवर्तित समय दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, सुखविंदर सिंह और सोनू की युगल आवाज़ों में प्यार तूने क्या किया फिल्म का ये गीत। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लगान से, आवाज़ें हैं वासुन उदित नारायण और अलका याग्निक की, शब्द रचना जावेद अख्तर की है और इस गीत को धुन से संवारा है AR रहमान ने।

0: अभी आपने सुना प्रीति पिंकी बाबुल सुप्रियो का ये गीत। फिल्म का नाम था मुझे कुछ कहना है। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक, अनु मलिक और अमित कुमार की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है मुजरिम। शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से संवारा है अनु मलिक ने।
1: शादी का दिन है, शादी का दिन है।
2: क्यों भाई लखपति?
3: हाँ भाई।

0: बदी।
1: यहाँ तो लोग सब ऐसे बैठे हैं जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है,
0: पुलिस खड़ी है,
1: खटिया खड़ी है।
0: अरे उठो, नाचो,
1: गाओ, हुल्लड़ मचाओ।

0: रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे, रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे, रात के 12 बजे।
1: और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम था मजबूर। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 11 जून यानी आज 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल, मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी या कारण सांस की समस्या से ग्रसित हैं, इनके समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 11 जून यानी आज और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था महबूबा, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था इस्माइल दरबार ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है डर, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को संगीत से संवारा है शिव हरि ने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कसूर। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन दिया है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मानवर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति यूनिवर्सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है प्रजापति जी कार्यक्रम में आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर।
1: मैं भी अच्छा।

0: हो, स्वस्थ हो, आपका आशीर्वाद माँ के बिहारी कृपा से, घर परिवार में भी सब लोग आनंद से हैं और रेडियो सुनते हुए ग्रीष्म ऋतु का आनंद उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी से भी थोड़ा बचाव रखिए और कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए।
0: जी जी, समय समय पर पानी पीते रहता हूँ, आधे घंटे एक घंटे के अंतराल में, और रेडियो के साथ में हमारा जुड़ाव बना रहता है।
1: बिल्कुल सर, आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में।
0: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, का नाम है बादशाहो, गीत के बोल है लहरा के ऐसे रूबरू आ गई।
1: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत आभार आपका।
0: जी, हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, राधे राधे सर।
1: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
0: सर हम नगला चंद्रवान दीनदयाल धाम से लव कुमार बोल रहे हैं।
1: लव कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: जी सर, हम पहली बार आपके कार्यक्रम से जुड़े हैं सर। हाँ
1: नाम तो आपका बड़ा अच्छा है,
0: सर।
1: आपको बड़ी शुभकामनाएं। आपकी हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी सर।
1: क्या करते हैं लव कुमार जी?
0: सर अभी मैं स्टडी करता हूँ, अभी मैं यूपी पुलिस का पेपर दे के आया हूँ, मैं स्टडी करता हूँ सर।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको सफलता प्राप्त हो, हमारी
0: जी
1: ऐसी
0: सर।
1: कामना है। कार्यक्रम कब से
0: सर
1: सुन

0: रहे हैं हमारा?
1: सर मैं आपका कार्यक्रम कम से कम 2 साल से सुन रहा हूँ।
0: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
1: फरमाइश रहेगी सर, ब्रज चौरासी कोस का भजन है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का गाना, आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: जी सर, थैंक यू सर।

0: हेलो,
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर
0: अशोक जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आप कैसे हैं सर, आपके परिवार और आकाशवाणी टीम?
0: हम लोग सब अच्छे हैं, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
1: जी सर, बस गर्मी से थोड़ा एहसास हुआ कम।
0: कुछ कम हुआ है?
1: कल बारिश हुई थी, मगर अब धूप निकली है।
0: हाँ, ऐसे बदलते मौसम में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: जी सर,
0: जी
1: विश्व नेत्रदान दिवस है, सबको अपना दान दान करना भी चाहिए। नहीं करना है तो अपनी आंखों का ख्याल
0: जी जी
1: रखें।
0: बिल्कुल, अपने नेत्रों का भी ध्यान रखें और नेत्रदान भी करें, ये बहुत अच्छी सलाह है आपकी।
1: जी सर, एक गाना है, न गंगा में डूबा न जमुना में डूबा।
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो राधे राधे। सर
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: बोल रहा हूँ जी, धनगाम
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: से। सुनाइए तुम बढ़िया, बता टीम कैसी हमारी।
0: आपकी टीम अच्छी है, हमारा कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: बिल्कुल लगातार सुनते हैं हमको।
0: ठीक है, आज बताइए क्या फरमाइश है।
1: आज हमें सुना दीजिए घरदार फिल्म से तो कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो।
1: सर नमस्कार, कैसे
0: नमस्कार।
1: हैं सर?
0: बहुत अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी धर्मवीर सिंह नंगला भोपला जी सर, आगरा से सर।
0: आपका स्वागत है धर्मवीर जी कार्यक्रम में। आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में धर्मवीर जी?
1: सर हम आपकी फरमाइश का सुनना चाहते हैं। हम अपनी फरमाइश तो करते ही, मैं करीब 20 दिन में या 22 दिन में फोन करता हूँ, लग जाता है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: जल्द जल्द फोन नहीं करता क्योंकि दूसरों का भी नंबर आना चाहिए। हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है।
1: जैसे गौरैया चिड़िया विलुप्त तो होती जा रही है हमारे यहाँ से,
0: जी
1: उनके लिए दाना पानी वो सब डालते रहे। जी
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार सर, राधे राधे।
0: राधे राधे।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 11 जून को 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीवी, फेफड़ा और श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530135 यानी 0565-2530135 पर फ़ोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सअप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास से संबंधी समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीवी के कारण सांस की समस्या से ग्रसित हैं, इनके समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीवी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 11 जून यानी कि आज 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जहां हंसी की गूंज हो, जहां उमंगों का मेला हो, वहीं खिलता बचपन है, वहीं जीवन अलबेला हो। खेल केवल मनोरंजन नहीं, जीवन जीने की कला है, हार जीत से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का हौसला है।

साथियों, आज हम सब इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के अवसर पर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। आज के आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं। ऐसे समय में खेल का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल हमें अनुशासन, टीमवर्क, नेतृत्व, धैर्य और संघर्ष करना सिखाते हैं। कहा भी गया है कि मैदान में जो गिरकर संभलना सीख जाता है वो जीवन की हर मुश्किल से लड़ना सीख जाता है। साथियों, खेल हमें स्वस्थ रखते हैं। नियमित खेल कूद से शरीर मजबूत बनता है, मन प्रसन्न रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। किताबें ज्ञान देती हैं, खेल पहचान देते हैं। जो मैदान में पसीना बहाते हैं वही नई उड़ान देते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि हार अंत नहीं होती बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। खेल में अपने आप को, खुद को इतना हमें मशरूफ कर देना चाहिए कि हमारा हर कष्ट, हर दुख जीवन की इस दौड़ में पीछे छूट जाए। हार कर बैठ जाना खेल की पहचान नहीं, फिर उठकर दौड़ पड़ना ही सच्चे खिलाड़ी की निशानी है।

साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एक ऐसा दिवस है जो हमें याद दिलाता है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और सफल जीवन की आधारशिला है। खेल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, युवाओं में आत्मविश्वास जगाते हैं और बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि जीत पर विनम्र कैसे रहें, हार से सीखकर कैसे आगे बढ़ें। मैदान में सीखा गया अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की राह प्रशस्त करता है। खेलों से खिलता है जीवन का हर रंग, तन रहता है स्वस्थ और मन रहता है चंग। आज के समय में साथियों, जब बच्चे मोबाइल और स्क्रीन के बीच सिमटते जा रहे हैं, तो खेल उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। खेल बच्चों के नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। यही गुण आगे चलकर उनके करियर और व्यक्तित्व का निर्माण में भूमिका निभाते हैं। उड़ान भरनी हो अगर ऊंचे आसमानों तक, तो खेलों से दोस्ती करना जरूरी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जीवन में जिनमें संघर्ष सहना जरूरी है।

साथियों, खेल केवल बच्चों और युवाओं के लिए ही नहीं है। बुजुर्ग यदि नियमित रूप से टहलें, योग करें, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज या अन्य हल्के खेलों में भाग लें तो उनका शरीर अधिक सक्रिय और मन अधिक प्रसन्न रहता है। खेल उम्र नहीं देखते, वे केवल उत्साह और सहभागिता देखते हैं। बचपन में खेलों से तो भविष्य संवरता है, युवावस्था में खेलो तो आत्मविश्वास निखरता है, बुढ़ापे में खेलो तो स्वास्थ्य संवरता है। खेल हर उम्र में जीवन को बेहतर बनाता है। खेल हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना क्या होता है, मेहनत का क्या महत्व है और हार मानना क्यों नहीं चाहिए। यही कारण है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाते हैं।

साथियों, किताबें ज्ञान देती हैं, खेल पहचान देते हैं, मेहनत करने वालों को ये नई उड़ान देते हैं। मैदान में गिरकर फिर से जो संभलना सीख जाते हैं, वो जीवन के हर संघर्ष को आसान बना लेते हैं। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने दैनिक जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को स्थान देंगे, बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, युवाओं को खेल भावना अपनाने की प्रेरणा देंगे और बुजुर्गों को भी सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए खेलों से जोड़ेंगे। खेलो, कूदो, आगे बढ़ो, यही सफलता का सार है। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और उज्जवल भविष्य का आधार है। जीवन को खुशहाल बनाना है यदि हर पल, तो खेलों को अपनाना ही सबसे सुंदर विचार है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय है अस्थमा, टीवी, फेफड़ा और स्वास्थ्य संबंधी रोग, कारण और निवारण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीवी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल
1: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।

श्रोताओं नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत आपका अपने कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में। और आज हम, जैसा आपको जानकारी देते रहे, कि कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे फेफड़े से संबंध हैं, श्वास से संबंध हैं, इसमें अस्थमा है, एलर्जी है, टीबी भी हो सकती है। तो इस तरह की संबंधी जो समस्याएं आपके फेफड़ा संबंधी हों, जो लंग्स हम जिसको बोलते हैं, तो आप हमें बताइएगा। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 0565 कोड लगा के 2530-135 नंबर नोट करिएगा। एक नंबर है 94-122-25-575। तो ये दो टेलीफोन लाइनें जुड़ी हुई हैं। आप इस पर हमारे श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, जो भी समस्याएं हो, आप हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर लव।

0: गुप्ता साहब हैं, आप वरिष्ठ पल्मोलॉजिस्ट हैं सिम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो बताइए, वैसे तो भारत देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, और गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होगी, कुछ डस्ट भी होगी, तो इस समय किस तरह की प्रॉब्लम हमारे श्रोताओं को फेफड़ों संबंधी हो सकती है? बाकी तो फिर जो हमारे श्रोता जुड़ेंगे, पूछेंगे, वो आपसे जानेंगे उसमें। तो थोड़ा सा इनिशिएट करिए कि किस इस तरह की समस्या हमारे श्रोताओं को इस समय आ सकती है।
1: जैसा कि आपने बताया, अभी बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, धूल उड़ रही है। ऐसे में जो सांस के मरीज हैं, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, अस्थमा है, COPD है, ILD है, TB है, इस तरह के जो मरीज हैं जिनको सांस की बीमारी है, ऐसे मरीजों को उस समय सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ये पेशेंट्स को अभी ऐसे पेशेंट्स को अभी सांस लेने में दिक्कत बढ़ती है, खांसी ज़्यादा होती है, बलगम आता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार आ सकता है ना, और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, पेशेंट का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है कई बार। तो ऐसे पेशेंट को इस समय समस्याएं ज़्यादा रहती हैं।
0: जी जी जी। डॉक्टर साहब, अब इसमें कुछ डॉक्टर, कुछ पेशेंट तो हमारे ऐसे हैं जिनको जो समस्या है वो पता है कि हमारी क्या कुछ समस्या है, हमको तो वो सावधान हो जाते हैं, चाहे मौसम चेंज हो, चाहे ऋतु चेंज हो उसमें, या परिस्थितियां चेंज हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं इस बीमारी से या इस एलर्जी से या इस तरह की परेशानी से दो चार हूँ, और वो उसके साथ जीने की आदत सी पड़ी रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जुकाम है, खांसी है, ये कई बार अचानक और बीमारियों में भी होता है, तो लेकिन वो इस तरह की क्रॉनिक डिजीज के भी पेशेंट है, वो कैसे पता लगे उनको, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं?
1: देखिए, एलर्जी के पेशेंट्स का सबसे कॉमन लक्षण है छोटी छोटी, मतलब कोई भी वेदर में कोई भी बदलाव आएगा मौसम में, या कोई भी ठंडी चीज खा ली, ठंडा पानी पी लिया, हल्की सी ठंड लग गई, या किसी भी ऐसी चीज के संपर्क में आए जिससे उनको एलर्जी है, तो उनको तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे जो भी पेशेंट है जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, जिनकी कुछ पेशेंट्स बोलेंगे साहब मेरी तो सर्दी ठीक ही नहीं होती, तो हमेशा रहती रहती है, बहुत खांसी होती है, गले में खुजली सी महसूस होती है, छाती में साई साई की आवाज़ हो रही है, ऐसे पेशेंट्स को विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए।
0: जी जी जी जी। कुछ श्रोता हमसे जुड़े, एक बार हम फिर से नंबर बता देते हैं उनको, 0565 कोड लगा करके 2530135 पर आप फोन कर सकते हैं, 9412-25575 है, ये दो लाइन है, आप हमको फोन करिए, अपनी समस्याएं कहिए, डॉक्टर लव गुप्ता हमारे साथ है। एक श्रोता शायद हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हाँ जी
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना।
2: भीकम सिंह बोल रहा हूँ, जुड़ावई
0: से। जुड़ावई से भीकम सिंह।
2: हाँ जी,
0: बताइए भीकम सिंह जी, क्या समस्या है आपको?
2: मेरे खाना खाना कभी बंद हो गया था, जो कैंसर ने एक्स्ट्रा कराया, तो मेरी टीबी घोषित कर दी।
0: टीबी घोषित कर दी, मतलब फेफड़ों की ना?
2: हाँ
0: ठीक है।
2: 2.5 लीटर पानी निकला।
0: जी जी,
2: 2.5 लीटर पानी है, और मेरी उम्र 1.80 है।
0: इस समय 80 साल है आप उम्र? जी जी। तो अब डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं?
2: बाएं तरफ वो दवाई लेता हूं, जब मालूम पड़ता है।
0: जी जी,
1: नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि आपके छाती में पानी भरा था, 2.5 लीटर पानी निकला आपके फेफड़ों से। तो इसमें क्या होता है कि टीबी की दवाई से बाबूजी, हाँ पानी तो सूख जाता है, पर जो ये पानी जमता है, ये इसलिए जमता है क्योंकि फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली की वजह से टीबी, जिस झिल्ली में आपके टीबी हुई थी, इसी वजह से आपके पानी जमा था, तो वो झिल्ली में थोड़ी सी सूजन रह जाती है। तो जब भी आप जमाई लेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, या जोर से खांसेंगे या गहरी गहरी सांस लेंगे, तो वो झिल्ली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से आपको हल्का सा, जैसे कोई कुछ सुई चुभा रहा है या छुरा चुबा रहा है, इस तरह का पेन, हल्का सा दम, मतलब दर्द आपको रहेगा, और ये काफी लंबे समय तक रहता है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
0: जी, मतलब इसमें थोड़ा सा जिन डॉक्टर से वो किया वहाँ सलाह लेते रहे उसे।
1: जी बिल्कुल, बाकी अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहिए।
0: जी जी, एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार भैया, बताइए अपना नाम।
2: जी

0: आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप हमारी आवाज सुन पा रहे?
1: चीतर सिंह है नाम मेरा, चीतर सिंह।
0: चीतर सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शाहपुर राया के पास से बोल रहे हैं।
0: अच्छा शाहपुर राया, बताइए बताइए समस्या बताइए, डॉक्टर साहब से बात करिए आप।
1: मेरे को रात को सोते समय परेशानी होती है, सांस नहीं ली जाती है।
0: उम्र कितनी आपकी?
1: मेरी 72 ईयर।
0: 72, सोते समय इनको घबराहट होती है।
1: एक तो ये समस्या है, रास्ता चलते समय भूलती है
0: जी।
1: अच्छा, और खाना मैं पूरा खाता हूँ, चार रोटी शाम को चार
0: रोटी। तो अभी आपने दिखाया किसी को?
1: मेरा क्या नाम है, डॉक्टर साहब रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में।
0: टीबी है आपको?
1: टीबी नहीं बताया।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब
1: जी,
2: नमस्कार बाबू जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको, अगर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी रात में सांस फूल रही है या फिर चलने पे सांस फूल जा रही है, तो शायद आपकी जो बीमारी है वो अच्छे से भी कंट्रोल हो नहीं पा रही है। इसमें क्या है कि कई बार तो दवाइयाँ मतलब थोड़ी, कई बार डोज बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भरपूर डोज देने के बाद भी सांस फूलती है तो आपके फेफड़े उतना काम नहीं कर रहे होते हैं या दवाइयों से वो अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बीड़ी सिगरेट इनके सेवन से दूर रहना चाहिए, धूल मिट्टी धुएं से बचाव रखनी चाहिए। आपकी दवाइयां समय पे लीजिए और विशेषज्ञ सलाह लेते रहें।
0: जी जी, तो एक बार आप चितर सिंह जी आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं आप, है ना। आपको अगर जी अब हमारी सलाह यह है कि अगर आपको पहले डॉक्टर से फायदा नहीं पड़ रहा, क्यों डॉक्टर साहब, तो आपको दूसरी जगह एक बार और चेकअप करवा लेना चाहिए, थोड़ी सी दवाई, थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन आप ले लें। ठीक जी जी। तो अब ऐसे उसमें डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई अब ये रिमोट थोड़ा सा गांव के लेवल से बात कर रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर को दिखाया, एक हॉस्पिटल में गए वो मिली, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इलाज मुकम्मल हो गया, अब इसके आगे कोई वो ही नहीं है।
2: देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, कई बार क्या होता है कि हमारे रिमोट एरियाज में मतलब उतना इनहेलर्स या सूतने वाले कैप्सूल जो हम देते हैं नेबुलाइजर्स, उनको लेके पेशेंट में इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं है, तो पेशेंट क्या होता है उनको लेते नहीं है। कई बार उनको लगता है कि इनकी आदत पड़ जाएगी या इनसे नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए पेशेंट इस तरह ये मतलब इनहेलेशनल जो ड्रग्स हैं नेबुलाइजर्स हैं इनको नहीं लेते हैं और वो गोलियों में ज्यादा निर्भर रहते हैं। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की स्थिति पहले से ही मतलब मान लो उसके फेफड़े पहले ही इतने खराब हो चुके हैं कि हम दवाइयों से जो थोड़े बहुत भी काम कर रहे हैं वो दवाइयों की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो वो दवाइयों की वजह से ही पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते भले ही आप कितनी भी दवाई ले लो। तो ऐसे में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हम बोलते हैं जिसको, हम लोग मतलब हम लोग फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। तो एक्सरसाइज के माध्यम से पेशेंट के फेफड़े चलाना
0: जी जी जी। एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे, हेलो जी नमस्कार।
3: मेरा नाम रूप राम है
0: जी।
3: हाँ 53 साल की मेरी उम्र है।
0: 53 साल उम्र है, नाम क्या बताया आपने?
3: रूप राम
0: कहाँ से बोल रहे?
3: लक्ष्मी नगर से, मकान लक्ष्मी नगर।
0: अच्छा चलिए, समझ में नहीं आ रहा, समझ से बताइए आप।
3: मेरी समस्या ये है कि मेरे सर्दी जुकाम हमारा रहता है, चलने में सांस फूल जाती है मेरी।
0: अच्छा अच्छा, और रूप राम जी उम्र कितनी है आपकी?
3: 53 साल।
0: 53 साल, ठीक है। ये
2: अच्छा, आप बीड़ी सिगरेट कुछ पीते हैं क्या?
3: बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता हूँ मैं।
2: पहले पीते थे?
3: पहले तो पीता था।
2: ठीक है, इसमें क्या होता है बाबूजी, इस बीमारी को हम COPD बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप मतलब चाहे पहले पीते हो सिगरेट या अभी पीते हो, इसकी वजह से आपके फेफड़े में डैमेज हो गया है। आपके जो फेफड़े हैं, सांस की नलियां हैं, वो अंदर से सिकुड़ चुकी हैं, उनमें सूजन आ गई है, तो अंदर से सिकुड़ने की वजह से उनमें हवा नहीं जा रही है जिसकी वजह से आपकी सांस फूल रही है और जल्दी जल्दी जुकाम सर्दी हो रहा है, बलगम जम रहा है। तो ऐसे में ना आपको PFT की जांच करा के और आपको अगर कोई इनहेलर वगैरह आपके जो भी डॉक्टर साहब देंगे वो आपको शुरू कर लेना चाहिए। और मतलब इसमें पीएफटी कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, कारण कि आपके जो

0: फेफड़े है ना, उससे पता चलेगा कि आपके फेफड़े एग्जैक्टली कितने परसेंट
1: काम
0: कर रहे हैं। तो है ना, तो फिर हम उस हिसाब से फिर आपको दवाई आगे दे पाए।
1: जी जी जी जी डॉक्टर साहब, जैसे पिछले उसमें भी हमारी ये बात हो रही थी कि जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो श्रोता जो हमारे मरीज भी हो सकते हैं, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि कई बार उनकी आदत नहीं पड़ जाए, उनसे नुकसान नहीं हो जाए और उनको नहीं लेते तो एक बड़ा नुकसान झेलने को तैयार हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम अगर हम डॉक्टर पर जा रहे हैं तो उसकी बातों पर विश्वास तो करें। बहुत सारी चीज़ें जीवन में और भी आ रही हैं, उनको हम अपनाते हैं। अच्छी गाड़ियाँ आ गई, अच्छे टेलीफोन आ गए, अच्छा खान पान आ गया, अच्छे मकान आ गए, एसी आ गए, तो उन चीज़ों को तो हम अपना लेते हैं। लेकिन दवाइयों में अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छे हमारे पास साधन आ रहे हैं, तो उसमें क्यों झिझक होती है? तो आप एक चूँकि रोजाना दो चार होते, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को कि इसमें थोड़ा सा आना चाहिए सामने, इसमें झिझक को तोड़ना?
0: देखिए मैं आपको बताऊँ कि मतलब पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी मेडिसिन बहुत इवॉल्विंग ब्रांच है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तरीके से दवाइयाँ आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं। क्या होता है कि दवाई तो वही होती है ना, उसकी मैं आपको गोली खिला दूं टैबलेट बना के, या फिर जैसे आप इनो है ना, इनो आप पीते हैं भाई, आप अगर आपको गैस हुई आपने गैस का इंजेक्शन लगवा लो, या फिर आप इनो पी लो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे आप बताइए? इनो पीना पसंद, क्यों?
1: क्योंकि तुरंत उसे लाभ मिल,
0: तुरंत लाभ मिल जाएगा और इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो फेफड़े के जो इनहेलर है वो इनो की तरह है। इसमें क्या होता है कि दवाई तो वही है, वही दवाई मैं आपको, हम इमरजेंसी में इंजेक्शन के माध्यम से लगाते हैं, कुछ लोग पेशेंट्स को टैबलेट के माध्यम से खिलाते हैं। हम वो इनहेलर आपको इसलिए देते हैं क्योंकि इससे एक तो
1: तुरंत
0: लाभ होगा, दूसरा मैं आपको जो दवाई खिलाऊंगा वो आपके पेट से खून में जाएगी, और खून के माध्यम से आप कोई भी दवाई होती है वो खून के माध्यम से ही उस ऑर्गन में जाती है। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में जाएगी, किडनी में भी जाएगी, लिवर में भी जाएगी, ब्रेन में भी जाएगी,
1: वो तो जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां जाएगी,
0: वहां जाएगी। तो अब एक दवाई जो सिर्फ फेफड़े में जा रही है और एक दवाई जो पूरी बॉडी में जा रही है, तो कौन सी दवाई ज्यादा साइड इफेक्ट करेगी आप बताइए?
1: नेचुरली जो है वो इनहेलर ही ज्यादा ठीक है,
0: इनहेलर ज्यादा ठीक
1: है, तो वो सीधे पूरी दवा आपके वहां पहुंच रही
0: है और पूरी दवाई फेफड़े में जा रही है, तो आप तो डोज भी कम देनी पड़ती है, हमको ज्यादा डोज देने की जरूरत भी नहीं है और साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं
1: और तुरंत रिलीफ मिल।
0: तो इनहेलर एकदम 100% सेफ है, इसकी कोई आदत नहीं लगती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बीमारियां एक्चुअली ये बीमारियां ऐसी हैं कि इनहेलर देने से ये कंट्रोल होती हैं, ठीक नहीं होती हैं।
1: एक श्रोता हमसे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार भैया।
2: हम बिपिन कुमार बोल रहे, गांव छोली से।
1: गांव छोली से बिपिन भैया, उम्र बता दो।
2: हमारी उम्र है 25 साल।
1: 25 साल तो बिल्कुल जवान आदमी हो, बताओ क्या समस्या हो गई?
2: हमारे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि टीवी वाले मरीज से क्या छुआछूत की बीमारी है क्या नहीं?
1: चलिए ठीक है। दूसरा,
2: और दूसरा ये है कि टीवी वाले मरीज को खाने पीने के लिए क्या दिया जाए, किस चीज का परहेज किया जाए?
1: चलिए चलिए, मतलब व्यवहार का चीज है डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि घर में अगर कोई मरीज है तो उससे कैसे व्यवहार किया जाए, कितनी दूरी रखी जाए और उसके खान पान संबंधी। इसी तरह का मैं जोड़ देता हूँ इसमें, एक नांदेड़ से हैं प्रकाश जैन जी, उनकी भी कुछ मिली जुली सी बात है, व्हाट्सएप से आई है कि सांस की तकलीफ कम करने के लिए क्या करना चाहिए और फेफड़े स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो इन दोनों का मिला जुला जवाब आप दे सकते हैं।
0: अच्छा मैं आपको बताऊं कि देखिए जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं ना, टीबी के मरीज, जब तक टीबी आपके फेफड़े में है तभी तक टीबी, मतलब किसी पेशेंट जो फेफड़े का जो टीबी है ना, वो ही टीबी किसी और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाएगा। अगर फेफड़े के अलावा, मतलब टीबी तो आपके शरीर में बाल और नाखून ये दो जगह छोड़ के कहीं भी हो सकती है।
1: जी जी, आंतों की टीबी, हड्डियों की टीबी,
0: तो फेफड़े के अलावा जो टीबी आपके बलगम में नहीं आ रही है वो टीबी ही सिर्फ उस टीबी को छोड़ के और कोई टीबी एक मरीज से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगी,
1: नहीं फैलती।
0: दूसरी चीज, जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो दवाई लेने के बाद शुरू के 1 से 2 हफ्ते के अंदर मतलब नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, फिर वो एक पेशेंट मतलब दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट नहीं करते बीमारी। तो आपको 2 हफ्ते के बाद में पेशेंट से अलग रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू के 2 हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे में उनको वेंटिलेटेड कमरे में रखें जिसमें प्रॉपर हवा आए जाए, जिससे कि जब वो खांसेंगे तो जो टीबी का बैक्टीरिया वो कमरे के अंदर मतलब बंद कमरे में भरा हुआ ना रहे। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स को मास्क लगाने के लिए बोल सकते हैं। छोटे बच्चों को जो उस पर मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अभी थोड़े दिन उनके साथ क्लोज संपर्क में ना रहे, क्लोज संपर्क में ना रहे, दूरी बनाना नहीं कहूंगा मैं, क्लोज संपर्क में नहीं जाना है।

0: ऐसा
1: कई बार जैसे बच्चे हम खिला लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं, तो उस तरह जो है उनके पास थोड़ा सा नहीं
0: हाँ,
1: गया।
0: बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसे छूने से आपको टीबी हो जाएगा या साथ में खाना खाने से हो जाएगा। मैं तो रोज टीबी के मरीज देखता हूँ, बिना मास्क के देखता हूँ, फिर भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छूने से या खाना खाने से हो जाएगा। ये है कि हाँ, आप अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है, आप रोज सुबह नाश्ता कर रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, आपकी ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही है जिससे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब, जैसे एक वो कहते हैं कि जैसे जो जिनको खांसी हो जाती है, ओल्ड एज है, तो ऐसे में आपने कहा ना जैसे इनको बलगम आ रहा है, उससे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं, तो फिर एहतियात के तौर पर अगर भाई परिवार में ही रह रहा है उसमें, तो उसका निस्तारण उनके बलगम का कैसे करना चाहिए?
0: जो
1: ओल्ड एज है, निकालेंगे बलगम तो निकलेगा ही निकलेगा, तो उसका निस्तारण फिर कैसे करें उसमें?
0: देखिए, ऐसे मेडिकली तो बहुत सारे मेडिकली तो सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उससे हम लोग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पर घर के अंदर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो टीबी के मरीज हैं, अगर नॉर्मल आप जो नॉर्मल ओल्ड एज पेशेंट हैं जो कि खांस रहा है, बलगम आ रहा है, ऐसे बलगम से कोई चिंता करने की बात नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: अगर टीबी का मरीज है और शुरू के दो हफ्ते में अगर मरीज खांस रहा है, बलगम आ रहा है, तो ऐसे बलगम को आप एक किसी मग्गे में या किसी में इकट्ठा करके रख सकते हैं, बाद में उसको आप मतलब उसमें नाली में या कहीं भी बहा सकते हैं और नॉर्मल उसको पानी मतलब सर्फ से उसको धो सकते हैं।
1: जी जी जी। अब पुराने लोग उसमें सामान्यतः ये करते थे कि उस समय चूंकि चूल्हे का वो होता था, राख में उसको कर लिया, मिट्टी में कर लिया, उसको बाद में बाहर फेंक दिया,
0: उसको खेत में गाड़ सकते हैं, खेत में गाड़ दिया, वो भी कर सकते हैं,
1: वो भी आप कर सकते हैं उसमें। एक प्रश्न शायद आ रहा है, एक श्रोता जुड़ रहे हमसे। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार भैया।
2: नमस्ते सर।
1: नाम बताइए, उम्र बताइए। लक्ष्मी नगर से नाम बताओ।
2: मेरा नाम अतुल है।
1: क्या?
2: अतुल।
1: उम्र बताओ भैया।
2: मेरी उम्र 18 साल है।
1: हाँ, क्या जानना चाह रहे हो बताओ।
2: मुझे खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है, पहले जुकाम होता है उसके बाद खांसी हो जाती है।
1: अच्छा, और ये क्या रिपीटेड रहता है?
2: और उसके बाद खांसी में बलगम आता है।
1: खांसी में बलगम आता है, और ये बार बार हो जाता है आपको?
2: हाँ ये हो जाता है, और फिर कम से कम 15-20 दिन में ठीक होता है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब बता।
0: अतुल, तुमको खांसते टाइम साई साई की आवाज होती है छाती में, सीटी जैसी?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है सर।
0: अच्छा, कभी ऐसा महसूस किया छाती में से सीटी जैसी आवाज आ रही है, या फिर जकड़न सी रह रही है, या सांस फूलने लग गई?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
0: तो ये ना बेटा, शुरुआती एलर्जी के लक्षण है, ठीक है ना? तुमको फेफड़े की एलर्जी है, पर अभी शुरुआती है, ठीक है? इसमें क्या है कि तुम्हारा जैसे ही तुम किसी ऐसी चीज के संपर्क में आते हो जिससे कि तुमको एलर्जी है ना, तुम तो तुम्हारी जो सांस की नलियां है ना, उनमें सूजन आ जाएगी और वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएंगी, टेम्परेरी तौर पे, हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं होंगी, पर जैसे ही दवाई खाओगे या कुछ खाओगे तो वो ठीक हो जाएंगी। फिर वापस जब आएगा, जब वापस ऐसा सीजन आएगा या तुम ऐसी किसी चीज़ के संपर्क आओगे तो फिर से होगी। तो ऐसे में एक बार तो अपने फेफड़े की प्रॉपर जाँच करा लो, दूसरा उसकी एलर्जी की दवाइयाँ शुरू कर लो। एलर्जी की समस्या कभी भी ठीक होने वाली नहीं होती है, ऐसा कि ये ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई और ये ठीक हो गया, बट इसकी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं।
1: ऐसे में डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं, क्योंकि उम्र कम है, ये देखें कि कब इस तरह का होता है, तो किस चीज से एलर्जी है,
0: ये हाँ, आप
1: एक बार आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर उससे बचाव,
0: ये चीज भी मार्क करना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट आके बोलते हैं साहब, हमें पीनट से एलर्जी है, मूंगफली से, या कोई पेशेंट बोलता है मेरे को चने से है, तो ऐसी चीजों से बचाव रखना है। परफ्यूम पाउडर है ना, ये फ्लावर्स, इन चीजों से दूर रहना है,
1: फसल विशेष से,
0: धुआं, मिट्टी, इन सब चीजों से बच के रहना है।
1: जी जी जी। एक डॉक्टर साहब ये हैं, सुधाकर राजे यादव जी हैं महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से आप लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम टीबी होने के प्रमुख कारण कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं, और उपाय कौन सा करना चाहिए, थोड़ा आहार विहार के बारे में बताइए जो टीबी का पेशेंट है।
0: देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब ये एक इन्फेक्शन है जो कि ड्रॉपलेट से खांसी के माध्यम से फैलता है ना। ये अब मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर आधे लोगों

0: के अंदर टीबी का बैक्टीरिया बैठा हुआ है,
1: हाँ
0: वो पड़ा हुआ है अभी,
1: जी जी
0: डोरमेंट है। तो ये कैसा होता है, जब कभी मान लो आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, और वहाँ पे आपसे 15 मिनट पहले भी कोई टीबी का मरीज खांस कर निकला है, वो खांसते हुए जा रहा है, तो वो टीबी का बैक्टीरिया उधर एयर के अंदर घूम
1: पहले
0: रहा
1: से है।
0: तो आपने जब आप वहाँ सांस लेंगे तो आपकी सांस के माध्यम से आपके फेफड़े में चला जाएगा। वो जाके कई बार आपके फेफड़े में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा सालों तक, कई बार लोगों को पूरे जीवन तक पड़ा रहता है तो भी कुछ नहीं करता है। ये टीबी रिएक्टिवेट होगा जब आपको, जब आपके जो शरीर की इम्यूनिटी है वो कम होगी, जैसे कि मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जैसे HIV जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, या कोई ऐसी दवाइयाँ चलती हैं लोगों की, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं है ना, उनकी कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिनसे कि शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो जब कभी भी ऐसी कोई कोई मतलब कंडीशन आएगी आप जिसमें आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, तो वो टीबी का बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो जाता है और तब आपको टीबी की बीमारी करता है। तो ऐसे में एक तो शरीर की इम्यूनिटी कम ना हो, समय से खाना खाएं, अपने स्वस्थ खाना खाएं, और धूल धुआं मिट्टी इन सब से बचाव रखें, सिगरेट बीड़ी का सेवन ना करें, तो आपको ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावनाएं कम रहती हैं, फिजिकली एक्टिव रहें। टीबी के मरीजों को खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि टीबी में शरीर के मसल्स का लॉस बहुत होता है, तो अगर पेशेंट प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो उनका वेट गेन होता है जल्दी।
1: जी जी जी जी, तो मतलब खान पान में प्रोटीनस जो वो है, दालें हैं,
0: जी बिल्कुल, दालें हैं, पनीर है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग नॉन वेज भुना हुआ नॉन वेज खा सकते हैं।
1: जी जी जी, इसमें मास्टर खिल्लू परवेज गंजुंडवाड़ा से लिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप से संदेश आया है डॉक्टर साहब, आप लिखते हैं कि हमारे फेफड़ों पर धूम्रपान का कितना फर्क पड़ता है, कृपया बताएं, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो सिगरेट और इनका शिकार ना हो, तो उनके लिए एक एहतियातन तौर पे बताइए कि धूम्रपान का कितना असर है। वैसे तो आपने बताया कि भाई धूम्रपान ना करें, क्योंकि फेफड़ों पे ही सबसे ज़्यादा असर होता है।
0: लॉन्ग रन में स्मोकिंग का फेफड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, जो फेफड़े हैं, जो मतलब फेफड़े ना पेड़ की तरह होते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर में बात करूं, और जो पत्तियां हैं वहां पे आप मानो छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुए हैं, जिन गुब्बारों के माध्यम से गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो स्मोकिंग से ऐसे ये स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और एम्फाइसीमा नाम की कंडीशन बन जाती है। इस बीमारी को हम COPD बोलते हैं लॉन्ग रन में, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल, किसी को 20 साल के बाद भी हो सकता है, 40 साल का कभी भी हो सकता है, पर हाँ लंबे समय तक स्मोकिंग करने से या धुएं के संपर्क में, किसी भी माध्यम से धुएं के संपर्क में आने से ये बीमारी होती है।
1: जी जी, एक श्रोता है हमारी शारदा त्रिपाठी जी, गौड़ा UP से लिख रही है, 40 साल उम्र है, इन्होंने लिखा है कि अक्सर जब फसल होती है तो या धूल धुआं का मौसम होता है तो मुझे ये परेशानी हो जाती है फसल कटाई के समय, परफ्यूम अगर मैं लगा लूँ तो तब भी मेरी सांस में थोड़ा सा परेशानी आती है, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से इनको एलर्जी होगी। आपने लिखा है कि डॉक्टर साहब को दिखाया, इन्होंने इनहेलर और दवाइयाँ दे दी, कोई परमानेंट इलाज या उपाय बताएं आपको।
0: जी शारदा जी, आपको अस्थमा की दिक्कत है
1: जी,
0: ये अस्थमा में ऐसा आपके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अस्थमा के ही हैं, अस्थमा में इस तरह से होता है, तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि हम
1: थोड़ा सीजन बदलता है तो ये प्रिवेल कर जाता है।
0: हाँ, आपको ऐसी चीजों से बच के रहना पड़ेगा, जैसे परफ्यूम है, पाउडर है, घर में ऑल आउट भी नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि जो हम लाइट वाला जो ऑल आउट लगाते हैं उसकी जो मॉस्किटो रेपेलेंट जो लगाते हैं उसकी वजह से
1: कुछ लोगों को उससे भी एलर्जी
0: हो जाती है, तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, आपको फसल कटाई वगैरह जब होती है तब उस समय पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपना इनहेलर लेते रहिए।
1: जी जी जी, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं डॉक्टर साहब, हेलो
2: जी। सिंह साहब नमस्कार।
1: नमस्ते भैया, शुभ नाम बताइए।
2: जी मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा सिहोरा से।
1: हाँ महेंद्र सिंह जी, बताइए क्या समस्या है आपको इस तरह की।
2: महोदय, ईश्वर की कृपा से और आपकी दुआ से मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, लेकिन जो रोगी सज्जन है वो मेरे पास बैठे हुए है,
1: हाँ
2: इतनी उनके उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपसे बात कर सके।
1: नहीं नहीं, अच्छा है कि आप उनकी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्या क्या समस्या है उनको।
2: जिनकी उम्र 60 साल की है सर,
1: हाँ,
2: और बचपन से ही काम उनका भूसा का रहा, यानी भूसा खरीदना और बिक्री करना।
1: ठीक है ठीक है ठीक है जी जी।
2: और उनके श्वास फूलती है और सफर में चलते हैं तो 2 किलोमीटर

0: चलते हैं और सांस फूलने लगती है।
1: तो डॉक्टर साहब,
0: और 5 साल ये बीमारी 5 साल से स्पीड पकड़ गई है और वो इस समय बहुत परेशान है, उनका इलाज भी चल रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा है कुछ।
1: जी जी, तो अभी भी वो भूसे वाला काम करते हैं, डस्ट का और वो जो भूसे वाला है?
0: नहीं नहीं, अब तो छोड़ दिया।
1: अब छोड़ दिया, 60 साल उम्र है डॉक्टर साहब, इन्होंने लंबे समय तक इसका काम किया है।
2: देखिए, लंबे समय तक भूसा, ये जो भूसे की जो धूल उड़ती है ना, ये लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में रहने से, इसके संपर्क में रहने से,
1: बड़ा बारीक गर्दा भी,
2: बारीक गर्दा रहता है, वो गर्दा आपके फेफड़े में जाके सेटल हो जाता है और आपको COPD बेसिकली ही करता है ये, मतलब इसका कारण अलग है। जैसे जो धूम्रपान की वजह से जो बीमारी होती है सांस की, उसी तरह की बीमारी इससे भूसे की वजह से होती है। तो इसमें सांस, जैसे मैंने बताया, आपके फेफड़े कम काम कर रहे होते हैं, सांस की नलियों में सूजन रहती है, इसकी वजह से सांस फूलने और दिक्कत रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ने के साथ नॉर्मल व्यक्ति के भी फेफड़े काम करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा जो जिस व्यक्ति को पहले से बीमारी है उसके तो फेफड़े ज्यादा काम, ज्यादा मतलब प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपको उनके फेफड़ों का एक तो चेकअप करा लीजिए प्रॉपर, PFT वगैरह करा के, मतलब जैसे प्रॉपर एक बार देख लीजिए, स्पायरोमेट्री करा के, DLC लगेगा तो वो करा लीजिए,
1: कितने परसेंट काम कर रहे हैं
2: एग्जैक्टली, आपके फेफड़े की अभी की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से उनकी दवाइयों को ऑप्टिमाइज कराइए कि हमको मान लो इतनी दवाई देने से काम हो जाएगा, और रेगुलर लगातार अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने, मैं या कोई और भी डॉक्टर दवाई दे और वो ठीक हो जाए, आपको लगातार अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है।
1: जी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बार दिखा लिया, दवाई ले ली, हाँ, तो अब मैं फ्री हूँ। आपको चूंकि उम्र लगभग 60 साल हो गई और लंबे समय तक भूसा और उसका काम किया है, तो डॉक्टर साहब, इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जैसे ईंट के भट्टों पे काम करते हैं, कहीं जहाँ धुआं है वहाँ काम करते हैं, तो इन लोगों को फिर रेगुलर, वैसे तो संस्थानों को भी कराना चाहिए, लेकिन इन लोगों के घर परिवार के लोगों को फिर
2: जी ध्यान रखना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसे कोई भी वर्क प्लेस में जब भी कोई काम कर रहा है, ऐसे लोगों का रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, हम थोड़ा सा राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ मार्बल का काम बहुत होता है, पत्थर तोड़ने का काम जो होता है, ऐसे लोगों को भी सांस की दिक्कत हो जाती है आगे चल के। जो लोग पाइप्स वगैरह जो बनते हैं या ग्लव्स वगैरह जो बनते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे चल के सांस की दिक्कत हो जाती है। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो ग्लव बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। तो जब आप इस तरह की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फ्यूम्स उड़ते हैं। सुनारों की दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मतलब ये बनाते हैं ना ऑर्नामेंट्स,
1: जी जी जी, कटाई का काम
2: होता है,
1: तो वो चीजें
2: उनके बहुत बहुत बारीक पार्टिकल उड़ते हैं और वो फेफड़े के अंदर जाके सेटल होते हैं। तो इस बीमारी को हम न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं।
1: जी जी,
2: ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं, जो आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम, जो आपका प्रोफेशन है उसकी वजह से आपको जो फेफड़े की बीमारी हुई है, तो उनको ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बहुत वाइड टर्म है, बहुत सारे तरह के इसमें आते हैं, मैंने तो बहुत कम बताए हैं।
1: जी जी हाँ, ये तो बड़ा विस्तृत वो है, तो अभी हम एक सरसरी तौर पे एक जानकारी दे रहे हैं, उसमें जैसे पीतांबर सिंह भोपाल से लिख रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है, तो शायद मुझे लगता है टीबी के बारे में
2: नहीं, ब्रोंकाइटिस एक बहुत कॉमन टर्म है, बहुत वेग टर्म है। ब्रोंकाइटिस का मतलब सीधे सीधे है कि सांस की नलियों में सूजन आ जाना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस के ना,
1: तो वो तो फिर देखना पड़ेगा आप कहाँ रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं,
2: एग्जैक्टली क्या कारण है, क्या किस तरह के सिम्टम्स हैं, है ना, क्या मतलब उस हिसाब से फिर आगे।
1: रमा भारद्वाज जी हैं पंजाब से लिख रही हैं, 38 साल उम्र है, 65 किलो वजन है। डॉक्टर साहब, मैं एक टीचर हूँ, मेरा बार बार गला खराब हो जाता है, बार बार सर्दी हुई, फिर खांसी और अब सूखी खांसी है, तो इस तरह की चीज है, तो क्या मतलब जोर पड़ता है खांसने में, इनको क्या हो सकता है? वैसे तो टीचर
2: ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं बेसिकली, बार बार गला खराब हो जाना, खांसी होना, बलगम आना, छाती में साई साई की आवाज करना, ये अस्थमा के लक्षण है।
1: तो मतलब रिपीटेड प्रॉब्लम है, तो फिर एलर्जी या
2: दो चीजों पर काम करना चाहिए इनको। एक तो ये पता करें इनको किस चीज के संपर्क में आने की वजह से ऐसा होता है, उस चीज को अवॉइड करें। दूसरा, अपने फेफड़ों का रेगुलर चेकअप करा के, और उसके अगर कोई दवाई रहती है एलर्जी की तो दवाई से लेना शुरू कर दीजिए।
1: जी जी, एक चलते चलते एक प्रश्न और है, ये व्हाट्सएप से ही मिला है, इसमें कि किसी बच्चे को निमोनिया हो जाए और ठीक होने के बाद बड़ा होने पर बार बार रिपीट होता है, तो क्या इससे बच्चे के फेफड़ों को जो है नुकसान होता है, वो कमजोर हो जाता है?
2: इसी प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था।
1: जी जी जी जी,
2: देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े मतलब बचपन से ही कमजोर है, है ना, वो उनके जीन्स में है, क्योंकि हो सकता है, ऐसा कई बार देखा गया कि उनके माता पिता या घर में किसी में, या बड़े नानी नाना दादा

0: किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या रही होती है। तो ऐसे केस में क्या बच्चों, ये बच्चों का ना इसको अस्थमा होने की संभावनाएं होती हैं, तो इनको किसी अस्थमा स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को दिखा के और इनकी जांच करा के अगर लगेगा तो इनको बचपन से इनहेलर शुरू कर देना चाहिए। कारण कि अगर आप बचपन से इनको इनहेलर शुरू नहीं करते तो ऐसा बहुत बार देखा गया, 20 साल, 25 साल, 40 साल की उम्र आते आते ऐसे मरीजों को प्रॉपर सांस की दिक्कत बन जाती है,
1: फिर वो परमानेंट हो जाती है,
0: फिर वो परमानेंट हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती। तो अभी आप लेंगे तो आपको आराम भी पड़ जाएगा, तो इसलिए एक बार प्रॉपर दिखा लीजिए और शुरू कर लीजिए।
1: मतलब ये है कि किसी भी बीमारी में अगर देरी हो रही है तो फिर वो एक बड़ी समस्या का कारण बनती है। और हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य भी श्रोता बंधु यही है कि जब कभी कुछ ऐसा लगे, हमारी बॉडी इस तरह रिएक्ट करती है कि कोई समस्या है, अगर कोई बीमारी हो रही है तो हम उसे पॉजिटिव अगर देखते हैं तो उसको एक सकारात्मक पक्ष में लें कि हाँ मुझे कुछ करना है, मतलब एक वो हमको जागरूक करती है, अवेयर करती है, अलर्टनेस देती है कि जैसे अलार्म बजता है ना, तो फिर जाइए, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं कि कोई परेशानी हो तो आए, और हम जब देखते हैं कि सामान्य तौर पर कोई घड़ी खराब होती है ठीक करा लेते हैं, फोन खराब होता है ठीक करा लेते हैं, गाड़ी खराब होती है तुरंत सही कराते हैं, लेकिन जब बॉडी खराब होती है
0: तो फिर इंतजार करते हैं,
1: तो इंतजार करते हैं और पता नहीं किस बात का इंतजार करते हैं। तो क्या चलते चलते कहना
0: एक्चुअली लोगों के अंदर ना बहुत तरह की भ्रांतियां रहती हैं कि पता नहीं किसी ने बोला कि ठीक है लोगों के नहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, कोई बोल रहा है बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से काम करें। जब कभी भी इस तरह की समस्या आपको लगती है, आपको हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें। अगर आपको एक डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिल रही तो कोई हमारे देश के अंदर सेकंड ओपिनियन लेने पे किसी पे रोक नहीं होती है।
1: सही बात है, सही
0: आप जाएं अपने डॉक्टर को मिलें, अपने बात करें और आपकी समस्या बताएं, आपका इलाज देखें, गूगल पे सब कुछ मौजूद है ना।
1: और हो सकता है वो समस्या दिखने में बड़ी लग रही हो लेकिन समाधान बहुत छोटा और बहुत शायद एक ही बार की फीस में खत्म हो जाए।
0: एक्चुअली दोनों ही चीजें होती हैं कि समस्या कई बार देखने में बहुत बड़ी लग रही होती है और बहुत थोड़े से काम हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि समस्या छोटी लग रही होती है निकल के बहुत बड़ा आता है
1: जाता है। तो वो भी है कि समय से अगर हमें कोई पता लग गया तो हमारा जो नियर डियर है, हमारे परिवार में है, हमारा हिस्सा है, अगर समय पे लग जाए समस्या भले बड़ी हो लेकिन आज अगर हमें पता लगी तो हम कम से कम सावधान हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो शायद यही हम सब का उद्देश्य भी है, डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि भाई पैसा देने नहीं लेकिन अच्छी राय लेने तो आ जाओ,
0: अच्छी राय लेने आइए। मतलब बात कोई, मैं आपको बताऊँ, हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए कम से कम खर्चे में, ज्यादा से ज्यादा आराम मेरे पेशेंट को मिले
1: जी, जी, जी।
0: तो हर डॉक्टर यही चाहता है ना, जिससे कि उसका भी नाम होगा ना
1: जी, जी,
0: तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और बीमारी को बढ़ने का इंतजार मत कीजिए।
1: तो यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर लव गुप्ता साहब, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट है, श्वास संबंधी, फेफड़ों संबंधी और टीबी संबंधी रोगों के पुराने जानकार हैं, सिम्स हॉस्पिटल में आप रहते हैं, तो आप जब भी ऐसा लगे तो आप जा कर के ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आए कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर, विषय था अस्थमा, टीवी, फेफड़ा और स्वास्थ्य संबंधी रोग, कारण और निवारण, विशेषज्ञ थे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीवी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स, मथुरा।
3: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे, वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्रीदाता वैली, मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन।

0: हैं अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्रीराधा वैली मथुरा।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं विनोद कुमार अग्रवाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम ब्रजलोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे विनोद कुमार अग्रवाल। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर आप सुनेंगे समवेत स्वरों में देशगान। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। अपराह्न 1:15 पर कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एवं शारीरिक बीमारियां और योगात्मक उपचार। साथ ही आप सुनेंगे पहनावा वार्ता, हमारा व्यक्तित्व और पहनावा, वार्ताकार संगीता मिश्रा होंगी। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00।

संध्या 5:30 पर युवा भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एवं पंडित राम प्रसाद विस्मिल जयंती विषय पर होगी चर्चा। मार्गदर्शन के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी देंगे अमरदीप श्रीवास्तव से। संजय सारस्वत की बातचीत के अंतर्गत आप जानकारी प्राप्त करेंगे। संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा, विषय होगा केंद्र सरकार की विभिन्न विकास कल्याणकारी योजना खेत बचाओ अभियान के क्रम में। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय। वार्ताकार होंगे अमर सिंह और इनसे बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या

6:45 पर फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या 7:31 पर पेश किया जाएगा। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:35 पर समवेत स्वरों में देशगान श्रोता साथी सुनेंगे।

चित्रपट संगीत सुहाने तराने श्रोता साथी सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, ब्रज के भक्त कवि, लेखक प्रोफेसर गोविंद शर्मा, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम बसंत राज राजगुरु का ठुमरी एवं दादरा गायन, राग तिलंग और भैरवी में आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान, एक अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं जया आर्य।

इस धुन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंक। और आज के इस सफर में आप सभी हैं मेरे यानी जया आर्य के साथ। आज के कार्यक्रम को चंद पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगी कि खेलों का जज्बा दिल में जगाइए, स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपनाइए, मैदान से मिलती है नई पहचान, खेलों से बढ़ता है देश का मान। खेल हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि मानसिक विकास में भी सहायता करते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चों और युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास, टीम वर्क तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। आज 11 जून का दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य खेलों के महत्व को बढ़ावा देना तथा लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने खेलों को शांति, विकास और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण माध्यम माना है। वैश्विक स्तर पर विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर साल 11 जून को मनाया जाता है। यदि हम इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसे पहली बार 6 अप्रैल 2014 को मनाया गया। ये तारीख एथेंस में 1896 में हुए आधुनिक युग के

पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद दिलाती है। इसका उद्देश्य समाजों में सकारात्मक बदलाव लाने, मानवाधिकारों की उन्नति और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल की शक्ति को रेखांकित करना था। तदोपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जून को आधिकारिक तौर पर इस दिवस के रूप में स्थापित किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए खेल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन यूनिसेफ और यूनेस्को के सहयोग से मनाया जाता है। श्रोताओं, आप और हम सभी देखते हैं कि आज के समय में जब लोग तकनीक और मोबाइल उपकरणों में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तब ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल हमें तनाव से दूर रखते हैं और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हमें खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के संदेश को अपनाते हुए स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। तो श्रोताओं, फिलहाल हम खेल की तरफ तो नहीं जा सकते, किंतु संगीत की तरफ रुख करते हैं, जो कि खेल के साथ ही एक बेहतर माध्यम है तनाव को कम करने का।

बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईश्वर के प्रकृति के ये खूबसूरत से उपहार की, और ये उपहार है हमारा स्वास्थ्य। प्रथम सुख निरोगी काया। कहते हैं धन दौलत आज है कल नहीं है, किंतु आपका शरीर यदि आपके साथ है तो आप जीवन में हर जंग जीत सकते हैं। परंतु आजकल का खान पान इस प्रकार का हो गया है कि चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, शरीर के अंदर इस प्रकार घर बना लेती हैं कि फिर बाहर जाने का रास्ता उन्हें दिखाई ही नहीं देता। श्रोताओं, शारीरिक बीमारियां मानव जीवन का एक सामान्य सा हिस्सा है। बदलती जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव, प्रदूषण और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें सबसे आम है मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, गठिया का दर्द या फिर हृदय रोग, इनको ले लीजिए, ये सभी प्रमुख हैं। इन बीमारियों का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता ही है, परंतु थोड़ी सी सावधानी से इन सब से बचा जा सकता है, और जिसमें कि ना ही आपको महंगी दवाइयां खानी पड़ेंगी और ना ही महंगे महंगे डॉक्टर की फीस के लिए खर्च करना पड़ेगा। वो आसान सा तरीका है योग। श्रोताओं, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो कि आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। योगात्मक उपचार का अर्थ है विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान और शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना। नियमित योगाभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है और साथ ही मानसिक तनाव कम होता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों में अलग अलग योगासन लाभदायक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो मधुमेह में मंडुकासन और भुजंगासन, पीठ दर्द में मकरासन और शलभासन तथा उच्च रक्तचाप में अनुलोम विलोम और ध्यान लाभकारी माने जाते हैं। बहनों, योग न केवल रोगों के लक्षणों को कम करता है बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। हालांकि गंभीर बीमारियों में योग को चिकित्सकीय उपचार का विकल्प नहीं बल्कि सहायक उपचार के रूप में अपनाना चाहिए। प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया गया योग अधिक प्रभावी और सुरक्षित रहता है। यानी कि अंत में कहा जा सकता है कि योगात्मक उपचार शारीरिक बीमारियों के प्रबंधन और स्वस्थ जीवन के लिए एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावशाली उपाय है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जी सकता है। कहते हैं ना, सुबह सुबह जो योग अपनाए तन मन में नई ऊर्जा पाए, रोग दूर हो, बढ़े आत्मविश्वास, योग से मिलता है सुख और उल्लास। किंतु फिलहाल हम ये सुख देंगे अपने कर्ण को, यानी कि अपने कानों को। अरे हाँ हाँ, इस गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, अभी हमने बात करी थी आंतरिक सुंदरता की, यानी कि हम योग को अपनाकर अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, किंतु बाहर समाज में रहने के लिए आपका पहनावा भी उतना ही जरूरी होता है। दरअसल हमारा पहनावा हमारे व्यक्ति

0: व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यक्ति के कपड़े उसकी पसंद, सोच, संस्कृति और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। साफ सुथरा, सुसज्जित और अवसर के अनुरूप पहनावा न केवल हमें आकर्षित बनाता है बल्कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का भी कार्य करता है। अच्छा व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप से ही नहीं बनता बल्कि अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भी विकसित होता है। जब हमारा पहनावा और व्यक्तित्व दोनों संतुलित होते हैं तो हम अधिक प्रभावशाली और आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्वच्छ, मर्यादित और अवसानुकूल यानी कि अवसर के अनुकूल अपने वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी विषय के अंतर्गत एक वार्ता प्रस्तुत करने आ रही हैं संगीता मिश्रा, जिसका विषय है हमारा व्यक्तित्व और पहनावा। तो आइए जानते हैं इनसे कि हमारा पहनावा हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है।
1: बहनों, चरित्र शब्द मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है। अपने को पहचानो शब्द का अर्थ है जो अपने चरित्र को पहचानने का है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम तथा परिवेश दो प्रधान तत्व हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात शक्तियां प्रदान करता है, परिवेश उसे इन शक्तियों को सिद्धि के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक परिवेश प्रबल प्रभाव डालता है। ज्यों ज्यों बालक विकसित होता जाता है वह उस समाज या समुदाय की शैली को अपना लेता है जिसमें वह पड़ा होता है, व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मानव की भौतिक उपस्थिति के अन्य पहलुओं की तरह वस्त्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वस्त्रों का व्यक्तित्व के व्यक्ति के व्यक्ति बनाने में अहम भूमिका होती है। वेशभूषा प्राचीन काल से ही समाज में विशेष भूमिका अदा करती आ रही है। जिस प्रकार राजा और उसके दरबारियों की वेशभूषा विशेष होती थी, जो लोग साधारण थे उनकी आशा साधारण होती थी, इसी प्रकार आम शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों की अलग अलग वेशभूषा होती है। आमतौर पर स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों के लिए एक सी वेशभूषा होती है जिससे अमीर व गरीब में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। पहनावा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे बारे में नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी बताती है। अच्छे वस्त्र पहनने से समाज में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि इससे हमारे काम व सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम अच्छी सोच और आत्मविश्वास के कारण ही जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर बालक अनगढ़ पत्थर की तरह है जिसमें सुंदर मूर्ति छिपी है। जिसे शिल्पी की आंख देख पाती है वह उसे तराश कर सुंदर मूर्ति वह बदल सकता है क्योंकि मूर्ति पहले से ही पत्थर में मौजूद होती है। शिल्पी तो बस उस फालतू पत्थर को जिसमें मूर्ति ढकी होती है एक तरफ कर देता है और सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। माता पिता, शिक्षक और समाज बालक को इसी प्रकार सवार कर खूबसूरत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। आजकल हमारा समाज हमारे बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया है। ऐसा लगता है कि उनके वस्त्र उन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। समाज में विशेषकर बच्चों में पहनावे को लेकर काफी बदलाव आ रहा है। टीवी सीरियलों और फिल्मों के साथ खेलों में प्रसिद्ध शख्सियता की तरह दिखना चाहते हैं। अपनी इस ख्वाहिश पूरा करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किए बिना ही जिद कर बैठते हैं। समय के साथ हमारे पहनावे में अनेक बदलाव आए हैं। अक्सर हम दूसरों की देखा देखी कोई ड्रेस अपने लिए ले लेते हैं पर वह हम पर उतनी फपती नहीं है जितनी दूसरे पर। बहनों, फिगर, बॉडी टाइप और त्वचा के रंग के हिसाब से आपको कपड़ों का चयन करना चाहिए। लंबे लोगों पर सब कुछ जचता है पर छोटे कद के लोगों को अपनी ड्रेस के चयन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फैशन वर्ल्ड में बहुत सारे विकल्प और टिप्स हैं जिससे उनका ड्रेसिंग सेंस बेहतर बन सकता है। वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े छोटे कद के लोगों के लिए परफेक्ट रहते हैं। पहले लोगों को वॉल्यूम ज्यादा गहरे रंग वाले कपड़े पहनने चाहते हैं और मोटे लोगों को मोनोकॉम लुक का के लिए कपड़ों से गहरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कामकाजी महिलाओं को कॉर्पोरेट ड्रेसिंग को ध्यान में रखकर कपड़े पहनने चाहिए। ज्यादा एक्सपोज करने वाले कपड़े ना पहने। आपके कपड़े आपके लिए सुविधाजनक होने चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल महिलाओं को ज्यादा

0: भड़कीले कपड़े से भी दूर रहना चाहिए। ऑफिस के माहौल का ध्यान रखते हुए कपड़ों का चयन करें। घरेलू महिलाएं ड्रेस के चयन में कुछ बातों का ध्यान रखें तो नया लुक ले सकती हैं। साड़ी पहनने में बदलाव किया जा सकता है। घरेलू महिलाएं साड़ी की ड्रेस और ब्लाउज के कट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व मानव ने जब दुनिया में पदार्पण किया, उस समय भी उसे अपने तन ढकने की आवश्यकता प्रतीत हुई। गुजरते वक्त के साथ सभ्यता का विकास होता गया, मानव वस्त्र की उपयोगिता को जाना गया। वस्त्र व्यक्ति को बनाते हैं। निसंदेह परिधान से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्ति के पहनावे से ही उसके संस्कार एवं संस्कृति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का पता सहज ही लगाया जा सकता है। वस्त्रों द्वारा ही व्यक्ति की अभिरुचि मालूम होती है। वस्त्रों का मन पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। परिधान के द्वारा ही व्यक्ति को समाज में वरीयता प्राप्त होती है। आज के युग में परिवेश में भोजन की तरह वस्त्र भी मानव के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, परंतु प्राय यह बात देखने में आती है कि जिन्हें अपनी रुचि के परिधान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनमें हीन भावना आ जाती है। घर की चार दीवारी में हमने क्या भोजन किया, यह तो कोई नहीं जान पाता, परंतु हमारे पहने हुए वस्त्रों को देखते हुए ही हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। अतः परिधान व्यक्ति को जीवन की सभी वस्तुओं से अधिक प्रभावित करते हैं। इनके उचित चयन तथा उपयोग का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। यहाँ तक कि शारीरिक अवगुणों को दबाकर व्यक्तित्व को सुंदर बनाने में वस्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिरुचियों के अनुसार वस्त्रों का उचित चुनाव करके ही व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। वस्त्रों के चयन के संबंध में उसके कई पहलुओं पर जांच परख करना चाहिए। प्राय हम वस्त्रों के रंग और डिजाइन पर ही अधिक ध्यान देते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि वस्त्र किस फाइबर से बना है तथा विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार रंगों का चयन और अलग अलग होता है। जैसे बच्चों पर थोड़े गहरे रंग अच्छे लगते हैं और बड़ों पर थोड़े हल्के रंग अच्छे लगते हैं। बहनों, इसी प्रकार मौसम के अनुकूल वस्त्रों का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। ये जानना भी जरूरी है कि लेटेस्ट फैशन क्या है। परिधान चुनते समय ये देखना नितांत आवश्यक है कि परिधान की शैली आपकी जीवन शैली से मेल खाती है या नहीं। क्या वह आपको वही रूप दे सकता है जैसा आप अपने को दिखाना चाहते हैं? आज के सामाजिक परिवेश में भी भारतीय परंपरागत परिधानों को ही वरीयता प्रदान की जाएगी। मूल रूप से इन्हीं परिधानों में हमारे भारतीय समाज का गौरव एवं आकर्षण छिपा है। एक भारतीय नारी जितनी सुंदर एवं लुभावनी परंपरागत साड़ी, लहंगा, चुनरी तथा सलवार कमीज इत्यादि परिधानों में लगती है, उतनी अन्य किसी वस्त्रों में नहीं। वेशभूषा का व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं कार्य कुशलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी सफलता में एक सशक्त व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है। बहनों, सवाल यह है कि व्यक्तित्व कैसा हो कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा आपका पहनावा, वेशभूषा और हाव भाव है। हम जिन वस्त्रों में कार्यालय में जाते हैं, उन्हें घर में सोते वक्त बदल देते हैं। यदि उन्हीं घरेलू वस्त्रों में हम कार्यालय में जाएं, तो हम ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगेगा तथा जो ग्राहक या अधिकारी गण हमसे कार्यालय में मिलने आएंगे, उन पर भी हमारा दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमें व्यापार धंधे में नुकसान होगा। इसी कारण से पुलिस और आर्मी तथा वायुसेना, समुद्री सेना इत्यादि में यूनिफॉर्म आवश्यक होती है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी यूनिफॉर्म आवश्यक होती है। बहनों, बदलती जीवन शैली में पश्चिमी परिधान आज के संघर्ष में जीवन के ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं। लड़के लड़कियों को अपनी पढ़ाई और कार्यस्थल के संबंध में बड़ी दूरियों को पार करके जाना पड़ता है। कई जगह बसें बदलनी पड़ती हैं। पश्चिमी पहनावे को पहनकर चढ़ना, उतरना, भागना, दौड़ना इत्यादि शारीरिक गतिविधियां सुविधा से संपन्न हो जाती हैं। इन पहनावों में लचीलापन तथा फिटिंग वाला होने के कारण लंबे समय तक सुंदर व क्रीज युक्त बने रहते हैं। इसी कारण ये पहनावा आजकल अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं। अतः परिधान खरीदते समय वर्तमान फैशन और प्रचलित शैली का ज्ञान होना जरूरी है। बस केवल ध्यान देना होगा कि पहनावे का चयन करते समय व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता निखार तथा सुंदरता परिलक्षित होती रहे।
1: अभी बहनों ने

सुनी ये वार्ता हमारा व्यक्तित्व और पहनावा। वार्ताकार थी संगीता मिश्रा। बहनों, वक्त हो रहा है समापन की ओर, परंतु जाने से पहले हम अपनी सभी सखियों को कुछ घरेलू टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि बहनों जून का महीना चल रहा है और इस वक्त लू की मार सभी को देखने को मिल रही है। परंतु घर में जब जरूरी काम होते हैं तो व्यक्ति को बाहर जाना ही पड़ता है, तो ऐसे में हम लू से किस प्रकार बच सकते हैं, तो उसके थोड़े से टिप्स हैं जो आप घर में ही अपना सकती हैं और अपने व अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख सकती हैं। जैसे कि खुद को हाइड्रेट रखें और दोपहर की तेज धूप में हो सके तो कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, और यदि बाहर जाना भी है तो बाहर जाते समय सिर और कान दोनों ढक कर रखें। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए शरीर को ठंडा रखें और जितना हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके लिए आप नींबू पानी, ORS का छोटे छोटे पैकेट आते हैं, वो आप अपने पर्स में, अपने बैग में डालकर जरूर रखें। साथ ही आप छाछ का इस्तेमाल कर सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, कच्चे आम का पना, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। खान पान में भी इस प्रकार के फलों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी भारी मात्रा में होता है, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, इन सभी को अपने खाने में जरूर शामिल करें। और अभी हमने पहनावे की बात करी थी, तो बहनों ऐसे मौसम में सबसे जरूरी है हम क्या पहनकर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा हल्के, ढीले और सूती यानी कॉटन के कपड़े ही पहनकर बाहर निकलें। और यदि किसी भी कारणवश यदि किसी को लू लग भी जाए तो उन्हें तुरंत छाया में लिटा दें, ठंडे पानी की पट्टियां रखें और डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। तो ये कुछ घरेलू टिप्स थे जिनको अपनाकर आप अपने, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का, सभी का ख्याल रख सकती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने सभी बहनों को, अपने सभी श्रोताओं को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिलहाल के लिए अपनी इस मित्र को विदा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जया आर्य ने। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की जुगलबंदी में अभी आपने सुना फिल्म परिणीता के इस गीत को। गीत को लिखा स्वानंद किरकिरे ने और इसे संगीतबद्ध किया शांतनु मोइत्रा ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना उदित नारायण को, फिल्म थी पापा कहते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

इस गीत को हमने फिल्म दस्तक से लिया है। गीत को आवाज दी है उदित नारायण ने, गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: climates, different altitudes and shifting time zones. Over the decades, only 8 nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached 3 finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।

0: करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।

0: कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी

0: हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं।

0: हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी,
0: फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा
0: जी।
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया

0: जाता है
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है
1: जी। हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए
1: जी।
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में

0: सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा

0: से भरपूर कुछ शिशु गीत।
1: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे

एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत एक महान देश हमारा। हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप

0: में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी
1: जी
0: अपनी विशेषता है। ये
1: जी
0: एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को SSB के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
1: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप SSB एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
0: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
1: जी जी,
0: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
1: जी, जी।
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी, जी।
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग, गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस

0: है भारत का
1: जी
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी
1: बिल्कुल,
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं।
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमरा जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए,
0: ओके,
1: उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं,
0: ओके,
1: तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं श्रीनगर, श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
1: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर है
0: जी।
1: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं,
0: ओके।
1: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं,
0: ओके।
1: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
0: जी। या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
0: जी
1: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेस तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
0: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
1: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
0: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ए मेरे वतन के लोगों।
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है।
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो
0: जी,
1: इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग

0: हुई है वहाँ 2018 में,
1: जी
0: उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और
1: ओके
0: इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की,
1: ओके
0: अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा पाकुड़ और दुमका इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे,
1: ओके
0: तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनना बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंच पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं, झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल
1: जी
0: परगना में
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं,
1: जी

0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी जी
0: चाहूँगा कि
1: प्लीज़।
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका।
1: जी
0: हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP ऑफ्स थे इमानुल बास्की और RC मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से, अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई।
1: जी
0: और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन।
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशन

0: ने, जो टीम्स थी
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो
1: जी
0: एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है। और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके,
0: बिल्कुल
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप दे रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया
1: लगभग
0: हमारे उसमें
1: सभी।
0: सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है।
1: जी
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा
1: और मेरे ख्याल
0: है।
1: से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे
0: बिल्कुल है,
1: अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में ही।
0: बिल्कुल हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है,
1: जी
0: उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है,
1: जी
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है,
1: ओके
0: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिस को।
1: राइट देन मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
0: बिल्कुल
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं,
1: जी
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में। और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज्ड ही होती होंगी मैंने सुने हैं, तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में
0: बिल्कुल
1: आके लोग कहते हैं ओ पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
0: हाँ
1: शादी से
0: बिल्कुल,
1: पहले?
0: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है मतलब पतरा जो आप वो
1: जी पत्र ओके
0: कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और
1: ओके
0: वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा,
1: जी
0: अलग
1: जी
0: अलग जगह
1: जी
0: ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं,
0: जी
1: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है,
0: जी
1: मॉडर्न पढ़ाइयाँ हो रही हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी
0: वो
1: जी
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है,
1: जी
0: बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
1: जी
0: हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: बिल्कुल
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं

0: की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
1: वाह,
0: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनके सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है।
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: बिल्कुल
1: हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है और वो आपको ग्रीट

0: करते हुए कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं. आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम. इनका नाम है शंकर लोड.
1: धन्यवाद, जय हिंद.
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं, देहरादून से लिख रहे हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकेंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में.
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है. तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ. उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं. बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको. तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है. हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है. तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी.
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ.
0: मैंने मशीन खोली है तो देखिए, आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का. साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है. न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं. एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ. सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई.
1: थैंक यू.
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं. महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है. 29th SI/DE चेतन अच्छा. लिख रहे हैं okay. आप पहचान गए होंगे
1: जी.
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद. विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं. एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर. यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस. आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें. क्यों,
1: धन्यवाद है यश का.
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी.
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे. चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का. सही कह रहे हैं सर
1: जी.
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी. जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं.
0: ओके.
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है.
0: ओके.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है।

0: जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को,
1: वाह
0: और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
1: ऑलराइट,
0: जी
1: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं,
0: जी
1: तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
0: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
1: बट
0: बट
1: सुझाव अच्छा है।
0: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
1: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फ़र्क होता है?
0: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है,
1: जी
0: उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है। और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
1: जी
0: उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
1: ऑलराइट। TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा
0: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
1: है। ओके
0: जी
1: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते
0: बिल्कुल
1: रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
0: जी
1: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSB सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
0: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख
1: तो
0: पाएंगे।
1: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
0: नहीं
1: AI का
0: नहीं
1: जमाना आ गया,
0: वो
1: आप
0: तो
1: लोग
0: नहीं,
1: AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: बट यह है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
1: एब्सोल्युटली।
0: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा है मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद
1: जी
0: जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: बिल्कुल
1: हम
0: हम भी
1: बिल्कुल
0: तैयार हैं, बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल
1: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
0: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एक बहुत प्यार

0: सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व

0: और वो कह रही हैं, हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें। सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएँ भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म थी कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म लव 86 में, गीत SH बिहारी का था, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पर्वत के उस पार। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत नक्श लायलपुरी का था, संगीत दिया था खयाम ने।

कैफे आज़मी के बोल अभी आपने सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी पाकीज़ा। संगीत दिया था मोहम्मद गुलाम ने।

जगजीत सिंह और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म थी आपको पहले भी कहीं देखा है। गीत समीर का था, धुन तैयार की थी निखिल विनय ने।

शेह घोषाल और जावेद अली के गाए राउडी राठौर। फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और आप युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। खेल जीवन का अनिवार्य अंग है और खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही मन भी प्रसन्न रहता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले घोषित किया है। ये दिवस बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इतिहास इसका जो है वो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी। पहली बार ये दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते 1989 के अनुच्छेद 31 में पहले से ही लिखा था कि हर बच्चे को खेलने, आराम करने और मनोरंजन का अधिकार है। इस दिवस का उद्देश्य सरकारों, स्कूलों और माता पिता को इस अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए प्रेरित करना है। 2025 की थीम थी हर दिन खेलें चुने, चूज प्ले एवरी डे। इसका संदेश यह है कि खेल केवल स्कूल या पार्क तक सीमित ना रहे बल्कि ये हमारी दैनिक जीवन और नीतियों का हिस्सा बने। यूनिसेफ की रिसर्च बताती है कि दुनिया के 3 में से 2 बच्चे चाहते हैं कि वे अभी जितना खेलते हैं उससे ज्यादा खेलें और 4 में से 5 बच्चों के माता पिता के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन आज मोबाइल, टीवी और पढ़ाई के बोझ के कारण बच्चे खेल से दूर हो रहे हैं। जबकि खेलों के अनेकों लाभ हैं, जिसमें सर्वप्रथम है शारीरिक विकास। खेलने से मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियां दूर रहती हैं, साथ ही मानसिक विकास होता है जिससे खेल से एकाग्रता, रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही टीम में खेलने से अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। खेल से मन को खुश रखा जाता है और जिससे कि तनाव कम करता है। और इस दिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस दिन एक संकल्प ले सकते हैं कि माता पिता जो है दिन में कम से कम 30 मिनट बच्चों के साथ खेलें, मोबाइल की जगह मैदान को चुने, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बराबर महत्व दें। स्कूलों में भी हर दिन खेल का एक पीरियड होना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही सरकार को हर गली मोहल्ले में बच्चों को खेलने के लिए एक सुरक्षित पार्क और मैदान को जरूर बनाया जाना चाहिए। खुद भी खेलें और दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित करें। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि बचपन बिना खेल के अधूरा है। एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाने के लिए हमें खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आइए

0: मित्रों, अब युवाणी कार्यक्रम में मार्गदर्शन के अंतर्गत अपने साथियों को दिलवाते हैं जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस विषय पर अमरदीप श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: युवा साथियों नमस्कार। साथियों, मार्गदर्शन क्रम में हम अपने युवा साथियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग तरह की जानकारियां विशेषज्ञों से समय समय पर दिलवाते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के पश्चात भी अपने लिए उचित और अच्छे कैरियर का चुनाव कर सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अमरदीप श्रीवास्तव जी, जो कि किसान इंटर कॉलेज सौंख खेड़ा मथुरा में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। आइए आपसे जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए।
2: धन्यवाद सर। मेरे युवा साथियों, आज मैं बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूं कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने युवा साथियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। तो सबसे पहले वह अभिभावक जिनके बच्चे इंटर पास आउट करते हैं, उनको यह चिंता रहती है कि उनके बच्चे क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि इंटर के बाद उनका करियर डिसाइड होता है कि वो बच्चे क्या करें। तो पहले हम इंटर की चर्चा करेंगे। चार चीज़ें होती हैं। एक होता है मेडिकल बैकग्राउंड, एक होता है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, और एक होता है कॉमर्स, और एक होता है आर्ट्स। तो जो मेडिकल हमारा बैकग्राउंड है, उसमें बच्चे नीट के थ्रू MBBS में जा सकते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि उसका मेडिकल में जाने का मन है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। वह BDS दे सकता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन दे सकता है, वह OTT ऑपरेशन टेक्नीशियन ट्रीटमेंट में जा सकता है, वह डाइटिशियन का कोर्स कर सकता है, और वह डी फार्मा कर सकता है, वह बी फार्मा कर सकता है। यानी कि मेडिकल क्षेत्र में अगर किसी की रुचि है तो वह डॉक्टर बनने के अलावा बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके थ्रू वह मेडिकल लाइन में जा सकता है। अब चर्चा हम करेंगे नॉन मेडिकल स्टूडेंट का। जो बच्चा नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, अगर वह PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर इंटर है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा विकल्प है वह JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वह BTech कर सकता है। उसमें बहुत सारे कैरियर हैं। इस समय दो कैरियर सबसे टॉप पे हैं, एक कंप्यूटर साइंस और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चा PCM के बाद कर सकता है, जैसे कि वह मिलिट्री में TEC परीक्षा पास करके जा सकता है, जो कि टेक्नीशियन का एक जॉब होता है, और वो भी JEE मेंस के डाटा के साथ बच्चों का एडमिशन उसमें होता है। इसके अलावा जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये समाज में विडंबना है, खास करके मैं वर्तमान में देखता हूँ कि आज PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जमाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स विषय के हैं। तो समाज में धारणा बनी है कि आर्ट्स वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से बहुत सारे ऑप्शन इस समय हैं। हम क्लैट की परीक्षा इस समय बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम आजकल की युवाओं के भविष्य का है। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन एग्जाम, इस एग्जाम के द्वारा बच्चा जो है लॉ में अपना करियर बना सकता है। जो वर्तमान समय है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण हर जगह एक लॉ ऑफिसर की जरूरत होती है। तो क्लैट के थ्रू अगर बच्चा ला अगर कर लेता है, तो इन सब कंपनियों में उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा बच्चा CUT इस समय एक बहुत ही कॉमन एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से बच्चा भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकता है, और वह ऐसे विषय चूज कर सकता है जो भविष्य में उसे

आईएएस पीसीएस बनने में मदद कर सकता है, और अगर हमें आईएएस पीसीएस जैसा ड्रीम रखना है तो उसमें सबसे बड़ी बात हम अपने तैयारी को एकदम कॉन्टीजेंसी ऑनेस्टी और टाइम लिमिट के साथ करें। बीए स्तर पे हम विषयों का चयन ऐसे करें कि वह विषय हमारे कंपटीशन में भी काम आए, क्योंकि जो हमारे कंपटीशन स्तर के, मैं सिर्फ आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जनरल कंपटीशन में जीएस के अंतर्गत जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसका संक्षिप्त सार मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, कल्चर, यूपी स्पेशल एंड स्टेट स्पेशल, ये ऐसे टॉपिक हैं जो इन परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो अगर बच्चा ईमानदारी से तैयारी करे तो ये सारे एग्जाम वह निकाल सकता है। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब इंटर करते हैं तो मैं जो फेस करता हूँ, बच्चा कहता है कि सर मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है कि मैं बड़ी परीक्षाओं का तैयारी करूँ, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि टेंथ और इंटर के बाद भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें बच्चे अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। एक योजना आपने नाम सुना होगा अग्निपथ, जिसको कॉमन रूप से हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं। इसमें कोई रिटेन एग्जाम नहीं है, शारीरिक दक्षता के आधार पे आप इसमें जा सकते हो और राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। तो फिर हमसे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो सिर्फ 4 साल के लिए हमको नौकरी मिलेगी। ये गलतफहमी है, नौकरी तो आपकी सेना में सिर्फ 4 साल के लिए है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे विभागों से एग्रीमेंट किया है कि जो अग्निवीर के तहत बच्चे जो काम करके निकलेंगे, जो युवा निकलेंगे, उनको रोजगार की गारंटी मिल सके। तो अगर बच्चा किसी अन्य विभाग में अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको बहुत सारी छूट दी जाती है, उसको शारीरिक परीक्षा से छूट दी जाती है और उसके लिए कुछ सीमा तक उसमें स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तो अग्निवीर के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवन जो सार्वजनिक उपक्रम जैसे बैंक हैं उसमें उनकी गार्ड की नौकरी होती है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो चाहे जो शहरी युवा हैं, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा हैं, वह कंपटीशन की तैयारी बहुत ही ईमानदारी से करें। और कंपटीशन निकालने का एकमात्र सूत्र है ईमानदारी, समर्पण, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और आप इसी माध्यम से कंपटीशन को निकाल सकते हैं। विद्यालय के द्वारा हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि यह विद्यालय ग्रामीण परिवेश में है, तो आप इन विद्यार्थियों को, युवाओं को कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि उन्हें ग्रामीण स्तर पे ही उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना जागृत हो। तो इसके लिए मैं यह प्रयास करता हूँ कि बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं दूँ, अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा उन बच्चों को सामान्य अध्ययन की उनको जानकारी लगातार देता हूँ, जिससे कि उन बच्चों में एक नया जोश पैदा हुआ है और उन बच्चों को यह सीखने में बहुत ही रुचि होती है। जब मैं उनको अपने सब्जेक्ट के अलावा सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की जानकारी देता हूँ तो वह बच्चे इससे प्रेरित होकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे युवा विद्यार्थी इसका लाभ लेंगे और विद्यालय के जो प्रबंधक समिति है वह हमें बार बार इसके लिए प्रेरित करती है कि इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके, क्योंकि हमारे इस विद्यालय का नाम 1949 से पूरे मथुरा में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। हमारे विद्यालय में भारत सरकार की योजनाओं के तहत NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, NCC और स्काउट और रेड क्रॉस जैसी सुविधाएं भी निशुल्क रूप से प्रदान की जाती हैं। खास करके जो बच्चे NCC और NSS लेते हैं, यह 10वीं के बाद के बच्चों को दिया जाता है NSS और NCC, और जो बच्चे इन सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेते हैं उनको भविष्य में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट दी जाती है, कई सारे एकेडमिक कोर्स में उनको एडमिशन में छूट दी जाती है। और विद्यालय में समय समय पे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को बुलाया जाता है कि वह बच्चों को उचित मार्गदर्शन करें।

होगी परीक्षाओं की तैयारी। साथी सुन रहे थे मार्गदर्शन में ये वार्ता। अमरदेश श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे संजय सारस्वत। मित्रों, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती है। भारत की आज़ादी के इतिहास में जिन क्रांतिकारियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबसे ऊपर है। वे एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, कवि और लेखक थे। सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत के रचयिता बिस्मिल जी ने अपने जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था और उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी था। बचपन से ही तीव्र बुद्धि और साहसी स्वभाव के थे। उन्होंने शाहजहांपुर के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, साथ ही आर्य समाज के संपर्क में आने से उनमें देशभक्ति और स्वदेशी की भावना जागृत हुई। बिस्मिल जी ने मैनपुरी षडयंत्र से जुड़े और 1918 में अंग्रेजों की नज़र में आ गए। 1924 में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों को भारत से भगाना था। बिस्मिल जी के लिए काकोरी कांड बहुत महत्वपूर्ण रहा। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इसका मकसद क्रांति के लिए धन और हथियार जुटाना था। अंग्रेजों ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और लंबे मुकदमे के बाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बिस्मिल जी का केवल क्रांतिकारी ही नहीं, वे एक महान कवि और लेखक भी थे। बिस्मिल राम और अज्ञात के उपनाम से लिखते थे। उनकी रचनाएं युवाओं में देशभक्ति की आग जला देती थीं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सरफरोशी की तमन्ना, ये गीत आज भी हर देशभक्त की जुबान पर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है। कैथरीन अंग्रेजी उपन्यास का हिंदी अनुवाद था। बोल्शेविकों की करतूत रूस की क्रांति पर आधारित थी और मन की लहर जेल में लिखी कविताओं का संग्रह है। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में मात्र 30 वर्ष की आयु में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के लिए जिया, हिंदुस्तान के लिए मरूंगा। उनकी शहादत ने देश भर के युवाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी सच्चे अर्थों में देशभक्ति की मूर्ति थे। उन्होंने साबित किया कि कलम और बंदूक दोनों से देश की सेवा की जा सकती है। आज भी उनकी कविताएं और विचार हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलकर देश को मजबूत और एकजुट बनाना चाहिए।

सोनू निगम और हरिहरन के गाए भगत सिंह फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है।

0: भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम। समय रहेगा आज रात्रि 8 बजे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न

विकास कल्याणकारी योजना के खेत बचाओ अभियान के क्रम में चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय, इस विषय पर अमर सिंह से बातचीत करेंगे सतप्रत सिंह। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

संध्या 6:45 पर फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण होगा। आज शाम 7:05 पर विश्व साहित्यिक कार्यक्रम में श्रोता लेंगे जानकारी जगन्नाथपुरी के विषय में। वार्ताकार होंगे बनवारी लाल शर्मा।

देश कान का समय रहेगा अब से कुछ देर बाद संध्या 6:10 और रात 8:35। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सोहानी प्रसारित किया जाएगा संध्या 7:31 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा 9:15।

आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रूपक ब्रज के भक्त कवि आलेख प्रोफेसर गोविंद शर्मा का होगा, प्रस्तुति श्री श्री कृष्ण शरद की। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज श्रोता सुनेंगे बसंत राज राजगुरु की गाई ठुमरी और तात्रा। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

योगेश श्रीवास्तव की शब्द रचना भी आपने सुनी उषा टंडन के स्वर पे। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया, किसान को जो धन है वह वाकई मृदा है, क्योंकि हमारी मृदा, हमारी जो माटी है, वही हमारी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा एक अभियान जाको नाम है खेत बचाओ। ये अभियान एक ऐसा अभियान है याको एक ही मकसद है, खेती बचाओ अभियान को मकसद या कि पीछे की जो सोच है वो यही है कि हम अपनी माटी को बंजर है वित्ते बचाएं और खेती की लागत को घटाएं। अब माटी की सेहत सुधरेगी तभी बाकी स्थिति अच्छी होगी, या कि काजे रासायनिक खाद के अधाधुंध जो हम इस्तेमाल करें कि या साल इतने कट्टा डारे अगले साल इतने कट्टा डारेंगे, या सोच पे हमें रोक लगाई की आवश्यकता है। या तो भैया हमारी लागत भी बढ़े, हमारी खेत की माटी की स्थिति भी खराब हो गए और वाको कोई बहुत बड़ा उपयोग हमारी खेती में नहीं हो गए। लागत कम होगी, कम खाद डारेंगे, सही मात्रा में खाद डारेंगे और सही सलाह के अनुसार डारेंगे तभी हम याकु समझ पाएंगे। अब भैया या के लिए आवश्यक है कि हम अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र पे या जो सरकारी प्रयोगशाला है वहां पे जाके अपनी खेत की मिट्टी की और पानी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि भैया या के पीछे जो मृदा कार्ड की जो योजना बनाई वही को ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारी जो मूल बात है हमें यह समझना होगा कि हमारी माटी को स्वास्थ्य कैसो है, वहां में कौन कौन से तत्वों की कमी है और वही तत्वों की कमी के अनुसार वहां में तत्व प्रदान किए जाएं और वही के अनुसार खेती की योजना फसल प्रबंधन के अनुसार बनाई जाए। संग ही संग भैया एक बात और विशेष है, वो ये है कि नकली खाद और बीज आजकल बाजार में बहुत देखने में आमे, तो या की हमें पहचान करनी है और पहचान करवे को सीखनो है। संग ही संग ये भी ध्यान रखनो है जा भी दुकान से हम खाद बीज ले रहे हैं वहां से रसीद अवश्य लें और बाय कट्टा पे देखें कि ये बीज है, ये प्राथमिक है या कौन सी स्थिति को बीज है, ये या को प्रयोग कहाँ पे भयो। जब आप बासे रसीद की मांग करोगे तो निश्चित सी बात है आपको सही सामान मिलवे शुरू हो जाएंगे। हमें या सोच को बदलना आवश्यक है कि हम अपनी खेती की लागत कम करवे के काजे सही सामान को प्रयोग करें, जो असली सामान है, जो अच्छी गुणवत्ता को सामान है वही को अपनी खेती में प्रयोग करें। काई की भी सलाह पे अधाधुंध हमें काम नहीं करना। संग ही संग भैया जो हमारे बुजुर्गों की जो शैली ही

प्राकृतिक खेती की, जैविक खाद, हरी खाद, जीवामृत, बीजामृत, जो हमारे गाय को गोबर है भाई, हम ऐसे ही डाल दें कहीं भी गांव में, देख वे जावे तो घूरे ऐसे पड़े हुए भाई, मैं कूड़ो भाई, मैं सब कछु वही मैं। और बात बाकी भी एक वैज्ञानिक तरीका है, वही वैज्ञानिक तरीका से हमें अपनी प्राकृतिक खाद, जैविक खाद, हरी खाद, जो कछु भी हमें बनाना हो वही हिसाब से हमें बनाना चाहिए और सीखना चाहिए। भैया ये हमारी सोच सबसे पहली ये होनी चाहिए कि हम अपने मृदा के स्वास्थ्य के अनुसार जांच कराएं मृदा की, और वही के अनुसार अपनी खेती की तरफ सोचें, बाकी योजना बनाएं। यूरिया डीएपी के विकल्प के रूप में डेंचा हरी खाद से 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिले हैं, या से हमारी खाद की जो लागत है वहाँ में भी कमी आवे। भैया अजोला का उपयोग हम कर सकें, जैविक तरीका से गोबर की खाद है, सड़ी वही खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, ये सब हमारी माटी में कार्बन की मात्रा को बढ़ावे। तो भैया ये जो अभियान है ये हमारी धरती मैया को बचाए हुए के काजे, हमारी खेती के भविष्य को सुरक्षित रह हुए के काजे, और आगे आए वाली जो हमारी पीढ़ी है विनकु गुणवत्ता परक हम खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए सकें, हमारी माटी को स्वास्थ्य अच्छो रहे और हमारा भी स्वास्थ्य अच्छो रहे, बदलती जलवायु के अनुसार हम अपनी खेती की चुनौती को समझ सकें, या के लिए ये जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो कहीं भी कृषि विभाग से संबंधित विभाग की इकाई पे, कृषि विज्ञान केंद्र पे हम संपर्क करके सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो भैया ये तो बात रही खेत की माटी और खेती को बचाए हुए को अभियान के क्रम में। अब आपको सुनवा में है यह है ब्रज लोकगीत।

0: श्याम बड़ो छलिया बची रही है गोरी। अभय ओम प्रकाश गोप के स्वर में सुन रहे आप या ब्रज लोकगीत को। अभय आओ भेंटवार्ता क्रम में आपको जानकारी दिवा में है जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ अमर सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं सत्यव्रत सिंह।
1: आवाज किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं इस समय हमारी सरसों की कटाई मड़ाई सब हो चुकी है, खेत खाली पड़े हैं। इसके अलावा गेहूं का काम भी लगभग लगभग पूरा है। और अब जो मुख्य बात वैज्ञानिकों का जो सुझाव रहता है वो ये रहता है कि जमीन की सेहत को बनाए रखने के लिए ये जो समय होता है वो अच्छा होता है। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर अमर सिंह जी हैं, जो कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के पूर्व डीन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं, जैसे अभी समय मिल रहा है किसान भाइयों को, तो इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए?
2: किसान भाइयों, जैसा कि अभी सतवीर जी ने बताया ही है कि इस समय पूरे ब्रज प्रदेश के अंदर मुश्किल से मुश्किल 10-15% से ज्यादा किसी तरह का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें किसान एंगेज्ड हो
1: जी।
2: तो अब किसान लगभग जब फ्री है तो निश्चित रूप से उसको इस तरह का एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल जो सॉइल, जो मिट्टी जो है पिछले साल के उर्वरक के ऊपर जो अपना रेस्पॉन्स दे रही थी, जो प्रभाव दिखा रही थी, वो धीरे धीरे घटता जाता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स नाम से कहते हैं
1: जी।
2: तो अगर इस तरह की स्थिति रही तो उर्वरकों की मात्रा बढ़ती जाएगी, और उर्वरकों के साथ साथ जो दूसरी चीजें, वैसे भी हमारे ब्रज प्रदेश पूरा क्षारीय लवणीय टाइप का हो रहा है
1: जी।
2: अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा जो है वो ज्यादातर सेलाइन है, यानी लवणीय वाटर है
1: जी।
2: तो इन चीजों को थोड़ा सा ये इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी इस अगर यही स्थिति रही तो। इन दिनों में थोड़ा सा सुझाव यह है कि किस तरह से हम लोग जो है इस मृदा को सुरक्षित और इस लंबे समय तक काम आ सके, इस तरह की किस तरह से बनाए रख सकते हैं कि लंबे समय तक फसल देती रहे और इसका जो क्वालिटी है, इसकी जो जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी हास ना हो और कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस समय को हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें तापमान हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र

0: के अंदर कई बार, एक बार नहीं कई बार, जब तक हमारा मानसून आएगा तब तक लगभग जो है 50 डिग्री तक हो जाएगा कई, ऐसा पिछले सालों के रिकॉर्ड बताते हैं, आप लोग सब देखते ही हो।
1: जी
0: तो जब 50 के तापमान होगा तो उस तापमान का फायदा इस जमीन को क्या हो सकता है?
1: जी
0: नुकसान तो हमेशा हाई टेम्परेचर से होते ही होते हैं,
1: जी
0: लेकिन इस समय क्या, जब खेत खाली हों तो
1: जी
0: निश्चित रूप से अगर आपने खेतों को समय से, जैसे ही अब खरीफ रबी की फसलें पूरी हुई हैं, गेहूं लगभग थोड़ा बहुत एरिया में रह गया है जो नीचे में जगह होगी या जिनमें देरी से बुवाई की होगी उनमें कहीं खड़ा होगा थोड़ा बहुत, बाकी के तो करीब करीब खेत खाली हैं हमारे। सरसों बहुत पहले से कट चुकी है, सरसों के खेत खाली पड़े हैं, और ये दोनों ही इस तरह के हैं कि इनमें सिंचित सिंचाई हुई होगी।
1: जी
0: तो जहां सिंचाई हुई होगी वहां निश्चित रूप से जो है लवणीय पानी लगा होगा, और लवणीय पानी से लवणों की मात्रा भी बढ़ी होगी।
1: जी
0: तो ये लवणों की जो मात्रा है ये क्या कई बार इस तरह की समस्या करती है कि हम लोग अगर इन दिनों में गर्मियों में जुताई नहीं करते हैं और मानसून के टाइम पे एकदम जब बरसात आती है तो उन खेतों की स्थिति, जिनमें हमने अभी गर्मी की जुताई नहीं की है, उन खेतों की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें पानी नीचे नहीं जाता है, यानी कि जमीन के अंदर नहीं, सोखती नहीं है जमीन पानी को, और वो पूरा पूरा पानी बहके जो है एक खेत से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह से बाहर निकल जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ की जमीन के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है कि अगर वो जमीन में पानी नीचे जाता तो निश्चित रूप से वो जो घुलनशील लवण जो ऊपर आ गए थे वो नीचे जाते। तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करेंगे कि क्यों, किस तरह से हम जो है इस समय को और इस स्थितियों को जो है हम लोग अच्छे से अच्छे मिट्टी के सुधार के लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब जुताई से पहले आपको एक प्लान तैयार ये करिए जितना भी फार्म आपका है, क्योंकि पानी की मात्रा सब जगह लगती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगह पानी 6 इंच खड़ा रहता है तो कई जगह पे 2 इंच खड़ा रहता है,
1: जी
0: कई जगह पे 8 इंच पानी खड़ा रहता है। इस तरह की स्थिति जब खेत में आती है तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो लेवल है खार का वो भी अलग अलग क्षार का लेवल हो जाता है। तो एक तो लेवलिंग जो है बहुत जरूरी है इन दिनों में, पहले हल्की जुताई करें, जुताई के बाद में एक बार लेवलिंग करें खेत को। लेवल करने से ये होगा कि सब जगह पे जो है पानी की मात्रा एक जैसी नीचे जाएगी, एक जगह नीचे जाएगी तो सारी जो जमीन है उनकी सब जगह की जो जो जो लवण पड़े हुए हैं, घुलनशील लवण पड़े हुए हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सबके सब एक ही लेवल पे नीचे जाएंगे। लेवलिंग जब हो जाएगा, समतलीकरण हो जाएगा जमीन का, उसी के साथ साथ में किसान भाई ये भी करें कि जितनी भी खेत, भाई ऐसा बड़ा ले लो जितना आपने लेवल किया है
1: जी,
0: उस लेवल किए हुए खेत का 1 से 1.5 फीट की मेड़, जिस जो कि अभी देखने को ये मिलता है कि आपको हजारों बीघा खेत के अंदर कहीं कोई मेड़ नहीं मिलेगी, ये देखने में आता है। तो ये मेड़ जब नहीं मिलेगी तो हमेशा पानी नीचे की तरफ बह के ही जाएगा
1: जी,
0: ऊपर वाली जो जमीन है वो हमेशा उपजाऊ नहीं रहेंगी, और उनमें से जो उनकी उनमें पानी नीचे नहीं जाएगा तो उपजाऊ रहेंगे कैसे? तो जब आप ले रहे तो भले ही एक बार के लिए छोटा सा छोटा एरिया हो, जैसे आपने देखा होगा कि धान बोने वाले धान जब रोपाई करते हैं तो लोग छोटी छोटी क्यारियों में क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो लेवल्ड एक लेवल पानी का बना रहे, पूरे खेत को भी लगा सकते हैं वो, लेकिन एक खेत में ना लगा के छोटी छोटी क्यारियों में लगाते हैं, तो इस पानी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, इस अमृत वर्षा का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, इसके लिए जरूरी है कि उसमें हम लोग बंड बनाएं, मेड़ बनाएं, 1-1.5 फीट की मेड़ बना दें और लेवलिंग कर दें। दो काम तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि किसान भाइयों को इन दिनों में कर लेने चाहिए।
1: यही समय है उसके लिए।
0: जी
1: यही समय है उसके लिए,
0: यही समय है, क्योंकि समय जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बरसात शुरू हो जाएगी, उस समय इस प्रक्रिया को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राय देखा गया है कि इन दिनों में जब हम लोग अगस्त के महीने में प्लांटेशन करते हैं किसी तरह का, कोई फल वाले वृक्ष लगाते हैं या कोई चीज लगाते हैं, तो उनके गड्ढे भी हम अप्रैल और मई में खोदते हैं। क्यों खोदते हैं? क्योंकि जो मिट्टी नीचे की मिट्टी है, मान लो आपने लेवलिंग जमीन की, समतलीकरण किया और वहां से 6 इंच की ऊपर की मिट्टी उठ के नीचे दूसरी जगह चली गई, तो नीचे वाली जो मिट्टी होगी वो इन पूरे 3-4 महीने के अंदर उस रूप में बदल जाएगी दोबारा से, जुताइयों से, बरसात से, धूप से, कि उसमें भी मिनरलाइजेशन हो जाएगा और वो जो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल फॉर्म में, यानी कि उपलब्धता वाली फॉर्म के अंदर आ जाएंगे।
1: जी।
0: और अगर आप उसी उस काम को जब करोगे जब बरसात हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जो

0: उर्वरक वाली जो जमीन है अच्छी उर्वरा वाली, वो तो कट के पहुंच जाएगी नीची वाली जगह में जो दब जाएगी वहां पे, और आपकी जहां से आपने मिट्टी खींची है, मिट्टी हटी है जहां से ऊंचे लेवल से, उस जगह पे आप देखोगे कि वहां तो जर्मिने पहले तो अंकुरण ही नहीं होगा, अंकुरण हो भी गया है तो पेड़ में बढ़वार नहीं होगी। तो इसलिए इसको, इस प्रक्रिया को हमको कम से कम 2-3 महीने पहले करना पड़ेगा, जिससे कि वो नीचे वाली मिट्टी भी उपजाऊ फॉर्म में अपने आप को बदल सके। और प्राय ये भी देखा जाता है कि हम कई बार जो है ना, इन दिनों में जैसे जून का महीना आएगा, लेवलिंग हो जाए, बंडिंग हो जाए, इसके बाद में जो गोबर खाद जहां कहीं अब है किसानों के पास में, उस गोबर की खाद को हम जब डालते हैं, तो जो अगर आपने ऊंची नीची जगह में डाला तो वही स्थिति उसके साथ होगी, बरसात होगी और सारी बह के जो है एक तरफ आ जाएगी नीची जगह में
1: जी।
0: इसको उसका भी ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो इसके लिए जरूरी है, लेवलिंग बंडिंग के बाद में आप गोबर की खाद जो लगाओगे, जिससे कि नमी एब्जॉर्ब होगी, जितना भी बरसात होगी वो जाएगी और भुरभुरापन मिट्टी के अंदर आएगा, मिट्टी कड़ी नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी उससे, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ हमने ऑर्गेनिक, चाहे हम जो हरी खाद भी बनाते हैं तो हरी खाद भी वही कार्य करेगी उसके अंदर, जो जो कार्य जो है ना आपकी गोबर की खाद करेगी, ऑर्गेनिक किसी भी तरह से कार्बनिक तत्व तो उसके अंदर मिलने चाहिए उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। तो ये जो तैयारियों का जो समय है वो इस समय सबसे अच्छा समय है, और किसान भाई थोड़ा फ्री भी हैं।
1: तो इसमें तीन सुझाव आपके रहे, एक तो लेवलिंग कर लें और मेड़बंदी कर लें
0: और फिर गोबर की खाद जो है जून के महीने में बरसात से पहले ही अच्छी तरह से गोबर की खाद मिला दें, जैसे ही हल्की बरसात हो ना उसके बाद, हल्की एक बरसात पहली जो बरसात है उसके बाद मिला में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एकदम हाई टेम्परेचर पर अगर हम गोबर खाद मिला देते हैं तो कई बार उसमें क्या है वो कई चीजें उसके अंदर से जो है निकल जाती हैं, सूख जाती है वो गोबर की खाद के जो टुकड़े हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि बाद में फिर वो गलते नहीं है, तो उसको एक बरसात होने के बाद ही डालें।
1: ये सावधानी बरतनी, एकदम गर्मी में नहीं डालना है,
0: एकदम गर्मी में नहीं डालें, नहीं तो उसमें से उसका पूरा पूरा फायदा जो है ना उसका फिर मिलेगा नहीं किसान भाइयों को। दूसरे जो है मेरा एक सुझाव इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो आपने किया है, इस सब पानी जहां पानी आपका इस उस लेवल को भी बनावे, क्योंकि ज्यादातर ट्यूब वेल्स हैं हमारे ब्रिज के अंदर
1: जी।
0: और ट्यूब वेल्स का जो पानी है वो खारी है, तो खारी पानी के अंदर, उस जो खारी पानी के अंदर जैसे ही बरसात शुरू हो, उस बरसात शुरू होने के टाइम पे उसमें जो चेक वाल्व आपने लगाया है उसके, क्योंकि पंखा वगैरह लोग खोल लेते हैं उस समय कोई काम नहीं होता, इसलिए उसमें चेक वाल्व कस देते हैं ऊपर, चेक वाल्व के ऊपर जो आपने बंद कर रखा है उस चेक वाल्व को खोल के और उसमें उस पाइप को करीब 1-1.5 फीट का ऊंचा ले लें, और जो भी पानी इकट्ठा होगा बरसात का वो सारा का सारा पानी उसी के अंदर जाने दें,
1: यानी बोरिंग रिचार्ज करना,
0: बोरिंग को, हाँ बोरिंग को रिचार्ज करना, मतलब ब्रिज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि ब्रिज में जो 500-700 तक जो बरसात होती है, 800 mm तक बरसात तो आकी गई है, लेकिन वो 800 में से जो है ये स्थिति रहती है कि हम लोग जो है उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा जो पानी है जो बहुत ज्यादा जो है बहके और व्यर्थ चला जाता है, उसको नीचे जाको से ज्यादा ज्यादा ये करें कि वो कैसे भी हमारे ट्यूबवेल के अंदर पहुंचे, चाहे हमको उसके लिए पाइप भी डालना पड़े। कई बार किसानों भाई पूछते हैं कि भाई हमारा ट्यूबवेल थोड़ी ऊंची जगह पे है
1: जी,
0: और लेवल उसका जो है ना हमारे खेत का थोड़ा सा नीचे साइड में है, और वहां से जो पानी भरता है वहां से करीब 20-25-30 फुट दूरी पे जो है ट्यूबवेल है, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि उसमें आप उस लेवल पे जो पानी का लेवल है उस लेवल पे ही थोड़ा सा और डाउन करते हुए बीच में जहां आपका ट्यूबवेल लगा है ना
1: जी,
0: उस ट्यूबवेल में उस जगह तक जो है एक अंडरग्राउंड पाइप डाल दें केवल बरसात के लिए, और उस पानी को कैसे ही करके उसके अंदर ले आवे, क्योंकि ऐसे तो पानी चढ़ेगा नहीं ऊपर के लेवल पे, तो मान लो 1.5-3 फुट का भी है तो 3 फुट का जो टुकड़ा ऊपर लगा रखा है या 5 फुट का टुकड़ा जो ऊपर आपने जोड़ रखा है पाइप के अंदर, उस पाइप को के टुकड़े को हटा दें और वहां उस लेवल तक जो है पानी को उसके अंदर जाने दें,
1: यानी कि किसी भी तरीके से पानी बहके
0: पानी को किसी भी तरीके से उस ट्यूबवेल के अंदर हमको डालना है, ये उद्देश्य बना लेना चाहिए हर एक जो है ना काश्तकार को ही, क्योंकि ट्यूबवेल्स की संख्या भी ये देखने में आती है कि हर लगभग हर दूसरे खेत में ट्यूबवेल हो गए हैं
1: जी जी,
0: तो इतना दोहन जो हो रहा है इसमें जो लवणीयता जो बढ़ती जा रही है, जमीन सब जमीनें लवणीय हो गई हैं, जो पहले दलहनी फसलें होती थी वो लगभग खत्म सी हो गई हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा जमीन हमनी ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चले, उर्वरा शक्ति इनकी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम ये गर्मियों की जो जुताई है, जुताई के को करें तो अवश्य, लेकिन जुताई से पहले हम उसकी

0: लेबलिंग और बंडिंग अवश्य रूप से करें, जिससे कि प्रक्रिया का पूरा पूरा फायदा हम किसान भाई जो है ना बरसात का उठा सकें।
1: तो डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं, काम तो ये सदियों से चले आ रहे हैं लेकिन समय
0: जी
1: पर अब
0: जी
1: इसको संपादित करना है, और जो
0: जी
1: सुझाव आपने दिए उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है, अब खेत खेत ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल रिचार्ज करने का काम जो है ना, जिससे
0: बहुत
1: पानी
0: ज्यादा
1: फालतू
0: जरूरी
1: बह न जाए वो
0: बिल्कुल
1: जमीन के अंदर जाना चाहिए, जिससे वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और अपनी जो पानी की जो
0: क्वालिटी
1: मूल क्वालिटी है वो भी सुधरेगी, और जो
0: बिल्कुल
1: नमक खार जो बनता जा रहा है ब्रज
0: जी
1: में
0: जी
1: वो वैसे भी पहले से ही खार है, वो तो उसको थोड़ा नियंत्रित करने में भी
0: बस बस
1: मदद मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई उम्मीद है इन सुझावों पर जरूर जरूर अमल करेंगे। बहुत बहुत
2: अमय भाई ये जानकारी ले रहे, जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय जानकारी दे रहे विशेषज्ञ अमर सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे सत्यव्रत सिंह भैया। मथुरा मथुरा के आसपास के मौसम को हाल, मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है, और हल्की बारिश आंधी तूफान की भी संभावना है। तो हमारे किसान भैया से ये अनुरोध है कि वे अपनी खेती की योजना यही के अनुसार बनाएं, और जायद की परिपक्व फसल की कटाई मड़ाई और खरीफ मक्का की बुकाई व धान की नर्सरी के लिए ये मौसम अनुकूल है, यही हिसाब से अपनी तैयारी को करें। वे मक्का उर्द मूंग की परिपक्व फसल की कटाई मड़ाई कर दाने की वो संरक्षित कर लें। भैया अब आपको सुनवा में है यह ब्रज लोकगीत।

जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आए जाइए। अभी सीमा मोरवाल के स्वर में आपने सुनो यह ब्रज लोकगीत। यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है कोई समय। सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

सुरेश वाडेकर, रविंद्र साठे और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी चार धाम, शब्द रचना उदय शंकर पाणी की थी, धुन तैयार की थी सुरेंद्र कोहली ने।

शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी कन्हैया।

0: महेंद्र कपूर और साथियों के गाई बजरंग बाली फिल्म के इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में लेते हैं जानकारी जगन्नाथपुरी के विषय में। वार्ताकार हैं बनवारी लाल शर्मा।
1: कहबे के ताई तो सिगरो देश या को कण कण परम पवित्र कहे गयो है। याकू काऊ प्रमाण की को आवश्यकता ना है। हम काऊ दृष्टि ते देखें हमारे देश में पग पग पे तीरथ और घर घर धाम है। कोई काऊ खन काऊ द्वार पे जाए के देख ले वाको अतिथि देवो भव हमारे खून में रमे होते ताई ते वाकू आश्रय मिले। हमारे देश में सातों पुरी भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम ते लायके बसाई हती जिनको स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में उत्कल महात्म में विस्तार से वर्णन करे हुए हुए। जी सातों पुरी अनादि हैं। इन पुरी

में आए के भगवान विष्णु या धराधाम पे अपनी लीलन को करे हते। श्रीमद भागवत पुराण में इन लीलन को विस्तार से वर्णन मिले। अवंतिकापुरी में इंद्रदमन नाम को एक धर्मात्मा राजा भय हतो, जिनकी रानी को नाम उड़िनचाओ। वे दोनों शास्त्रन के आदेश से अपनी प्रजा को पालन करो करे और साथ ही विचार करते हुए कि कम को भगवान नारायण के दर्शन मिलेंगे, संत समाज की संगोष्ठी में नित्य जायो करे। एक दिना कोई संत मंडली अवंतिका आई। भई बिन संतन ने जहाँ ठहरे हते अपनी यात्रा में एक ऐसी प्रतिमा को वर्णन करो हतो, जाकू राजा इंद्रदमन ने स्वप्न में देखो हतो। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को बुलायो और मनोरथ कहो। मंत्री ने चारों दिशन में अपने योग सुपंथी बुलवाए और बिनकू जे आदेश दियो, आपको नील माधव की प्रतिमा को ढूंढनो है और कोई प्रथम पधारेगो बाकू राज्य की ओर से विपुल संपदा को अधिकारी होगो। स्वयं विद्यापति अकेले पूर्व दिशागू चल दिए। पूर्व दिशा में चलते चलते वे बंग देश पहुंचे, जहां देखत भय एक बड़ो ही सुंदर नगर बसो है जो समुद्र के किनारे है। उड़ीसा प्रदेश उन दिनन बंग देश के नाम से जानो जावे। या पुर के मंदिर मंदिर मंदिर को देखते भय गली गली घूमत रहे, पर उनको कहूं नील माधव को दर्शन नहीं मिलो। नगर को छोड़ महामंत्री विद्यापति 100 मील और पूर्व में चले हते, तब बिने आदिवासी सबर जात के लोगन के एक गांव मिलो। ग्रामवासी रात्रि विश्राम करवे के ताई आज्ञा चाही, तो सिर्फ गांव वासी उन्हें अपने मुखिया के घर तक पहुंचाया। मुखिया घर पे नाओ दरवाजो बाकी बिटिया ने खोलो। एक तेजस्वी ब्राह्मण को देख के ले जाई गई और हाथ जोड़ के कहत भई, हे ब्राह्मण देव, मेरे पिता घर पे नाए, पिता आमे तब तक आप दरवाजे पे ही विराजे। ब्राह्मण विद्यापति केवल ब्राह्मण ही नाओ, बेग राजा को मंत्री हतो। बिनकू आदिवासी कन्या को उत्तर प्रतिकूल लगो हतो, फिर अपने कार्य सिद्ध को ध्यान में रख के दरवाजे पे ही खड़े रहो। सांझ परे जब विश्व वसु घर आयो, तो एक ब्राह्मण को दरवाजे पे खड़े देख अकुलाए के विद्यापति के चरण में गिर पड़ो और कहत भयो, मोकू क्षमा करो, ताहेमाम ताहेमाम। विद्यापति विश्व वसु की भाव भक्ति ते बहुत ही प्रभावित भय, कन्या को आवाज लगाई, कपाट खोले, अतिथि को उचित आसन दे के उनकी सेवा को संपूर्ण अधिकारी अपनी पुत्री को प्रदान कर दियो। पुत्री ललता तो पहली नजर में वह तेजस्वी ब्राह्मण को अपनो तन मन दे चुकी हती, सेवा में लग गई। सेवा ते प्रसन्न विद्यापति ने ललता ते अपने विवाह को प्रस्ताव एक दिना रख दियो। बड़े ही धूमधाम ते इनको विवाह हो गयो। जा सुगंध को नील माधव के स्वप्न दर्शन में राजा को अनुभव भयो हतो, वैसी सुगंध वह घर ते नित्य उठाई। और जब विश्व वसु लौट के घर आवे हो, तो वह सुगंध दुगुनी हो जावे। याई गुण ते प्रभावित हो के विद्यापति ने वह आदिवासी की कन्या ते विवाह कर लियो हतो। समय पाए गए एक दिन अपनी पत्नी ते विद्यापति ने पूछो कि तेरे पिता नित्य कहाँ जायो करें और कौन सो ऐसो कार्य करो करें कि जे एको दिन अवकाश नाए करें। ललता देवी पतिव्रताई वाने अपने धर्म संकट को राजा इंद्रदमन के मंत्री ते कह दियो। मंत्री विद्यापति शास्त्रोक्त विधि ते व अनपढ़ साध्वी ते समझायो, हम तुम शरीर से अवश्य अलग अलग, लेकिन आत्मा रूप ते मोह में और तो में एक दूसरे में हम समाहित हैं। तुम बिना कछु संकोच के सच सच बताओ। ललता ने कहो, मेरे पिता भगवान नारायण के दर्शन करवे जायो करें, जिनको हम आदिवासी नील माधव के नाम से जाने। नील माधव को नाम सुनते ही मंत्री भाव समाधि को प्राप्त हो और दर्शन की तीव्र अभिलाषा हो गई। पति पत्नी दोनों ने मिलके योजना बनाए के सरसों ले विद्यापति के साथ गाड़ी में आखिर पे पट्टी बंधवाए के विश्व वसु दर्शन को लेके चलो। विश्व वसु ते ये बात छिपाई ली, समय पाए के सरसों वे आवेगी और हम नील भवन के दर्शन अपने राजा को करवाए दूंगो। नील माधव के सामने जाके विश्व वसु ने विद्यापति की पट्टी खोली तो मूर्ति को देखते ही रह गयो। पूरे दिन मंदिर में पूजा अर्चना भोग आदि में विश्व वसु दत्त चित्त है के लगे रहो और विद्यापति बाकू देखत रहो। जैसे ही मूर्ति के सामने ते पीछे को मुड़ो हो तो एक बहुत ही सुंदर नील कमल को सरोवर नजर पड़ो। ऐसो सरोवर राजमंत्री ने पुराणन में सुनो हो तो देख भी गुनाई मिलो। पुनः काली पट्टी को बंधवाए अपने दामाद गुले विश्ववसी घर ले आयो। समय पाए के एक दिन विश्ववसी ने अपनो मंतव्य अपनी पत्नी ते कहो कि मैं अवंत का उज्जैन नगरी जानो चाहूंगो और 3 महीना में वापिस अपने राजा को संग लेके आऊंगो। विश्ववसु ने दामाद ते वचन लेके जान दियो। राजा इंद्रदमन तो बड़ी चिंता में हते, मंत्री के आवे को समाचार सुन के राजा को मानो अपने प्राण ही वापिस मिल गये हो। मंत्री ते शिव हाल जान के अपने पूरे परिवार और पत्नी परिकर को ले राज्य की व्यवस्था स्वयं मंत्री को सौंप के भगवान नील माधव के दर्शन को चल दियो। चातुर्मास बीतवे के पश्चात सरसों उगे आई और राजा को लेके विद्यापति सीधो ही मंदिर पहुंच गयो हतो। मंदिर में जायके केवल सुगंधी रह गई, मूर्ति को कोई अतो पतो ना हो। राजा बहुत ही निराश भयो और वाने अपनी सेना को आदेश दियो कि या समस्त आदिवासी इनको बंदी बनाई लियो, मोकू लगे इन लोगों ने मूर्ति को छिपाई दियो है।
विश्वसु भगवान को सच्चो भगत हतो।

सो आकाशवाणी भई राजा इन मेरे भक्तन को छोड़ के और सागर धाम की ओर जा, जहाँ मैं तो कू दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगो। जब एक यू बीत जाएगा तब जाके मेरे मंदिर में मोह स्थापित करेगो, मेरो नाम जगन्नाथ होएगो, मेरे संग मेरो बड़ो भैया बलराम, मेरी बहन सुभद्रा होगी, मोह तू नील माधव के रूप में न देख सके। चूंकि तेरे मंत्री ने मेरे भक्त विश्वसु के मोतक जाबे के ताई अपराध करो हो तो फिर मैं बाकी राजभक्ति और बुद्धिमत्ता ते प्रसन्न हो के अपनी पूजा को अधिकार तो विप्र की पहली पत्नी के वंशजन को रहेगो और भोजन प्रसाद बनाए को अधिकार ललता के वंशजन को रहेगो। आकाशवाणी को सुनके राजा नील माधव के दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन करवे के ताई समुद्र के किनारे आज की बंगाल खाड़ी के किनारे बैठ गयो। कई दिन महीने और वर्ष बीत गए, कोई संकेत दर्शन को न देखत भय प्राण त्यागे की इच्छा करके सागर में प्रवेश करत भय का देखत है। एक अति विशाल लाल रंग की लकड़ी सागर की लहरन पे संग राजा की ओर आ रही है। राजा ने प्रसन्न हो गए आवाज दई, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, आकाश गगन भेदी स्वरंते गुंजायमान होत भयो। दारू ब्रह्म के समीप सभी जन सागर में पहुंच गए और वह लकड़ी को सागर ते बाहर लाइवे के ताई जोर लगावन लगे। हाथीन तेउ खिंचवाये को प्रयास करो, फिर सफल न होत देख राजा बहुत दुखी भयो। राजा ने जल में खड़े हुए के प्रार्थना करी, पुनः आकाशवाणी भई, राजा तू भूल गयो, जब लो तू मेरे भरत विश्ववसु और बाकी पुत्री एवं ब्राह्मण विद्यापति और बाकी पत्नी को नहीं लावेगो, मैं सागर ते बाहर न आऊंगो। राजा ने बिनकू बुलवायो, उनके हाथ लगावत ही वह विशाल काष्ट मानो अपने आप बाहर को चल दियो। तीनों काष्टन को राजा ने एक पवित्र स्थान पे रख के स्वरूप देवे के ताई बढ़ी बुलवाई, परंतु वज्र के समान कठोर काष्ट पे काऊ यंत्र ने काम न करो। राजा निराश हो गए, रात्रि में अपने विश्राम कक्ष में गयो और स्वप्न देखत भयो कि अति सुंदर नगर में मैं घूम रहे हूँ, वहाँ एक विशाल मंदिर को निर्माण हो रहे हो और बामे भगवान नील माधव की मूर्ति की स्थापना ब्रह्मा जी के सानिध्य में हो रही है। राजा ने यह स्वप्न को अपने लिए भगवान नील माधव को आदेश मान के नगर को निर्माण करायो और ठीक बैसोई लाल पत्थर को मंदिर बनवायो, वह नगर को नाम जगन्नाथपुरी धरियो हतु। एक दिन वृद्ध बढ़ी अपने यंत्रन को ले गए राजा के पास उपस्थित भयो कि मैं इन काष्ठन में तीनों स्वरूपन को तैयार कर दूंगा, उतने समय मेरे पास न कोई आवे और न मोकू देख सके। राजा ने प्रबंध कर दियो, चौथे दिन बाद ठुक ठुक की आवाज जब बंद हो गई तो रानी ने संदेह व्यक्त करो कि कहूं ब्राह्मण भूखो प्यासो प्राण तो नहीं त्याग बैठो, जल्दी फाटक खुलवाए के बाकी रक्षा करो। ऐसो ही भयो, पर वहां तो न कोई ब्राह्मण हो, अधवने भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी नजर आए थे। राजा को एक ओर भारी दुख एवं दूसरी ओर उन विग्रहण को की शोभा को अद्वितीय देख के प्राण प्रतिष्ठा की सोच विश्ववसु विद्यापति और अपने परकर को लेके ब्रह्मलोक गए हो। वहाँ एक पहर बीतवे पे पृथ्वी पर एक युग बीत गयो। जब लौट के राजा ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी लोग पधारो तो वह देखत भाई नगर पर काऊ और राजा ने कब्जा कर लियो। ब्रह्मा जी द्वारा साक्ष दैवे पे राजा ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तीनों विग्रहण को मंदिर में प्रतिष्ठापित करायो और शास्त्र भेद पूजा अर्चन और भोग भंडारे प्रारंभ हो गयो। रानी गुंडचा जहाँ ठहरी हती वाने जो इच्छा जाहिर करी हती कि मोकू भगवान जगन्नाथ के दर्शन मेरे यही स्थान पर करवावे, तबई ते गुंडचा जाकू भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में राजा को अपनी मौसी बतायो जे परम्परा आज तक निर्वहन हो रही है। भगवान जगन्नाथ बलराम और बहन सुभद्रा अपने रथन पर विराज के मौसी के घर जामे और 9 दिन तक गुंडचा मंदिर में रहें। भगवान जगन्नाथ के तीनों रथ नीम की लकड़ी के बने और प्रतिवर्ष नए रथ बनवाए गए भगवान की सवारी निकसे। भगवान के श्री विग्रह 12 वर्ष बाद नए बने, बिल्कुल वही ब्राह्मण बढ़ी बनामे जिन्होंने प्रथम विग्रह के निर्माण करे हो। मंदिर की पूजा 11 महीना 16 शासन के ब्राह्मण जो विद्यापति की पहली पत्नी के वंशजे करो करें और 1 महीना आषाढ़ मास में दैत्याभित ललता के वंशज करें। 56 बार भगवान को नित्य भोग लगे, भोग भंडारों को भार दैत्याभित सगरे पूरे वर्ष संभारें। वे कार्य में इतने दक्ष हैं जे तो उनके हाथ को भोग खाए के ही पतो चल सके, भगवान के भोग को वर्ण या जिभ्याति ना करो जा सके। कलयुग में आए के विभिन्न मत मतांतर ने कौ प्रभाव मंदिर पे देखो जा सके। मंदिर के ऊपर उत्कीर्ण भित्त चित्रंते पतो चले कि या पुरी पे बौद्ध तांत्रिक और अनेकान मत के लोगों को प्रभाव पड़े हतु, परंतु भगवान जगन्नाथ की परम्परागत पूजा अर्चना विधिवत जारी रही है। बौद्ध तांत्रिक मंदिर को जगह गुरु शंकराचार्य ते मुक्त करो हतो, सो तबते शंकराचार्य को रथ संचालन की आज्ञा को अधिकार 16 शासन के ब्राह्मणों द्वारा दियो गये हतो जो आज भी जारी है। शंकर को हमारे मनीषी साक्षात अवतार माने जिनमें हमारी कर्मकांड और पाखंड ते मुक्ति दिलाई। शंकर ने 4 मठ की स्थापना करी हती जिनमें 1 पूरी मठ हुए। मठ के मठाधीश को शंकराचार्य की उपाधि से विभूषित करें या को चुनाव त्याग तपस्या देख के करो जावे। प्रथम शंकराचार्य के गुरु को नाम गोविंदाचार्य हतु। प्रथम शंकराचार्य

0: आचार्य को नाम भगवता पादो रहो। मठ की स्थापना और मंदिर के उद्धार के पश्चात प्रथम शंकराचार्य बने पदम पादाचार्य, जो शंकर के शिष्य थे। पुरी के राजा को समाज द्वारा गजपति की उपाधि मिली है। वे आजू सोने की मुठ वाली झाड़ू लेके साधा वस्त्र पहन के रथ के आगे झाड़ू लगावत हुए रथ यात्रा में कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग प्रतिवर्ष दर्शन को जाया करे हैं। और वर्तमान की जो परंपरा पड़ी है बाकू महाप्रभु चेतन ने और आगे बढ़ाया, कीर्तन आज कराए के बोलो भगवान जगन्नाथ की।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी जगन्नाथपुरी धाम के विषय में। वार्ताकार थे बनवारी लाल शर्मा। और इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में

0: नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
3: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
1: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है, उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से। कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं, उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
0: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
0: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित प्राप्त संदेशों पर कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को ले रहे हैं, जो कि बड़ी संख्या में भेजे गए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म थी नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, गीत राजेंद्र कृष्ण का था, संगीत दिया था मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहा था उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अन्नू गोस्वामी ने। दरियापुर बाबली से गजानन एले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक एले, श्री बडनेर अकोला से अरुणा दामोदर और आदित्य दामोदर।

सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, बुल्की वाली और फलना झा, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और कुमकुम, नस्पावाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, संजय चौहान, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल, बिट्टा बजाज, शाहजीनगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, पंजाब से अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, कव्या, भाई सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, जयपाल यादव, साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश चौरी, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचेत वायल, प्रथमेश सर्वदा देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख, गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया, तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक, कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुंदरिंदर सिंह, संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतेश और मैक्स, नलवेश्वर नगर नलबेर महाराष्ट्र से पी एस नमानकर, निर्मला, विशाल, सोपान, तायवड़े, नारायण इंगले, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, मजनू कटीला दिल्ली से कमल मालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा माही मलिक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी वैदेही और बेबी हंसिका जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी, नेहरू चौक पैंठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जावत, धव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ और गीता जाधव, बीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमला भावसार, भावेश और सनी भावसार ने। और ये अब सुनते हैं मधुमती फिल्म का गीत लता मंगेशकर के आवाज में, बोल शैलेंद्र के हैं, धुन तैयार करी है सैलिल चौधरी ने।

शैलेंद्र की शब्द रचना अभी आपने सुनी लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म थी मधुबदी, संगीत दिया था सलिल चौधरी ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जी उस फार मथुरा, वीरेन सिंह मंडी चौराहे मथुरा, नेत्रपाल सिंह नंगला विजय राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतेन संचौलिया जिला जालौन से, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, रानू और मोनिका तिवारी, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहरबाई बागरी प्रभुलाल बागरी, नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुंदीबाई बागरी, पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता श्रीमती रिमझिम गुप्ता, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल लक्षंदा और पूरा लोखंडे परिवार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल शिवा सनीता पुष्पा शिवा संजू योगिता रचन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास लालवानी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल बिमला अनेजा, डिंगड़ी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया जाफिया इब्राहिम, सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता दले अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका विशाखा सोनवने, बाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, करणबीर हाउ

उस पूछा कैचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह चौड़ा मनजीत कौर चौड़ा करणवीर करण दपिंदर वीरिंदर कुलदीप सीमू एकम दबन और अभिजोत अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमा असद अरहम समस्त हाशमी परवर मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोमान तायड़े बसंतराव भोजन पी एस नोहानकर तुषार करांगले गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला विशाल निशा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी टिंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा हर्ष आहूजा बिहारी कॉलोनी दिल्ली से याकूब आसमा यूसुफ जाहिद अल्ताफ शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला रोशनी चेतन विशाल और बेबी प्रियांशी बठिंडा रोड मर्डी डब्बावली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लकी तानिया नारंग कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक गीता नायक निहारिका सुशांत और सुरेश चौरसिया ग्राम पंचायत बटेना पाठन जलादुर छत्तीसगढ़ से वालकर्ण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र वर्मा उमेश प्रमिला बंछूर आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मेंडी सौरभ सपना शर्मा और निवान शर्मा चांदनी चौक बिहार से असरफुद्दीन फातिमा डब्बूवली सोनम गांव चाकोत राजस्थान से पूजा खटक विमला देवी शमुदयाल खटक जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े 7:15 पे ये संदेश कोटवार नारायणपुर बाबा भट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी और प्रांजल राय

राजनगर, मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार तथा उनके सभी साथी, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेराज जहां, कुंडी सेक्टर 5, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी करबी, करताल हैदराबाद, तेलंगाना से कानू गोपाल माहेश्वरी, प्रमलिका, विश्ववर्धन, विघ्नेश, पैठा से चांद, गुफरान, फुरकान, अदनान और जाकिया, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती, महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रणाली, पार्थ और समस्त हगोड़े परिवार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, मधुबनी एक्सटेंशन से फूलो राणा, अजय, ज्योति, विजय सागर, श्वेता, वीरेंद्र, सुशांत, शोभा गुप्ता और कुशेश्वर गुप्ता, जलालाबाद बेस से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। और ये अब सुनते हैं त्रिशूल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की आवाज़ों में। गीत साहिर का है, धुन तैयार की है खयाम ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में साहिर की शब्द रचना भी आपने सुनी। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की आवाज़ों में फिल्म थी त्रिशूल। इस गीत को सुनना चाहता प्रकाश नगर मथुरा से खड़ा सिंह छौकर एडवोकेट, ग्राम शिरटे जिला सांगली से हनुमत शिंदे संगीता शिंदे, बरेली मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक प्राची और तरन्या करमकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार,

मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर, साखरभाई, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और समस्त कंगणकर परिवार। गजनुनवार से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, बेगम शवनम और समस्त परिवारजन। गांव ए परसोगा से उस्मान, सायरा बानू, बाबा शेख सेगर और करिश्मा शेख। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डगू, भविका सिक्का। समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, निशांत जगताप। छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास, सोनम, अनाई, पिंका सिंह। श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, रविका, सानू, अर्चना। पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और साईशा।

समतानगर काष्ठी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे निशांत जगताप, छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा शुभम अक्षय सेन, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास, सोनम अनाई, पिंका सिंह, श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अभिका सानू, अर्चना, पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और साइशा सोनवने, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज पी आर जैन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरिधाना खुराना, चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी जिंदल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू हसमुख लाल जिंदल और समस्त परिवार, झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बबरुद्दीन, सरगुजा मैनपाटा से रुबीना, फातिमा, पदमाटा के नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, ताजपुर मोरबा, समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री, सदर बाजार बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक चौहान, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, पीयूष कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान और पूजा परिहार, गजनुंडवार से शमसुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान, फैजान, अनु और कलीम अंसारी, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र और हेयांश कुमार चंदन, आप हैं सोरई ललितपुर से संतोष नामदेव, अभय अनिल, अंजलि, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही और समस्त परिवारजन, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामेकर परिवार, काशी निवास नागपुर से प्रकाश रमहाड़े, भारती रमहाड़े, जानवी वैष्णवी और हर्षल रमहाड़े ने। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश हैं?
2: किसान

0: खुश रहे, इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
0: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की

0: दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी,

0: कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोची। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को।
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और

0: रोजगार सुनिश्चित करना है और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए एआई का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे एआई के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अलनीनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अलनीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अलनीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुम्बकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पे बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं, और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
1: 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश

0: बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत

0: लाइब्रेरी उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास संस्कृत और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एम्यूनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और वहां पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पे जो हमारे यूथ है हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ और डॉक यार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता अपनी ही संस्कृति अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं कई कार्यक्रम करते हैं तो, और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है वो मूर्तियां वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है इसमें, ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो

0: हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूं और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूं, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो। और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण सूचना सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में आगरा और मथुरा जनपद में बिजली कड़कने के साथ मध्यम से तेज तूफान, जिसमें हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे ज़्यादा हो सकती है, और मध्यम से भारी बारिश व ओले गिरने की बहुत संभावना के रेड अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

0: नीरज जैन के शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the governing council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय

0: विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

0: श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी 20 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,000।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार कल्याण के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट

0: आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही है। मेजबान

0: 40 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अमित कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी तेरी कसम। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

कुमार सानू और साधना सरगम को भी आपने सुना, फिल्म थी दामिनी। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मजरू की शब्द रचना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है चिराग।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही सुहाने तरह ने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की। आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी, कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे।

0: देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये तीन तरीके के बदलाव प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: जी आशुतोष जी, अगर
0: जी
1: हम खास तौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खास तौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे।
0: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है। लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है, ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की।
1: जी, जी।
0: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
1: जी जी,
0: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कंप्लीट करना चाहिए कि

0: कि आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हुआ वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
1: जी।
0: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व है और सरकार के पास

0: ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दूंगा
0: जी,
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर NDA कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं रूपक ब्रज के भक्त कवि, आलेख प्रोफेसर गोविंद शर्मा का है, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की।

ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर तैयार रूपक ब्रज के भक्त कवि। शोध और आलेख है प्रोफेसर गोविंद शर्मा का, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की, निर्देशन डॉक्टर उपेंद्र रैना का। तो आइए सुनते हैं रूपक ब्रज के भक्त कवि।

0: मन मद करती प्यारी।
1: ब्रज वृंदावन से बिछुड़ने के बाद उसकी स्मृति की वेदना श्री कृष्ण के हृदय को आजीवन व्यथित करती रही।
2: शायद यही कारण है कि उपासक भक्तों, भावुक और सहृदय ब्रजवासियों का अधिकांश यही मानना है कि नदनंदन श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर कभी बाहर ही नहीं। उनका कथन है

0: संभवतः इसी से कृष्ण भक्त उपासक एवं कविजन ब्रज की ओर खींचे चले आए और अब भी ब्रज यात्रा एवं ब्रजवास करते हैं, भजन और भक्ति साहित्य की सर्जना करते हैं।
1: हाँ, इसके साथ कुछ और भी विशेषताएं हैं कृष्ण भक्ति में, जो सामान्य जनों से लेकर सहृदय व्यक्तियों, विद्वानों और रचना धर्मियों को आकर्षित करती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अनेक बार कहा है कि कैसा भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो सर्वात्म भाव से मुझको समर्पित हो जाता है तो मैं उसे नष्ट नहीं होने देता। न मे भक्तः प्रणश्यति, वे उद्घोष करते हैं कि बस एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मोक्ष दूंगा, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम सब मेरे प्रिय ही तो हो। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय।

0: वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मे।
1: और वो लोकरंजकता?
0: श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम माना जाता है। वे 16 कला संपूर्ण अवतारी स्वयं भगवान थे। मर्यादा आदि के कारण अन्य अवतारों में भगवान ने जो लीलाएं नहीं की वे सभी श्री कृष्ण ने की। माखन चोरी, गोचारण, सखाओं की झूठन खाना, गोपियों से छेड़छाड़, मुरली वादन, नाच गान, रास, छल प्रपंच आदि सब कुछ, साथ ही उनका सौंदर्य, माधुर्य रूप, माधुरी, वेण माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी।
1: हाँ, तभी तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
0: जी हाँ, उनमें हर व्यक्ति अपना तादात्म्य कर लेता है। हर भावुक सहृदय रचना धर्मी कवि कलाकार को उनके रूप लीला चरित्र में सर्जना का विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है, चाहे फिर वो ब्रजवासी हो या नहीं।
1: यही कारण है जिनसे भगवान कृष्ण भारतीय कला और साहित्य के प्रधान आलंबन बन गए।
0: जी हाँ, साथ ही श्री कृष्ण भक्त ये कामना भी करने लगे कि उन्हें ब्रजवास प्राप्त हो। वे श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थलों में निवास कर उनका भजन करें, गुणगान करें, जो ब्रजवास नहीं कर पाते थे। वे अपने स्थानों से ही ब्रज की महत्ता और यहाँ निवास की उत्कट अभिलाषा के गीत गाने लगे।

0: ब्रज के भक्त दो तरह के हैं, एक तो वे जो ब्रज में रहकर भजन भाव करते हैं और दूसरे वे जो ब्रज में रह तो नहीं पाते किंतु उसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था और उत्कंठा प्रकट करते रहते हैं। ये भी तो ब्रज के भक्त हुए।
1: ठीक सोचा आपने। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो ब्रज के भक्त तो थे किंतु ब्रज का दर्शन या वास नहीं कर पाए। तमिलनाडु की आलवार आंडाल अर्थात गोदम्बा ने अपने गीतों में ब्रज वृंदावन वास की उत्कट अभिलाषा की। मीराबाई को भी ब्रज वृंदावन नीका लगा।
0: ऐसे बहुत से भक्त कवि हैं जो ब्रज के बाहर रहकर भक्तिमयी काव्य रचना करते रहे। मध्यकाल के ब्रज भाषा साहित्य में ऐसे भक्तों का प्रचुर योगदान है। आधुनिक युग में भी जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि और ब्रज के परम भक्त थे, परंतु वो ब्रजवासी नहीं बने।
1: मध्यकाल में वैष्णव भक्ति की एक ऐसी उत्तुंग तरंग उठी जिसने समस्त भारतवर्ष को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसे एक बिजली की कौंध जैसा माना है जिसके प्रकाश में सारा देश एक काल में एक साथ आलोकित हो उठा।
0: उसी काल में दूर दूर के भक्त ब्रज में आकर वहां वास करने लगे और अपनी भावनाओं को कविता एवं गीतों के रूप में प्रकट करने लगे। जो ब्रज भाषा नहीं जानते थे वो संस्कृत या अपनी मातृभाषा में काव्य रचना करते थे।

0: बंगाल से आए भक्तों ने तो एक नई भाषा ही बना डाली जिसका नाम ब्रजबुली हो गया। इसमें बंगला भाषा के साथ ब्रज भाषा के बहुप्रचलित मधुर शब्दों का मिश्रण होता था जिसने मधुर बंगला के माधुरी को और भी बढ़ा दिया। यहाँ तक कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रारंभ में भानु सिंह नाम से ब्रजबुली में गीत और पदों की रचनाएं की।
1: श्रीमद् भागवत में प्रेम की परम गुरु ब्रज गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए वृंदावन में लता गुल्म वनस्पति कुछ भी बनकर रहने की ज्ञानी भक्त उद्धव की अभिलाषा ने कृष्ण भक्तों में ब्रजवास एवं ब्रज रज प्राप्ति की होड़ लगा दी।
0: भक्तों की दृष्टि में श्री कृष्ण प्रेम मोक्ष से भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ बन गया प्रेम पुमर्थो महान। ब्रज रस मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली हो गई। ब्रज में ये कथन बहुत विख्यात है, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए।
1: इस प्रकार के उद्गार अनेक कृष्ण भक्त आचार्यों ने प्रकट किए हैं जिनमें प्रकट भौम ब्रज वृंदावन दास की आवश्यकता और उसके फलस्वरूप श्री कृष्ण

0: कृपा एवं कृष्ण भक्ति की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। स्वामी हरिदास जी ने कहा, मन लगाए प्रीति कीजे, कर करवा सो ब्रज बीथिन दीजे सोहिनी, वृंदावन सो वन उपवन सो गुंज माल हाथ पोहिनी। स्वामी बिहारिणी दास जी ने गाया, या जीवे ते भला मुआ, वृंदावन एक ठोर परिहरियो न पी के लुआ।
1: महाप्रभु श्री हित हरिवंश को स्वामी ने भी इसी रज में सुख शांति का उपदेश दिया। हित हरिवंश अनत सच नाही, बिनु या रजह लिए। रसिक पर हरिराम व्यास की दृष्टि में तो वृंदावन का चूहड़ा भी राजाओं से उत्तम था।

0: सरवर ना करे आन गाम को भूख।
1: जैसे जैसे भी हो वृंदावन का वास करना चाहिए। कनक रतन भूषण बसन मिथ्या अनत विलास, बेटी हाट सिंगार के बस वृंदावन वास।
2: कृष्ण भक्त आचार्यों ने दूर दूर से आकर ब्रज वृंदावन में वास किया और अपने मतों, भक्ति सिद्धांतों तथा उपदेशों को, श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं एवं केली क्रीड़ाओं को अपने काव्य, पदों, गीतों आदि का विषय बनाया।
1: सुदूर दक्षिण के मुंगी पैठण से आकर ब्रज के गोवर्धन क्षेत्र को अपनी भजन स्थली निवास स्थान बनाने वाले प्रथम आचार्य निम्बार्क थे, जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की युगलोपासना का प्रवर्तन किया। अपनी दश श्लोकी में श्री कृष्ण के दामांक में विराजमान ब्रजभानुजा के स्मरण द्वारा अंगीत वामे ब्रजभानुजा मुदा विराजमानान रूप सौभगाम सखी सहस्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलेष्ट कांताम।
2: श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री भट्ट देव को उनके अनुयायी ब्रज भाषा का प्रथम वाणीकार बताते हैं और उनकी रचना युगल शतक को आदिवाणी। वे युगल शतक का रचनाकाल संवत 1352 मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास बताता है कि युगल शतक का कला पक्ष भी उच्च कोटि का है। इस ग्रंथ की भाषा ललित और भावानुरंजनी है। भाषा में संस्कृत के सुकोमल तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। इनके पद कीर्तनों में गाए जाते हैं।

0: ब्रज भूमि मोहनी में जाए।
1: श्री भट्ट देव जी की निष्ठा ब्रज वृंदावन के प्रति इतनी अधिक थी कि वे वृंदावन के बाहर के कृष्ण पर दृष्टिपात भी करना नहीं चाहते। रे मन वृंदा विपिन बिहार,
0: विपिन राज सीमा ते बाहर, हरहु को न निहार।
2: श्री भट्ट जी के शिष्य हरिव्यास देवाचार्य द्वारा रचित महावाणी में श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार का सरस वर्णन और उनकी राजधानी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा की अभिव्यक्ति है। ये ग्रंथ रसिकों का कंठहार है और इसका समाज गायन प्रचुरता से होता है।
1: इनके शिष्य श्री रूप रसिक देव जी भी अच्छे कवि थे और उनकी रचनाएं लीला विंशत नाम से प्रकाशित हैं। उन्होंने ब्रजभाषा गद्य में सखी भाव से उपासना की रीत भी लिखी है।
2: और भी अनेक कवि भक्त हुए जिन्होंने ब्रज वृंदावन में वास किया। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह जी उनमें प्रसिद्ध हैं। वे नागरी दास नाम से काव्य रचना करते थे। उनके संप्रदाय के संबंध में निम्बार तथा वल्लभ संप्रदाय अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं।
1: ब्रज की महिमा बढ़ाने में दक्षिण के ही श्री वल्लभाचार्य जी का महान योगदान रहा। उन्होंने गोकुल और गोवर्धन में निवास किया। श्रीनाथ जी को प्रकट कर जतिपुरा में उनका मंदिर बनवाया और भोगराग की भी सेवा स्थापित की।
2: उनके समर्थ पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोसाई विठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी के समक्ष कीर्तन करने के लिए अष्ट छाप की स्थापना की।
1: जी हाँ, अष्ट छाप में चार शिष्य उनके पिता श्री वल्लभाचार्य जी के थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और अधिकारी कृष्णदास। चार शिष्य उनके ही थे, नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये अष्ट सखा भी कहलाते हैं।

0: में सूरदास तो विश्व विख्यात हैं। उन्हें हिंदी साहित्य का सूरी माना जाता है। सूर सूर तुलसी ससी, ये उक्ति प्रसिद्ध है। लोकोक्ति ये भी है कि जो कुछ रहा सो अंधेरा कह गया।
1: यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कही है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रसों का सम्राट बताते हुए उन्होंने लिखा है कि वे अपनी अंधी आंखों से इनका कोना कोना झांक आए हैं।
0: वास्तव में सूरदास वात्सल्य रस के तो विश्व कवि हैं। उन्होंने भारत के हर बालक को बालकृष्ण और माता को यशोदा बना दिया है। उनके काव्य में सख्य भाव का भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण है। इस पद की तो आचार्य शुक्ल ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। खेलत मेको काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया।
2: जात पात हम तेवर नाही, ना कछु बसत तिहारी छैया। अति अधिकार जनावत चाहते, अधिक तुम्हारे बच्चे और गैया। अरे रुवट करे ता संग को खेले, बैठ रहो सब अपनी ठैया। सूरदास प्रभु खेलो इचार।
1: वैसे तो अष्टछाप के सभी भक्त कवि उत्तम रचनाकार थे, किंतु उनमें सूरदास के बाद नंददास का नाम पहले लिया जाता है। नंददास ने श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की और 15 ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं की विविधता से ज्ञात हो जाता है कि ये बड़े शास्त्रज्ञ और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका भंवर गीत तो अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है।
0: रास पंचाध्यायी को भी उनकी श्रेष्ठ कृति कहा जाता है। इसमें लौकिक प्रेम को अलौकिक पारलौकिक प्रेम से समन्वित करने का सफल प्रयास है। इसकी भाषा शैली और पद योजना के कारण नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई है। कहावत है, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। सोने में रत्नों की भांति शब्द जड़े गए हैं।
1: यह भी माना जाता है कि नंददास को काव्य शिक्षा देने के लिए सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की।
0: भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि सांप्रदायिक दृष्टि से अष्टछाप के ये 8 भक्त सामान्य मानव से उच्च स्थान रखते हैं और इनका लीला की दृष्टि से बड़ा महत्व है।
1: जैसे अष्टछाप के 8 भक्त कवियों की प्रसिद्धि है, वैसे ही हरिदासी संप्रदाय में अष्टाचार्य माने गए हैं। इनकी वाणी भी प्रकाशित हो चुकी है।
0: हरिदासी संप्रदाय क्या स्वतंत्र संप्रदाय है?
1: इस संबंध में बड़ा विवाद है। निम्बार्क संप्रदाय इसे अपने अंतर्गत मानता है। कुछ विद्वान इसे विष्णु स्वामी संप्रदाय में बताते हैं, किंतु स्वामी हरिदास जी की उपासना सबसे भिन्न निर्वध नित्य विहार की होने के कारण अब इसे स्वतंत्र संप्रदाय समझा जाने लगा है।
0: कुछ भक्त और विद्वान इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं ना?
1: जी हाँ, किंतु सखी भाव तो केवल एक भाव मात्र है जो सभी रसोपासक संप्रदायों में प्रचलित है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय, माध्व गौड़ीय संप्रदाय, ललित संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, यहाँ तक कि वल्लभ संप्रदाय में भी अष्ट सखा रात्रि विहार में अष्ट सखी बन जाते हैं और इनके भिन्न भिन्न सखी नाम हैं।
0: स्वामी हरिदास जी जो संगीत सम्राट तानसेन के संगीत गुरु बताए जाते हैं।
1: स्वामी जी का ये पक्ष विशेष विख्यात है, किंतु इसके साथ ही वे विशुद्ध नित्य विहार उपासना के प्रणेता भी थे। इसीलिए उन्हें रसिक अनन्य निरपति भी कहा जाता है। भक्तमालकार स्वामी नाभादास जी ने उनकी रसिक छाप बताई है, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की।
0: स्वामी हरिदास जी की नित्य विहार उपासना और अन्य रसोपासनाओं में क्या अंतर है?
1: उनका नित्य विहार नैमित्तिक लीलाओं से परे है। उनके श्री श्यामा कुंज बिहारी अवतार नहीं अवतारी हैं। उनका ब्रज में जन्म है न तिरोधान। वे नित्य वृंदावन में निरवध नित्य विहार करते हैं। वृंदावन के कुंज भवनों से कहीं बाहर नहीं जाते। सखियां तत्सुखी भाव से उनकी सेवा परचर्या में संलग्न रहती हैं। वे गोपियों से भिन्न हैं। स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है, जो विशुद्ध नित्य विहार का प्रकाश करने आचार्य रूप में प्रकट हुई। अनन्यता इस मत की बड़ी विशेषता है।

0: है। ये श्री श्यामा श्याम के अतिरिक्त अन्य किसी अवतार देवी देवता की उपासना नहीं करते, विधि निषेध का भी इनके मत में महत्व नहीं।
1: इसी से राधावल्लभ संप्रदाय के श्री ध्रुव दास ने भक्त नामावली में कहा है, श्री स्वामी हरिदास जो गायो नित्य विहार, सेवा होते दूर कियो विधि निषेध जंजार।
0: स्वामी हरिदास के कुल 128 ध्रुपद उपलब्ध हैं। 18 ध्रुपदों को अष्टादश सिद्धांत के पद कहा जाता है, जिनमें उनके भक्ति परक उपदेश हैं। 110 पदों के संग्रह का नाम कीलमाल है। ये मधुर उज्ज्वल श्रृंगार की बड़ी अद्भुत रचना है, जो भाव सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी श्री श्यामा श्याम जी की रस केल के आंखों देखा हाल सुना रहे हों।
1: अष्टाचार्यों की वाणी को कीलमाल का विस्तार कहा जाता है। किसी भी आचार्य ने उससे भिन्न भाव व्यक्त नहीं किए। ब्रज लीला, स्थूल वियोग, नैमित्तिक लीलाओं का नितांत अभाव उनकी वाणियों में दृष्टिगोचर होता है। स्वामी वीठल विपुल देव, विहारिणी दास, नागरी दास, सरस दास, नरहरी दास, रसिक दास, ललित किशोरी दास और ललित मोहिनी दास की गणना अष्टाचार्यों में की जाती है। स्वामी ललित किशोरी दास जी ने तटिया स्थान की नींव डाली थी।
0: इनके अतिरिक्त भी श्री हरिदासी परंपरा में और भी अनेक समर्थ भक्त कवि हुए। ये अपने को भक्त न कहकर रसिक कहते थे। इनमें स्वामी भगवत रसिक जी की वाणी बहुत ही लोकप्रिय है। वो सभी संप्रदायों में समान रूप से समादृत हैं, क्योंकि उनमें भाव और भाषा बड़ी ही सुस्पष्ट और सरल दृष्टिगोचर होती है। भगवत रसिक जी बड़े खरे और स्पष्टवादी हैं। वाणी की भाषा प्रांजल और प्रसाद गुण संपन्न है।
1: रसिकवर जमुनादास जी का अष्टयाम भी एक उत्तम रचना है। ललित प्रकाश स्वामी हरिदास के चरित्र पर आधारित एक महाकाव्य है। उनकी अनेक रचनाओं में सरस मंजावली अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे श्री वियोगी हरि ने रसिकों का कंठ हार बताया है। इसमें पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में 150 मांझ हैं, जिनमें श्री श्यामा श्याम के रूप सौंदर्य के सरस चित्र हैं।
0: ये रचनाएं हैं स्वामी सहचर शरण जी की। उन्हीं के समकालीन शीतलदास जी के तीन चमन, गुलजार चमन, आनंद चमन और बिहार चमन बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनमें उर्दू मिश्रित ब्रजभाषा की रेखता शैली में श्री बांके बिहारी के रूप सौंदर्य माधुरी का मनोहर वर्णन है। ये भी भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है।
1: रूप सौंदर्य एवं विहार परक साहित्य के लिए तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की भी ख्याति है।
0: ये भी ब्रज वृंदावन का विशिष्ट संप्रदाय है, जो अपनी उपासना रीत में सबसे अलग है। भक्तमाल में कहा गया है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केल दंपति ताहा की करत खवासी, सुरवस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहि दास अनन उत्कट व्रत धारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृति कोई जान है।
1: श्री दाभाजी ने ऐसा क्यों कहा?
0: अन्य कृष्ण भक्त संप्रदायों में श्री कृष्ण की प्रधानता है या राधा कृष्ण के प्रति समान समादर, किंतु गोस्वामी हित हरिवंश जी ने राधा चरण प्रधान उपासना प्रारंभ की। उन्होंने स्पष्ट कहा है, रहो को काहू मनह दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण दिए।
1: गोस्वामी हित हरिवंश जी के पद संकलन में केवल 84 पद संग्रहित हैं, जिन्हें श्री हित चतुरासी नाम दिया गया है। इनमें प्रिया प्रियतम के प्रेम और रूप माधुर्य का अद्भुत अंकन है। भक्त जन हित चतुरासी का नित्य पाठ कर गदगद हो जाते हैं। अपनी कोमल कांत रस पेशल पदावली के कारण श्री हरिवंश महाप्रभु को ब्रज भाषा का जयदेव कहा जाता है। जयदेव जी के गीत गोविंद जैसी मधुरता एवं संगीतात्मकता श्री हितवाणी में है। उनके लगभग 28 पद अलग भी प्राप्त हैं, जिन्हें स्फुट वाणी कहा जाता है। उन्होंने अपने उपास्य को रस का मूर्तिमान स्वरूप बताया, जो केवल वृंदावन में ही गोचर है।
0: श्री हित महाप्रभु को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया है। वंशी कृष्ण के प्रेम संदेश की वाहिका है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी ने भी अपने नाम के पूर्व हित विशेषण संयुक्त

0: कर लिया। वे विश्व प्रेम के गायक प्रचारक थे। उनका ये दोहा कितना सारगर्भित है, सबसो हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम।
1: श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में अनेक भक्त रसिक कवि हुए, जो निष्ठा पूर्वक ब्रज वृंदावन में वास करते हुए भक्ति काव्य की सर्जना करते रहे। नेही नागरी दास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, अनन्य अली, चाचा वृंदावन दास आदि आदि।
0: इनमें रसिकवर ध्रुव दास की 42 लीलाएं बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसका नाम तो लीला है, परंतु सभी रचनाएं लीला पर आधारित नहीं। सिद्धांत विचार जैसी ब्रजभाषा गद्य रचना को लीलाओं में स्थान दे दिया गया है, जिसमें श्री हित जी की रसोपासना की सैद्धांतिक चर्चा है। ध्रुवदास जी की वाणी में श्री श्यामा श्याम जी की प्रीत रूप सौंदर्य और नित्य विहार का बड़ा सूक्ष्म शुभ विशद वर्णन है।
1: चाचा हित वृंदावन दास जी तो बड़े समर्थ कवि हैं। कहते हैं उन्होंने सूर सागर की भांति 7 सागरों की सर्जना की है, उपलब्ध केवल एक दो ही हैं, ब्रज प्रेमानंद सागर, लाड़ सागर आदि।
0: चाचा हित वृंदावन दास ने अनेक वेलियों की रचनाएं भी की हैं। वात्सल्य, सख्य आदि रसों की व्यंजना, लोकोत्सवों के वर्णन, बधाइयां आदि उनके काव्य की विशेषताएं हैं।
1: भक्ति काल की सुप्रसिद्ध हरित्रयी के रसिक वर हरिराम व्यास को भी तो हित हरिवंश गोस्वामी का शिष्य माना जाता है ना?
0: जी, पर ये बात विवादग्रस्त है। व्यासवंशी गोस्वामी गण श्री माध्य गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे महाप्रभु हित हरिवंश जी को श्री हरिराम व्यास का शिक्षा गुरु मानते हैं, दीक्षा गुरु नहीं। अर्थात व्यास जी ने दीक्षा अपने पिता श्री सुमोखन शुक्ल से ली थी और उपासना श्री हित जी की रीत से की। हित जी उनके सदगुरुदेव थे।
1: रसिकवर व्यास जी की ब्रज वृंदावन वास के प्रति अनन्य निष्ठा है। उनका कहना है, व्यास रसिक जन ते बड़े ब्रज तजी अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपच लौ जूठन मांगे खाएं। ब्रजवास वहां के विलुप्त तीर्थों और कृष्ण लीला स्थलों के उद्धार में बंगाल के माध्व गौड़ी चैतन्य संप्रदाय का भी प्रचुर योगदान रहा।
0: श्री चैतन्य मत के अगणित अनुयायी हो गए। ये ब्रज और बंगाल के बीच का सेतु बन गया और बंगाली का भावुक भक्त ब्रज वृंदावन को कृष्ण भक्ति का प्रमुख साधन मानने लगे।
1: बाद में ब्रज भाषा के बहुत से कवियों ने इस संप्रदाय के अंतर्गत काव्य रचना की। इनमें सर्वश्री राम राय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट जी प्रसिद्ध हैं।
0: परवर्ती कवियों में श्री मनोहर दास, प्रिया दास, बल्लभ रसिक और शाह कुंदन लाल है। शाह जी ने ललित किशोरी नाम से हजारों पद और कविताएं लिखी, रास के लिए लीलाएं भी रची। मनोहर दास गुजरात से आए थे। प्रिया दास जी ने नाभा जी के भक्तमाल की विस्तृत टीका कवित छंदों में लिखी, जिसका नाम भक्त रस बोधिनी है। ये भक्तों में बड़ी ही लोकप्रिय है।
1: ब्रजवास एवं ब्रजवासियों के प्रति चैतन्य संप्रदाय के सिद्धांतों में बड़ी श्रद्धा है। ब्रज में एक ललित संप्रदाय भी स्थापित हुआ, जिसने ब्रजवास और श्री राधा रानी की उपासना को प्रमुखता दी।
0: ललित संप्रदाय के संस्थापक श्री वंशी अली ने बरसाने और वृंदावन में बरसों तक भजन किया। बरसाने में उन्हें श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन हुए। ब्रज की भक्त कवियों की पूरी गिनती करना तो बड़ा दुष्कर काम है। मुसलमान कवि रस खान, ताज बेगम आदि ब्रजवासी बन गए थे। सुप्रसिद्ध कवि घनानंद ने भी अंतिम काल में ब्रजवास कर साहित्य रचना की।
1: नारायण स्वामी के पद और दोहे बहुत जनप्रिय हैं।
0: जी हाँ, नारायण स्वामी ने रास की अनेक लीलाओं का लेखन किया। इसी भांत लाल बलबीर भी एक वृंदावन वासी भक्त कवि थे, जिनके हजारों छंद हैं। लाल बलबीर की वाणी प्रकाशित भी हो चुकी है।
1: आज भी हजारों भक्त जन ब्रज वृंदावन में वास कर काव्य रचनाएं कर रहे हैं, और जब तक श्री कृष्ण भक्ति एवं ब्रज भाषा है, तब तक ये क्रम अनवरत निरंतरता के श्री चरणों को वरण करता रहेगा।
0: ब्रज के भक्त कवि प्रोफेसर गोविंद शर्मा का लिखा यह रूपक आपने ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत सुना। निवेदन स्वर थे दीपा रानी श्रीवास्तव और श्री कृष्ण शरद के। गायन था हरि बाबू कौशिक का। प्रस्तुत सहयोगी थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत और मोहित कुमार। प्रस्तुतकर्ता थे श्री कृष्ण शरद।

अभी श्रोता सुन रहे थे रूपक भक्त। कभी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं बसंत राज राजगुरु का गाया ठुमरी और राग तलंग में, तत्पश्चात राग भैरवी में।

0: उपशास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे बसंत राज राजगुरु का गायन FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श